मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 43 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग

और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं नमस्ते लखनऊ के आज के सफर में। श्रोताओं इस प्यारी सी सुबह में कहीं मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं, कहीं चाय की प्यालियों से उठती भाप दिन की शुरुआत का एहसास करा रही है। वास्तव में सुबह का ये समय केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों को फिर से जगाने और जीवन में नई उमंग भरने का संदेश भी देता है। दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को है, आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है।

0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सफर चल रहा है नमस्ते लखनऊ का और समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज सुनिए भेंट वार्ता, मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन। इस विषय पर डॉक्टर संजय कुमार से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय मेंथा की फसल जहां आपके खेत में है तो सामयिक प्रबंधन और आसवन कैसे करें किसान भाई बहन, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं CSIR केंद्रीय औषधियों सगंध पौधा संस्थान लखनऊ से मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां मेंथा की फसल खेत में है तो सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, ज्यादातर क्षेत्रों में मेंथा में पहले लोग नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद रुपाई करते हैं जिस हिसाब से किसान का खेत खाली होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपके शुरुआती 1.5 महीने का समय होता है जब आप रुपाई करते हैं, उस समय पर खेत में एक तो नमी रखनी जरूरी है ताकि पौधा मुरझाए नहीं, पौधे में कोई इस तरह की बीमारी ना लगने पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जल का प्रबंध ऐसे करना है कि हल्की नमी रखनी है, ना कि पानी भर के रखना है।
2: जल निकास का प्रबंध भी करना है
3: कि ज़्यादा पानी भरता है, बरसात होती है तो आपको जल निकासी करनी है ताकि पौधे में कोई बीमारी खास करके नर्सरी स्तर पर ना लगने पाए। छोटा पौधा जब होता है, खास करके जो रूट रोट टाइप की बीमारियां हैं, वो गलन वाली जो है, और जो जल प्रबंधन करना है
2: वो नालियों में
3: करना है और आधी नाली भरना है, क्योंकि आपका जो पानी है वो जड़ों तक मिलना चाहिए और जब आधी नाली भरेंगे तो कम पानी में अधिक उपज आपको किस प्रकार लेनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पौधे को बीच बीच में थोड़ा सा आराम देना है, पानी लगातार नहीं लगाना है, सप्ताह 10-15 दिन के गैप पे पानी लगाना है। छोटी स्थिति में पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि पौधा नीचे छाया नहीं बना पाता है, जब पौधा बड़ा हो जाता है आप नाली में पानी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी की बचत उसमें रहती है। दूसरा मुख्य है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो 25-65 दिन का समय है मेंथा की फसल में
2: सबसे क्रांतिक है,
3: उस समय आपको 1 या 2 बार निराई गुड़ाई करनी जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
2: डॉक्टर साहब क्या मल्चिंग भी फायदेमंद होगा?
3: मल्चिंग बिल्कुल फायदेमंद रहती है। अगर आप मल्चिंग करते हैं बीच में तो उससे क्या होता है कि आपका एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा आपके खरपतवार नियंत्रण में काफी मदद मिलती है।
2: डॉक्टर साहब जहाँ खड़ी फसल है तो फसल की भूख मिटाने के लिए कुछ करना है?
3: जी, वो तीनों प्रकार के उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, उसमें आपका फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन। फास्फोरस पोटास की जो मात्रा है लगभग 40 से 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 2.5 एकड़ के हिसाब से पोटास, इतना ही फास्फोरस अंतिम जुताई के समय लगाए। अगर मेंथा में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसकी मात्रा आधी कर सकते हैं और 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 4-5 टन आपकी वर्मी कंपोस्ट और लगभग 10-12 टन गोबर की खाद जरूरी है
2: जी।
3: और मेंथा में 2 या 3 हिस्सों में नाइट्रोजन की मात्रा को बांट लें,
2: यानी स्प्लिट डोज
3: में करें। पहली आप शुरुआत में रुपाई के समय कर सकते हैं और दूसरी है लगभग 1.5 महीने बाद, दूसरी 2.5 महीने बाद। कटाई से पहले 1 महीना पहले खाद की मात्रा कम कर दें, खाद बिल्कुल ना डालें और कटाई से लगभग सप्ताह 10 दिन पहले पानी भी लगाना बंद कर दें ताकि

0: थोड़ा सा मुरझाई हुई स्थिति में आए तो स्थिति में कटाई करने पर तेल ज्यादा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, कटाई की बात आपने जी की, तो कटाई के बाद आसवन है
0: जी जी जी।
1: तो आसवन के पूर्व और आसवन के समय
0: जी
1: और
0: जी
1: आसवन के बाद ये तीन कौन कौन सी सावधानियां
0: हैं? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि कटाई का असली समय जानने के लिए जब मेंथा के खेत में आप जाएं तो नीचे हाथ लगा के देखेंगे, नीचे वाली पत्तियां पीली पड़नी शुरू होती है, और जब हल्की पत्ती गिरनी शुरू हो जाए उससे पहले कटाई कर लें ताकि पत्ती गिरने से उसका नुकसान ना हो। आसवन में ध्यान नहीं रखना है, टंकी की सफाई अच्छे से करें, उसमें तेल और कोई चीज ना लगाएं, उसको पहले भर के पानी भर के चला के देखें, और जब आप टंकी को चलाते हैं तेल निकालते हैं तो लगातार आपको ध्यान रखना है कि उसमें गेज वाल और प्रेशर गेज दोनों लगाएं ताकि टंकी फटने की स्थिति में नुकसान ना हो, और जो पानी आपका होद में रहता है उसको लगातार ठंडा करते रहें। 75 घंटे से पहले पहले खेत में मेंथा को फैला के रखें, उसका ढेर ना लगाएं या छाया में फैला के रखें, उससे पहले उसका तेल निकाल लें कटाई से 75 घंटे 72 घंटे के बीच में। और जो आप भंडारण करते हैं, भंडारण कोशिश करें कि प्लास्टिक के कैन में बोतल में ना करें, वो आपका GI उसमें करें, जो आपके भंडारण बर्तन है या स्टेनलेस स्टील या आपके दूसरे जो भंडारण के लिए बर्तन आते हैं उसमें किया जाए। और भंडारण में ध्यान ये रखना है कि भंडारण में पूरा भर के करें, उसमें ये नहीं कि आपने 50 लीटर का कैन है उसमें 20 लीटर तेल रख दिया, आपको 50 लीटर में 50 लीटर कैन रख रहा है, उसमें हवा नहीं होनी चाहिए ताकि तेल की मात्रा खराब ना हो।
1: डॉक्टर संजय कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। बातचीत का विषय था मेंथा की फसल में सामयिक प्रबंधन और आसवन। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजय कुमार और आपसे बातचीत की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुविचार। आज का विषय है बड़े मंगल का आध्यात्मिक महत्व। आइए सुने।
3: बड़े मंगल का मेला क्यों और कब से पर प्रकाश डालने से पहले अलीगंज के नए मंदिर के उद्गम पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में नवाब वाजिद अली शाह की दादी तथा दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम द्वारा बसाए गए अलीगंज में एक हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को मुख्यतः हिंदू और मुसलमान श्रद्धा पूर्वक मनौतियां मानते हैं, चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। लखनऊ में मुहर्रम और अलीगंज का मेला ये दो सबसे बड़े मेले हैं। मेले में लगभग एक सप्ताह पूर्व दूर दूर से केवल एक लाल लंगोटा पहने हजारों लोग गर्म सड़क पर पेट के बल लेटकर दंडवती परिक्रमा करते हुए मंदिर आते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर की मान्यता है कि लखनऊ में ही नहीं दूर दूर तक जहां हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है वहां की मूर्ति के लिए पोशाक, सिंदूर, लंगोटा, घंटा और छत्र आदि यहां से बिना मूल्य के दिए जाते हैं, और तभी वहां की मूर्ति की स्थापना प्रमाणित मानी जाती है। कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार रामायण काल में उसका आदि स्रोत महानगर में स्थित हिबट पॉलिटेक्निक के निकट स्थित इस्लामबाड़ी में था। श्री रामचंद्र जी के सीता जी के त्याग के बाद हनुमान जी के साथ लक्ष्मण जी जब उनको बिठूर छोड़ने जा रहे थे तो रात हो जाने के कारण सीता जी पॉलिटेक्निक के पास बाड़ी में रुकी और हनुमान जी उनके लिए रात भर पहरा देते रहे। कालांतर में इसी बाड़ी में हनुमान जी का एक मंदिर बन गया और इस बाग को हनुमान बाड़ी कहा जाने लगा। 14वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इस बाड़ी का नाम बदलकर इस्लाम बाड़ी रख दिया, जो कि आज तक चल रहा है। 1792 से 1802 की अवध के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम राबिया के जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो तमाम हकीम वैद्यों की दवाएं और पीर फकीरों की दुआओं ने जवाब दे दिया। तब किसी ने उन्हें इस्लाम बाड़ी के बाबा के पास जाकर दुआ मांगने की सलाह दी और वहां उनकी दुआ कबूल हुई। ऐसी किंवदंती है कि बेगम के गर्भ में आए पुत्र ने उन्हें स्वप्न में कहा कि इस्लाम बाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है, उसे निकाल कर हनुमान जी का मंदिर बनवाकर मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कराया जाए। बच्चे के जन्म के बाद राबिया बेगम वहां गईं और खुदाई करवाने पर हनुमान जी की मूर्ति निकली। मूर्ति को साफ सुथरा कराकर चांदी के रत्न जड़ित हौदे पर बैठाकर हाथी पर लाद कर उसे

0: बड़े इमाम बाड़े लाकर उसके सामने हनुमान जी का मंदिर निर्माण कराने का नवाब ने आदेश दिया। बाड़ी के साधु ने आकर बेगम को बताया कि हनुमान जी गोमती के पार नहीं जाएंगे क्योंकि वो लक्ष्मण जी का क्षेत्र है, तो बेगम ने वहीं सड़क के किनारे मूर्ति की स्थापना कराकर एक मंदिर बनवा दिया। साथ ही उस साधु को सरकारी खर्चे पर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया। राजा महमूदाबाद ने मंदिर के आसपास की काफी जमीन मंदिर को दान में दे दी, किंतु मेला अभी नहीं शुरू हुआ। मंदिर की स्थापना के 2-3 वर्ष बाद इस क्षेत्र में प्लेग की महामारी फैली और हजारों लोग इस प्रकोप से बचने के लिए अलीगंज के पुराने मंदिर में गए। तभी मंदिर के पुजारी को स्वप्न हुआ और हनुमान जी ने कहा कि ये लोग नए मंदिर में जाएं, वहाँ की मूर्ति में मैं निवास करता हूँ, मेरी शक्ति वहाँ की मूर्ति में है। अतः पूरी भीड़ नए मंदिर में आई और वहाँ की प्रार्थना से बहुत से लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ, तभी से इस मंदिर में ज्येष्ठ माह का मेला होने लगा। इस संबंध में एक दूसरी कविदंती है कि नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बहुत बीमार हुई और फिर इस मंदिर में हनुमान जी से मन्नत मांगी गई और उन्होंने मंदिर में बहुत खैरात बंटवाई और कई दिनों तक भंडारा कराया। इसी के साथ आलिया बेगम के नाम पर तत्कालीन गाँव का नाम अलीगंज रख दिया गया। एक तीसरी कविदंती भी है कि नवाब वाजिद अली शाह के समय केसर और कस्तूरी का एक मारवाड़ी व्यापारी लखनऊ के प्रसिद्ध मंडी सादतगंज में दर्जनों ऊंटों पर लाद कर केसर लाया, किंतु कई दिनों तक पड़े रहने के बाद भी उसकी केसर बिल्कुल नहीं बिकी। वो दुखी होकर अयोध्या की ओर चल दिया और रात हो जाने के कारण मंदिर के पास विश्राम के लिए रुका और लोगों के कहने पर उसने हनुमान जी से अपने माल की बिक्री की मनौती मांगी और हनुमान जी की प्रेरणा से नवाब के कारिंदों ने उनसे कहा कि केसर बाग जो आप बनवा रहे हैं उसको यदि केसर और कस्तूरी से पुतवा दें तो आपकी मरहूम बेगम केसर जहाँ की खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी। और इस पर व्यापारी की सारी केसर और कस्तूरी नवाब ने मुंह मांगे पैसों में खरीद ली। व्यापारी हनुमान जी की कृपा से मगन हो गया और उसने मंदिर में भव्य निर्माण के लिए दिल खोलकर खर्चा किया। तभी से ज्येष्ठ माह के हर मंगल को मेला लगता है। हनुमान जी का चांदी का छत्र उसी व्यापारी जठमल का बनवाया हुआ आज भी लगा है।
1: बड़े मंगल का आध्यात्मिक महत्व। प्रेम नारायण महत्रोत्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। आज बड़ा मंगल है और सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं संकटों को हरने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण ही मन को असीम शक्ति और साहस से भर देता है। हनुमान जी वो नाम है जिनसे भय मिटता है, दुख दूर होते हैं और जीवन में नया उत्साह भर जाता है। तो बड़े मंगल के इस शुभ अवसर पर आइए हम भी अपनी आराधना का आरंभ करें हनुमान जी की भक्ति उनके स्मरण के साथ।

जय हनुमान। जी हाँ श्रोताओं, राम भक्ति की अनुपम मिसाल, अटूट सेवा और समर्पण के प्रतीक हनुमान जी की महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। भक्तों के संकट हरने वाले

श्रोताओं, भक्त और भगवान का अनुपम उदाहरण है हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी। राम नाम वो अमृत है जो मन की व्याकुलता को दूर कर आत्मा को आनंद से भर देता है। इसी दिव्य भाव के साथ आइए सुने ये पावन भजन।

श्रोताओं, राम और सीता ये दो नाम केवल शब्द नहीं बल्कि आस्था, त्याग, प्रेम और मर्यादा के जीवंत प्रतीक हैं। इनके स्मरण से मन में भक्ति का दीप प्रज्वलित होता है। आइए इसी पावन भावना के साथ सुनते हैं ये मधुर भजन।

भगवान श्री कृष्ण को गोविंद, गोपाल और मुरारी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ सुने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करता ये मधुर भजन।

भजो गोविंद हरे। श्रोताओं, भक्ति और श्रद्धा के इन मधुर स्वरों के साथ ही आराधना कार्यक्रम को अब यही विराम देते हैं। ईश्वर की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्ते लखनऊ में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 190। आज का प्रसंग है ऋषि मुनियों और माता कौशल्या द्वारा भरत से मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी रंजना जोगलेकर और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ति राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पादसमूहेषु विपणौ प्रतिशत 98 मिता शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं

0: लक्ष्यतः वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रवर्यः नरेन्द्रमोदी प्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज नीना सोनकर से जानकारी सुनिए, सुबह का पोषण अच्छे दिन की शुरुआत इस विषय पर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिन की शुरुआत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, सुबह का नाश्ता। हम सभी ने सुना है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होता है, लेकिन इसे अक्सर हल्के में लिया जाता है या कभी कभी पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि नाश्ता आपकी सेहत और ऊर्जा के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सुबह का नाश्ता हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। रात भर सोने के दौरान हमारा शरीर ऊर्जा का उपयोग करता है और सुबह उठने के बाद हमारे मस्तिष्क और शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो ये शरीर के लिए लंबे समय तक भूखे रहने जैसा है। इसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता, मस्तिष्क के प्रदर्शन और पूरे दिन की ऊर्जा पर पड़ता है। नाश्ता पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब आप सुबह नियमित और संतुलित नाश्ता करते हैं तो ये शरीर को दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार करता है। इसके विपरीत नाश्ता छोड़ देने से शरीर थका हुआ महसूस करता है और ऊर्जा का स्तर नीचे चला जाता है। ये स्थिति खासतौर पर उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है जो शारीरिक मेहनत या मानसिक एकाग्रता की जरूरत वाले कार्य करते हों। सुबह का नाश्ता मस्तिष्क के कार्य को भी बेहतर बनाता है। रिसर्च बताती है कि जो बच्चे और वयस्क नियमित रूप से नाश्ता करते हैं उनकी एकाग्रता और याददाश्त बेहतर होती है। खासतौर पर बच्चों के लिए नाश्ता बेहद जरूरी है क्योंकि ये उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। स्कूल जाने वाले बच्चों में ध्यान और पढ़ाई में प्रदर्शन नाश्ता करने से बेहतर होता है। इसके अलावा सुबह का नाश्ता वजन नियंत्रण में भी मदद करता है। ये भूख को नियंत्रित करता है और दिन भर में अनावश्यक स्नैक्स खाने की आदत से बचाता है। जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं वे अक्सर दोपहर में ज्यादा खा लेते हैं जिससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। नाश्ता छोड़ने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और ये वजन कम करने के बजाय वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं कि सही नाश्ता कैसा होना चाहिए। एक अच्छा नाश्ता वो है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन का संतुलित मिश्रण हो। भारत में हमारे पास पारंपरिक और पोषण से भरपूर नाश्ते के कई विकल्प हैं, जैसे कि पोहा, इडली सांभर, पराठा और उपमा जैसे व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषण से भरपूर होते हैं। इन व्यंजनों को ताजे फलों या दही के साथ खाया जाए तो ये एक संपूर्ण और संतुलित भोजन बन जाते हैं। यदि आप जल्दी में हैं तो ओट्स, दलिया या स्प्राउट्स जैसे फटाफट तैयार होने वाले विकल्प अपनाएं। ओट्स और दलिया में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है जो आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करती है। स्प्राउट्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इन्हें सलाद के रूप में खाया जा सकता है। फलों और मेवों को भी अपने नाश्ते का हिस्सा बनाइए। एक कटोरी पपीता, सेब या केले के साथ मुट्ठी

0: हर बादाम और अखरोट आपके दिन की बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली के मक्खन वाले ब्रेड स्लाइस एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। सुबह का नाश्ता सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव का भी तरीका है। नियमित नाश्ता करने वालों में डायबिटीज और हृदय रोगों का खतरा कम होता है। ये शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखता है। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि नाश्ता कभी भारी और तैलीय ना हो। ऐसे नाश्ते से सुस्ती और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हल्का, संतुलित और पोषण से भरपूर नाश्ता आपकी सेहत के लिए सबसे सही है। यदि आप अब तक नाश्ते को नजरअंदाज करते रहे हों तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आज ही शुरू करें। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: सुबह का पोषण, अच्छे दिन की शुरुआत, इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात 11:10 से सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे। विषय होगा किसान कल्याण। कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। श्रोताओं, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समात फरमाइएगा तकरीर। मौजू होगा शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल। मुकर्रर होंगी डॉक्टर शिफा मरियम। साथ ही इसी कार्यक्रम में सुनिएगा अकील नोमानी से उनका कलाम। लोक रंग और लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे किरण देवी के गाए भोजपुरी लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और लोक माधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी आकाशवाणी के 90 वर्ष, कुछ यादें कुछ बातें। इस विषय पर पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक जयश्री कुलभास्कर से नीना सोनकर की भेंट वार्ता। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विनायक प्रताप शाही। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। कार्यक्रम में आज युवा श्रोता श्री कृष्ण प्रताप सिंह की वार्ता सुन सकेंगे। विषय होगा शहरों को हो रहे पलायन की दिशा। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, हरित सोच निर्माण में परिवार की भूमिका। वार्ताकार होंगे डॉक्टर चंद्र मोहन उपाध्याय। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज डॉक्टर अर्चना सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत का विषय रहेगा मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और खरीफ तैयारी। रात 8 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज डॉक्टर रीना चौधरी की वार्ता आप सुन सकेंगे। विषय होगा वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के विभिन्न आयाम। वाच

संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे प्रगति राठौर के गाए गीत व भजन। रात 9:30 से श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे हमारे फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। रात 10:00 से आकाशवाणी गोरखपुर की प्रस्तुति में सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। और रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा सतीश चंद्र के सितार वादन का। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा श्वतेषु दुग्धम प्रवरम। और प्रातः 7:31 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम आज सुबह। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज विविधा का आरंभ एक छोटे से सवाल के साथ। जरा सोचकर बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद रंग की सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? चमकता मोती, खिली हुई चमेली, हिमालय की बर्फ या फिर चांदी की चमक? यूं तो उत्तर कई हो सकते हैं, अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी नापसंद के अनुसार। लेकिन हमारे प्राचीन मनीषियों ने एक अलग ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा, श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम, अर्थात सफेद वस्तुओं में दूध सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आखिर दूध को ही यह विशेष स्थान क्यों मिला? क्या केवल उसके रंग के कारण, या उसके पीछे कोई गहरा जीवन दर्शन छिपा है? इसी रोचक प्रश्न का उत्तर खोजेंगे आज के कार्यक्रम विविधा में। तो आइए दूध की एक साधारण सी बूंद में छिपे असाधारण महत्व को समझने की एक दिलचस्प यात्रा पर चलते हैं। श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम एक छोटा सा संस्कृत वाक्य, लेकिन जीवन के बड़े संदेश के साथ। पहली नजर में ये एक साधारण सा कथन लगता है, लेकिन यदि इसके अर्थ की गहराई में जाएं, तो ये केवल दूध की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि श्रेष्ठता, उपयोगिता और पवित्रता का भी परिचय देता है। यूं तो संसार में बहुत सी वस्तुएं सफेद रंग की होती हैं, जैसे कपास, चांदी, चमेली का फूल, मोती और बर्फ और ना जाने क्या क्या। लेकिन इन सब में दूध को सबसे उत्तम कहा गया है, क्योंकि ये जीवन के पोषण से जुड़ा हुआ है। दूध प्रकृति का एक ऐसा अनुपम उपहार है जो जन्म के साथ ही मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप जानते ही हैं, शिशु का पहला आहार दूध ही तो होता है। इसमें शरीर को स्वस्थ रखने वाले बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों से भरपूर दूध हमारे शरीर की वृद्धि और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संस्कृति में भी दूध का विशेष स्थान रहा है। पूजा पाठ, यज्ञ, अभिषेक और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में दूध का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव के अभिषेक से लेकर पंचामृत निर्माण तक दूध को पवित्रता और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इसे केवल भोजन नहीं, बल्कि अमृत के समान महत्व दिया। श्रोताओं, दूध की महत्ता केवल

स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारे ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। आप जानते हैं भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है। लाखों परिवार दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। गांव की सुबह अक्सर दूध दुहने और उसे बाजार तक पहुंचाने की सामान्य गतिविधियों से ही शुरू होती है। अगर हम अपने दैनिक जीवन पर नजर डालें तो दूध अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। दही, मक्खन, घी, पनीर, छाछ और मिठाइयाँ, ये सब दूध से ही तो बनते हैं। भारतीय खान पान में इसका विशेष स्थान है। त्योहारों और खुशियों के अवसर पर बनने वाली मीठी मीठी मिठाइयाँ, इन सब का आधार दूध ही तो होता है। लेकिन श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम का संदेश केवल दूध तक सीमित नहीं है। यह हमें सिखाता है कि किसी वस्तु का मूल्य उसके रंग या रूप से नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और गुणों से आंका जाना चाहिए। दूध सफेद है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता उसके पोषण, पवित्रता और उपयोगिता के कारण है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान भी उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके विचारों, व्यवहार और कर्मों से होती है। आज के समय में जब हम अक्सर बाहरी आकर्षण को अधिक महत्व देने लगते हैं, तब ये छोटा सा संस्कृत वाक्य हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। जीवन में वास्तविक श्रेष्ठता वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो, जो समाज के हित में हो और जो सकारात्मक योगदान दे सके। श्रोताओं, हमारे साहित्य और संस्कृति में ऐसे अनेक सुभाषित हैं जो कम शब्दों में बड़ा संदेश देते हैं। श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम भी उन्हीं में से एक है। यह हमें गुणों की पहचान करना सिखाता है और ये समझाता है कि सच्ची श्रेष्ठता भीतर के मूल्य में होती है। श्रोताओं, दूध की एक बूंद में केवल पोषण ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन दर्शन भी समाहित है। इसलिए जब भी हम दूध का सेवन करें तो उसके महत्व को भी याद करें और इस सुभाषित के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। याद रखें कि श्वेतेषु दुग्धम प्रवरम, सफेद वस्तुओं में दूध सर्वश्रेष्ठ है और गुणों में श्रेष्ठता ही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। अब इन्हीं विचारों के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए आज की विविधा के सफर से अनुमति। फिर होगी किसी रोज आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा

0: को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति, 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को कल सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
3: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए। अटल टिकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: मुख्यमंत्री ने कल बिजनौर जिले में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
3: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
2: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर और कुशीनगर में लोकार्पण तथा शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज कुशीनगर जिले के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के हरियरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे।

0: इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गोरखपुर में चिलुआ ताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफ़ी कमी आई है। स्थायी पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती रहेगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। करीब 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रस्तुत है किसान कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश के अधिक

अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित, कहा प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र, कहा सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित, 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति, 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: जी हाँ दोस्तों, आपसे किया था ये वादा कि हम बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे, और लीजिए अपने वादे को करते हुए पूरा आ गए हैं हम लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है आज सुबह। मीठे गीत, संगीत की सुरमई छाओ, सुबह की ताजगी भरी हवाएं और एक नए दिन की नई संभावनाएं।
1: आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा,
0: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। आप सभी को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।

0: रिंकी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाया, तो हम बता दें अपने श्रोताओं को, ये प्यारा सा गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म ताजमहल से, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का था।
1: जानकारियां तो आपके पास भर भर के होती हैं श्रद्धा, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं सुबह तो जवाब देंगी?
0: भाई बिल्कुल, लेकिन ऐसा सवाल मत पूछिएगा जिसका जवाब देने के लिए समय कम पड़ जाए, है ना रिंकी?
1: नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, हमें पता है कि हमारे जो 30 मिनट हमारे श्रोताओं के साथ होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। बड़ा आसान सा सवाल है
0: जी।
1: देखिए अच्छा बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए इंसान सुबह जल्दी उठता है, दिन भर मेहनत करता है और शाम को संतोष की सांस लेता है?
0: भाई वाह, लगता है आज दर्शन शास्त्र का पेपर शुरू हो गया है, लेकिन जवाब शायद रोटी है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और संयोग देखिए आज 2 जून है और लोग इसी 2 जून की रोटी के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं।
0: बिल्कुल भाई रिंकी, आखिर रोटी सिर्फ भोजन नहीं, मेहनत सम्मान और जीवन का प्रतीक भी तो है।
1: और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ किसी की रोजी रोटी का जिक्र होते ही बात सीधे जीवन से जुड़ जाती है। रोटी छोटी सी दिखती है लेकिन इसके पीछे किसान का पसीना, मजदूर की मेहनत और परिवार का प्यार छिपा होता है ना?
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगर आप इस समय नाश्ते की मेज पर हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या फिर अपने काम की तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आज रोटी खाना मत भूलिएगा क्योंकि आज ही रोटी के लिए हम पूरा जीवन मेहनत जो करते हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना 2 जून की रोटी मिल जाए जीवन में,
0: बस बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए।
1: तो आज 2 जून है और रोटी जरूर खाइएगा, बाकी आप जितने पकवान चाहें वो खा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: है। और देखिए इसी नए अवसर, नई उम्मीद और नई शुरुआत के साथ अब हम खूब सारी बातें और खूब सारी मनोरंजन के साथ जानकारियां भी अगले आधे घंटे तक अपने श्रोताओं को देते रहेंगे, है ना?
0: बिल्कुल। तो अब समय है रिंकी की आज का सुविचार भी अपने श्रोताओं को बता दिया जाए।
1: जी हाँ, तो आज का सुविचार कहता है कि सफलता का रहस्य लक्ष्य में निरंतरता और प्रयास में ईमानदारी है।
0: भाई वाह, कितनी सुंदर बात है। अक्सर हम सफलता को केवल परिणाम से जोड़कर देखते हैं, जबकि सफलता की अगली नींव रोज के छोटे छोटे प्रयासों में छिपी होती है।
1: जी हाँ, देखिए श्रोताओं, कोई भी उपलब्धि हमें अचानक तो नहीं मिल सकती, उसके पीछे अनुशासन, धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, यही बात हमारे छात्रों, युवाओं, किसानों, वैज्ञानिकों और हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर समान रूप से लागू होती है।
1: दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्य की दिशा में रोज थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन वही छोटे छोटे से कदम हमें किसी बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे, और यकीन मानिए वो मंजिल हमारे सपनों की मंजिल होगी। क्यों श्रद्धा?
0: बिल्कुल। तो आइए आज का दिन इसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं कि हम अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखेंगे।
1: जी हाँ, और देखिए एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि हमारे चेहरे पर मुस्कान तब भी आती है जब हम जानकारियों के साथ साथ थोड़े से अपनी पसंद के नगमे भी सुन लेते हैं ना?
0: बिल्कुल भाई, रेडियो पर अपनी पसंद का गाना बज जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।
1: तो श्रद्धा, आज एक खूबसूरत सा नगमा अपने श्रोताओं को सुनवाने के लिए तैयार है? बिल्कुल
0: बिल्कुल।

0: जी हाँ दोस्तों, चेहरे पर खुशी छा जाती है जब हम आपसे मिलने आते हैं। और ये खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए लाए थे फिल्म वक्त से। गीत में आवाज़ थी आशा भोसले की।
1: बिल्कुल रिंकी, ये गीत इतने सदाबहार हैं कि हम कभी भी इन्हें सुनते हैं ना तो चेहरे पर खुशी के भाव आ ही जाते हैं। बिल्कुल हमारे श्रोता भी मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन रिंकी एक बात है ना, अब समय बदल रहा है ना, डिजिटल युग मतलब हो रहा है, तो आज के युग में डाक सेवाएं भी तेजी से आधुनिक स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। पारंपरिक डाकघर अब तकनीक के साथ कदम मिलाकर नई सुविधाओं और सेवाओं से लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं।
0: जी हाँ, और देखिए आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की, तो इसी विषय यानी जन जी डाकघर पर आज हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं। इस जानकारी में लखनऊ मंडल के डाकघर के प्रवर अधीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्रा से बातचीत कर रहे हैं रमनप्रीत सिंह। आइए सुनते हैं ये रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी।
2: नमस्कार, आज सुबह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अवधेश कुमार मिश्रा, जो कि प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल के हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर।
3: नमस्कार
2: सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी युवाओं में जेंजी का जो दौर चल रहा है, तो जेंजी पोस्ट ऑफिस के बारे में जो सुना गया है, क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
3: जी बिल्कुल, अभी डाक विभाग ने एक पहल की है कि अपने डाकघरों को डिजिटल मोड लाने के बाद में युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उनको जेंजी की आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की मशीन है और उनके बैठने के लिए विशेष सुविधा दी गई है, उनके लिए कुर्सी, डिज़ाइनर कुर्सी, मेज और साथ में वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, वाटर डिस्पेंसर अलग से दिया गया है कि वो एक बिल्कुल रिलैक्स मोड में आकर के वहाँ पर डाकघर को विजिट करें और उसकी सेवाओं का लाभ लें। अभी हाल ही में भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ में एक डाकघर का उद्घाटन किया गया था, तो वो अभी अपनी सेवाएं दे रहा है आईएम में, और अभी लखनऊ में और भी डाकघरों में को इस रूप विकसित करने की योजना है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि डाकघर से युवाओं को जोड़ा जाए, हमारी सेवाओं को समझें, और चूंकि सब टेक्नोसेवी हैं नए युवा, तो टेक्नोलॉजी के साधन को जोड़ करके पैसे का लेन देन, खाते से पैसे का ट्रांसफ़र, या अगर मान लो पार्सल बुक कराते हैं तो अभी आपको चेंज देने की, कैश देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ एक डिजिटल मशीन है, पॉस मशीन है, उससे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक तरीके से आप समझिए कि हम लोगों ने युवाओं

0: को ध्यान में रखते हुए अपने डाकघर को अपडेट किया है,
1: मतलब जेन ज़ी अपने डाकघर आकर अपना समय भी वहां पर थोड़ा सा बिता
0: व्यतीत कर
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: वो उनको बिल्कुल घर का माहौल लगेगा, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा उनके लिए, उनकी एस्पिरेशंस के लिए कि भाई डाकघर इस तरह का नहीं है कि जो पहले ओल्ड ट्रेडिशनली था
1: जी
0: उसको नए रूप में उनके दीवारों को उनकी आवश्यकता पेंट किया गया है, कुछ डिज़ाइन भी बनाई गई हैं, और साथ में जो हमारी नई सुविधाएं उनका डिस्प्ले है, आधार है और इस पॉस मशीन है, खाने पीने का भी जो है वो एक सुविधा के रूप में उसको डेवलप किया गया है जो है।
1: तो श्रोताओं को ये जानकर अच्छा लगा होगा कि डाकघर भी जो है वो हमारे युवाओं के लिए काम कर रही है, और उन्होंने ये जनजी पोस्ट ऑफिस जो पहला अभी IIM लखनऊ में ओपन हुआ है, तो आप वहाँ जाएं और वहाँ पर अपना समय बिता सकते हैं अच्छे से और डाकघर की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, ये थी जेन जी डाकघर विषय पर खास बातचीत। आपसे बातचीत कर रहे थे रमनप्रीत सिंह जी। और लखनऊ मंडल के डाकघर के प्रवर अधीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी हमारे साथ थे।
3: बिल्कुल, और हमें उम्मीद है इस चर्चा के माध्यम से आपको डाक विभाग के आधुनिक सेवाओं और बदलते स्वरूप के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप भी इसका लाभ उठाएंगे।
2: तो श्रद्धा, देखिए जानकारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है ना?
3: बिल्कुल,
2: तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें और अपने श्रोताओं को आज यानी 2 जून के इतिहास के बारे में, क्यों आज का दिन खास है, क्या कुछ इतिहास में आज के दिन हुआ था और किस रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं, ये सब अपने श्रोताओं को बताएं।
3: बिल्कुल, तो क्यों ना शुरुआत की जाए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की औपचारिक ताजपोशी हुई थी आज ही के दिन। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का पहली बार टेलीविजन पर सीधा प्रसारण भी किया गया था।
2: वाह, बहुत खूब। और हम अपने श्रोताओं को बता दें, भारत के इतिहास में 2 जून और भी रूप में महत्व रखता है, क्योंकि वर्ष 2014 में आज ही के दिन भारत का 29वां जो राज्य है तेलंगाना अस्तित्व में आया था और ये भारतीय संघ का सबसे नया राज्य बना था।
3: और पहली डर्बी घुड़दौड़ सन 1780 में इंग्लैंड में पहली बार प्रसिद्ध डर्बी हॉर्स रेस का आयोजन भी आज ही के दिन किया गया था।
2: अपने श्रोताओं को बता दें, 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1924 पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका में जन्मे मूल अमेरिकियों, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है, को देश की नागरिकता प्रदान की गई।
3: और सन 1966 में 2 जून को ही अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक उतरा था।
2: 1946 में एक जनमत संग्रह के बाद इटली को राजशाही से हटाकर संसदीय गणराज्य घोषित किया गया था, वो भी श्रद्धा 2 जून का ही दिन था।
3: बिल्कुल, तो इतिहास तो हमने अपने श्रोताओं को बता दिया है, तो जल्दी से बता देते हैं कि आज दिवस भी कौन कौन से हैं।
2: हाँ बिल्कुल, तो भाई अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जून को हम जो है तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि तेलंगाना आज ही के दिन एक नया राज्य भारत में बना था।
3: और आपको पता है रिंकी, आज मनाया जाता है राष्ट्रीय राखी रोड दिवस। हर साल 2 जून को ये दिवस मनाते हैं। ये दिन चॉकलेट, मार्शमेलो और मेवो यानी नष्ट के स्वादिष्ट मिश्रण वाले राखी रोड आइसक्रीम और मिठाई के इस अनोखे स्वाद का जश्न मनाने के लिए समर्पित है।
2: वाह, क्या खूबसूरत दिन है। और श्रद्धा, मैंने एक चीज देखी है।
3: क्या?
2: पता है, जब भी हम दिवस की बात करते हैं तो आप कोई ऐसी जानकारी, ऐसा दिवस जरूर निकाल के लाती है जिसमें मिठास से जुड़ा हुआ चॉकलेट।
3: बिल्कुल, ताकि श्रोता का दिन मीठा हो जाए,
2: टॉफी दिवस हो, ऐसा कोई दिन आप जरूर ढूंढ के लाती है। तो भाई, बहुत मीठी मीठी सी जानकारियां आपने दी हमारे श्रोताओं को। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं थोड़ा मनोरंजन की ओर।
3: बिल्कुल, हमारे हमारे श्रोता इंतजार कर रहे होंगे खूबसूरत से गीत का,
2: लेकिन इस गीत के बाद बहुत सारी जानकारियां भी और भी है,
3: बने रहिए हमारे साथ।

0: कुमार सानू और चित्रा के युगल स्वरों में आपने सुना भी फिल्म विरासत का ये खूबसूरत ट्रैक।
1: मेरी रिंकी गाने तो आपने सुनवा दी, अब देख रही ना मौसम कैसे पल पल अपना रूप बदल रहा है और हमारे श्रोता कैसे जानकारी पाएंगे कि आज के मौसम का क्या हाल रहेगा, तो क्यों ना जल्दी से मौसम की जानकारी भी दे दी जाए।
0: बिल्कुल, और मौसम की जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं IMD के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी, तो आइए उनसे जान लेते हैं मौसम का हाल।
2: हेलो,
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते।
3: सर हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज के मौसम का क्या हाल रहेगा।
2: जी, मौसम की बात करें तो मौसम आज ऐसे साफ रहेगा, फिर भी अच्छी धूप खिलेगी
3: जी सर।
2: और जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से मौसम खुशनुमा था, धीरे धीरे अब यहाँ से तापमान में इजाफा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, दिन में थोड़ा बादलों की आवाजाही भी रहेगी।
3: जी
2: तो कुल मिला के कहें कि आज थोड़ा सा बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बना रहेगा और ये सिलसिला अभी 2-3 दिन तक इसी तरीके से रहेगा। बाकी एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2-3 दिन के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है, तो फिर उसमें कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। तो कुल मिला
3: यानी
2: देता है कि उतार चढ़ाव वाला मौसम अभी बरकरार रहेगा।
3: जी, यानी जैसे ही धूप बढ़ेगी हल्की बारिश भी हो जाएगी सर।
2: जी, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मौसम है, तो कहीं कोई एक्सट्रीम टाइप का वेदर नहीं है,
3: जी
2: हालांकि दिन में थोड़ी गर्मी का एहसास रहेगा।
3: जी सर। सर आपने हमारी कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।
2: ओके, धन्यवाद।
1: मेरी रिंकी, मौसम की जानकारी तो हमारे श्रोताओं को मिल गई, लेकिन जो ये मौसम बदलता रहता है ना, इसका असर हमारे शरीर पर जरूर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: और देखिए इसमें छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सबको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता
1: हाँ।
0: है,
1: क्योंकि एकदम से ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि गले में सबसे जल्दी आपकी दिक्कत शुरू हो जाती है ना रिंकी।
0: सही कह रही हैं आप, मुझे पता है आप मुझसे ही क्यों पूछ रही हैं।
1: जी हाँ
0: है ना। तो भाई देखिए, मैंने ये गलती की थी, मैंने ठंडा पानी पिया और उसकी वजह से मुझे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और मैं अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगी कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। ये पल पल बदलता मौसम बहुत हानिकारक हो सकता है, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, तो ऐसे में अपना बहुत ध्यान रखें और जितना संभव हो उतनी सुरक्षा जागरूकता के साथ मौसम का सामना करें।
1: जी हाँ,
0: गर्मी बहुत है, लेकिन पानी जो पिए या जो आप खाद्य पदार्थ सेवन कर रहे हैं उनको ज़रूर जांच लें कि वो साफ सुथरे हों, स्वच्छ हों और उपयोगी हों और लाभदायक हों स्वास्थ्य के लिए, उन्हीं का सेवन करें।
1: क्योंकि कोई भी मौसम हो, जब सेहत

0: रहती ना, तभी आप उसका आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक जानकारी आप हमारे श्रोताओं को देना चाह रही थी कि आज कुछ खास दिन है।
0: जी हाँ, श्रोताओं को बता दें, आज महान निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर जी की पुण्यतिथि है, तो आज है उनकी याद का दिन। तो क्यों ना सुनवा दें आपको ये खूबसूरत सा गीत।

0: भई श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ हुई होगी।
1: और अब वक्त है कि आपसे अनुमति ली जाए आज के कार्यक्रम से, लेकिन जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है कुछ सीखने का, कुछ अच्छा करने का और किसी के जीवन में मुस्कान लाने का।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए आज का दिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए।
0: बिल्कुल, जब हम अपने से अधिक दूसरों का भला करते हैं ना, तो जो एक अजीब सी शांति और सुकून हमें मिलता है ना, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता है। इसी शुभकामना के साथ हमें दीजिए अनुमति फिर मिलने की।
1: और फिर मिलने का है आपसे वादा। और इसी के साथ रिंकी और
0: श्रद्धा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब नमस्ते लखनऊ से दीजिए अनुमति। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल, और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: Both sides underscored the
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने

0: पर्यटकों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 ब्रांचेस आल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय

0: दिया है विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तिजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इकतदार आला और इलाकई सालिमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफैन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेचा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खास तौर पर तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मसनूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफद के हमरा आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम दोतरफा तिजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुँच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने ये महसूस किया है कि कैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मिसाली क़्यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 साल में ख्वातीन

0: इनको बाइख्तियार बनाने से मुतालिक इकदामात में नुमाया तब्दीली आई है। हुकूमत की जानिब से हिफ्जान सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके और मुआशी शमूलियत के लिए किए गए इकदामात इस तब्दीली के मुहर्रिक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसका आगाज़ 2015 में किया गया था, करोड़ों ख्वातीन अपने कारोबार को शुरू करने और वसअत देने के लिए ज़मानत से मुबर्रा कर्ज हासिल कर पाई हैं। मस्कूरा स्कीम के तहत इस साल मार्च के आखिर तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत का कर्ज दिया जा चुका है, जिसमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख्वातीन को दिए गए। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए तिरुपुर तमिलनाडु की रिहायशी वंशीरी ने बताया,
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
0: प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उमानिया जैसी कलीदी स्कीमों की बदौलत बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्मों तक ख्वातीन की पहुंच बढ़ी है। जनधन योजना के तहत ख्वातीन के 33 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला की रिहायशी सरोज बाला ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से मुतालिक रकम अब सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है।
2: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजू पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सब की शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
3: सुप्रीम कोर्ट में 9 तकर्रर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने ये जानकारी दी है। CBSE ने तलबा को ये सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जाँच के लिए दरख्वास्त देने के तरीके के बारे में हिदायात के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली ज़िले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ़ुज़ में तआवुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरेदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: काबिले जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनज़र रखते हुए सयाहों को ज़रूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं, ताकि उनके सफ़र को महफूज और लुत्फानंदोज़ बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर ज़िले में बेतवा दरिया पर ज़ेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के ज़िला मैजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तश्कील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े से वाबस्ता सभी इंतज़ामी, तकनीकी और तरीक़ाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जांच कर रही है। ज़िला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22

0: 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। हर खत में छुपी होती है एक प्यारी सी कहानी, हर संदेश में बसती है अपनों की निशानी। तो आइए सुनते हैं आपके दिल की आवाज, क्योंकि यहाँ गीतों के संग सजती है महफिल सुहानी। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा, और अगले कुछ समय तक आपके भेजे संदेशों और आपकी पसंद के मीठे मीठे नगमों के साथ हम सजाएंगे सुरों की एक खूबसूरत महफिल। तो बने रहिए हमारे साथ और हम तक पहुंचाइए अपनी फरमाइश, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर हमें भेजिए अपने संदेश। तो सुबह सवेरे बाराबंकी से एक मेल हमारे पास आ चुकी है। तालिब अंसारी राजा कटराज है, आसिफ अंसारी हैदराबाद और सबीर अंसारी कानपुर से इस मेल को कर रहे हैं। दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का भी मेल हमारे पास आ चुका है। श्रोताओं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा जी का भी मेल हमारे पास आया है। और वहीं झज्जर हरियाणा से मेल कर रहे हैं बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। एक खूबसूरत सा मेल हमारे पास एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामोन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान का भी आ चुका है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। तो आप सभी श्रोताओं को सबसे पहले हम देते हैं धन्यवाद कि सुबह सवेरे आप समय निकालते हैं और हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। न सिर्फ सुनते हैं बल्कि हम तक अपनी फरमाइश भी पहुँचाते हैं। तो आप में से एक श्रोता की पसंद का खूबसूरत सा नगमा आपको सुनवा रहे हैं, इसी गीत से आरंभ कर रहे हैं अपना कार्यक्रम। फिल्म का नाम है जहरीला इंसान, गीत में आवाज है किशोर कुमार की।

दोस्तों कहते हैं कि संगीत वो भाषा है जिसे हर दिल समझता है और इसीलिए हमारे एक श्रोता की फरमाइश सभी श्रोताओं की फरमाइश बन जाती है, उन्हें जरूर पसंद आती है। अगला मेल हमारे पास आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। इसे भेजा है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप ने। एक मेल हमारे पास आया है आदर्श नगर मलोट से, पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा का। श्रोताओं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मेल आया है। मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरहत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजहत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज का। ये लिख रही हैं, हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें और हमें शुक्रिया जी अदा करने का मौका दें। तो देखिए आपको कार्यक्रम में शामिल कर लिया है और शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि शुक्रिया तो हम आपका अदा करते हैं कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और अपना समझकर हम तक अपनी फरमाइश पहुंचाते हैं। श्रोताओं एक और भी खूबसूरत सा मेल हमारे पास पहुंच चुका है और इसे भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। आप में से एक श्रोता की फरमाइश है फिल्म प्यासा सावन से गीत सुनवा दीजिए। तो यह खूबसूरत नगमा प्यासा सावन फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर के स्वरों में।

दोस्तों, जीवन की भागदौड़ में कुछ पल अपने लिए निकालना भी बेहद ज़रूरी है और संगीत ऐसे ही सुकून के कुछ पल हमें देता है। तो सुनना ना भूलिए अपनी पसंद के फिल्मी नगमे। आपको बस इतना करना है कि हम तक पहुंचानी है अपनी फरमाइश आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर, जैसे कि इन्होंने पहुंचाई है। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने। श्रोताओं, बीड शहर महाराष्ट्र से एक मेल हम तक पहुँच चुकी है। नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मेहत्री, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा ने ये मेल हमें किया है। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से मेल कर रहे हैं। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का भी मेल हम तक आ चुका है। तो आप सभी को सुनवा रहे हैं फिल्म छलिया का एक गीत। एक श्रोता ने इसकी फरमाइश की है और इस गीत में आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। दोस्तों, कहते हैं कि सुरों की छाओं में जब दिल को आराम मिलता है, हर गीत में जैसे कोई पैगाम मिलता है। इसे खूबसूरत एहसास के साथ आइए बढ़ चलते हैं अपने अगले मेल की तरफ, जो बहुत ही प्यार से हमें भेजा है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, शबिश्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी ने। हमारे रेगुलर श्रोता हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। तो आपका मेल हम तक पहुंच चुका है और एक मेल हमारे पास जबलपुर मध्य प्रदेश से आई है। इसे भेजा है अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह और कृषिव सिंह ने। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का मेल आया है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। और एक मेल हमें पहुंचा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का। आप में से एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत से गीत की फरमाइश की है मेरा साया फिल्म से। इस गीत में आवाज़ आशा भोसले की है। तो आइए सुबह सवेरे एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को, जो पहुंच रहा है आपके पास तक आपके रेडियो सेट के माध्यम से।
7: झुमका गिरा रे, हाय झुमका।

0: फिर झुमका गिरा दे, मैं क्या बोलूं बेकार में, झुमका गिरा दे बरेली के बाजार में।
1: दोस्तों, रिश्तों की मिठास, यादों की खुशबू और गीतों का साथ, यही तो है इस कार्यक्रम की पहचान। एक मेल हमारे पास आया है कस्बा सेवता जिला सीतापुर से भेजा है सनीला ने और लिखती है, यह मेरा पहला मेल है, इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो देखिए, आपका मेल हमने शामिल कर लिया है और उम्मीद है आपका प्यार यूं ही बना रहेगा। दीपक शाह के, ज्योति शाह के और सक्षम शाह के भी मेल कर रहे हैं अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से। बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा, बेबी आयशा खत्री, रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री का मेल हम तक पहुंच चुका है। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का भी मेल आया है हमारे पास मालियान सरधना मेरठ से। और एक मेल रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का भी पहुंच चुका है। तो आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं फिल्म सच्चा झूठा का एक गीत। गीत में आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगली फरमाइश है हमारे पास संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। आपने फरमाइश की है एक बेहद से खूबसूरत से गीत की मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इनके साथ ही हमारे कुछ और श्रोता हैं जैसे सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख। आपका भी मेल हम तक पहुंच चुका है और बहुत सारे हमारे श्रोता जो इंतज़ार में हैं, मुदित राजपूत, विजेंद्र पाल राजपूत, अनवी, सुनीता, शोभा, दीपा, रामफेर, कपिल राजपूत, प्रांजल, रमा राजपूत और अनया राजपूत का भी मेल हमारे पास आया है। तो यह खूबसूरत सा नगमा आप सभी को सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए से खूबसूरत नगमे के साथ अब आज का आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। फिर होगी किसी रोज़ आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कानपुर झांसी चित्रकूट धाम मंडलों की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाही ने स्टालों पर जाकर विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी लिया। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि सहित कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के साथ ही खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए सरकार द्वारा KCC योजना को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत किए जाने की अपील को बल देते हुए श्री शाही ने कहा कि उन्होंने अपने काफिला कम कर दिया है और अधिकारियों को कार पूल करने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को 100 साइकिल लेने और शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को साइकिलों के माध्यम से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। श्री राकेश सचान ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक खेलकूद, योग, संगीत, कला एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता विकसित कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडुनगर कानपुर नगर का औचित निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधनों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश, युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के निर्देश दिया। मंत्री कपिल अग्रवाल ने बताया,
2: कानपुर जो एक बड़ा हब है, इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, तो यहाँ के उद्यमियों से भी, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि ITI में कभी विजिट करें, बच्चों की आवश्यकता को समझें कि बच्चे ITI करते करते ड्यूअल सिस्टम के अंदर बच्चे ITI में भी काम करें और इंडस्ट्री के अंदर भी प्रशिक्षण लें, तो इन बच्चों को भी इंडस्ट्री में घुमाएं, देखें ताकि ये बच्चे प्रैक्टिकल रूप से वहां जाके इंडस्ट्री में सीखने का काम कर सके और बालिकाओं के अंदर भी एक शानदार आत्मविश्वास दिख रहा है, उनको भी सपने साकार हों।
1: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों अग्रणी जिला बैंक कार्यालय कानपुर नगर द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड NCGTC, राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC, लीड बैंक एवं जन समर्थ PSB अलायंस के मध्य समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी OSD मधुरिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान ECLGS 5.0 योजना MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा रोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा बैंकों के पात्र इकाइयों तथा योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया। SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया,
3: इस स्कीम में जो MSME सेक्टर है, जो भी वो लोन बैंक देंगे, MFI देंगे बल्कि, वो टोटल 100% सिक्योर्ड है और नॉन MSME के लिए 90% तक इसको क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है, जिसका कोई भी फीस किसी भी कस्टमर को नहीं देना है।
0: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
4: रामपुर में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना

0: के अंतर्गत कार्यक्रमों में पॉली हाउस, शेड, नेट हाउस की स्थापना, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन मेकिंग इकाई, कोल्ड रूम एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अधीक्षक राजकीय उद्यान अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इकाई लागत का 40-50% तक अनुदान अनुमन्य है। जनपद में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बारगाहे इलाही में सिर झुकाकर मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआएं की। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों, ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामपुर में अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं ने अपने अपने केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन किया। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने वाली आशाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 आशाओं की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई। ICDS विभाग द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने CDPO मिलक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही CDPO मिलक एवं CDPO बिलासपुर का 3-3 दिन का वेतन बाधित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने योजना के तहत अपना 100% लक्ष्य प्राप्त किया। वर्तमान में जिले के कुल 70,000 से अधिक पात्र बुजुर्गों को पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। अपात्रों की छटनी करने के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए हकदारों को उनका अधिकार दिलाने का काम भी तेजी से हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आजम खान द्वारा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। थाना क्षेत्र भोट अंतर्गत चुनाव प्रचार करते हुए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम MPMLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था। ADGC संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान को इसमें दोष सिद्ध करार दिया गया है।
1: MPMLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में, श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा सजा सुनाई गई, जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया।
0: जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जनपद स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को ओवरलोड पाया गया। इसके अतिरिक्त 25 डंपरों में कमियां पाई गईं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वाहनों में रेता, बजरी अथवा अन्य सामग्री निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें तथा डंपरों का संचालन निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है देशगान।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
6: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ

0: आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान आकाशवाणी रामपुर के मरकज से हाजिर है। सलाम मोहब्बत के साथ आप सबका तहदिल से खैर मकदम करते हैं। सामिन बज़्म, इस मुल्क को ऐसे ऐसे नामवर हीरे मिले हैं कि जिनकी इल्म फन, जिनकी काविशात से ये मुल्क खूब चमक रहा है, खूब दमक रहा है। उनके कलम से जो लिखा वो अमर हो गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ऐसे ही अनगिनत शेरों, अनगिनत गज़लों के मालिक शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को आज इस प्रोग्राम में लेकर हाजिर हुए हैं। खाक में क्या सूरतें होंगी, इस सिलसिले के तहत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल इस पर तफसील से रोशनास करा रही हैं मोहतरमा शिफा मरियम। समात कीजिए ये तकरीर।
1: शायर मशरिक अल्लामा इकबाल एक ऐसी हमागीर शख्सियत के मालिक हैं जिसे चंद सफात में समेटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो शायर होने के साथ साथ फलसफी भी हैं। उनकी शायरी जिंदगी का एक मुदल्लल और कुल्ली तसव्वुर पेश करती है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई। इकबाल के बुजुर्ग कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके वालिद का नाम नूर मोहम्मद और वालदा का नाम इमाम बीबी था। वालदा मजहबी और खुदा तरस खातून थी और वालिद सूफी बुजुर्ग थे। इस तरह शुरू ही से तसव्वुफ और शरीयत ने उनकी किरदार साजी में अहम रोल अदा किया। अल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम मीर हसन साहब की दरसगाह से हासिल की। उसके बाद स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट से एफए तक तालीम मुकम्मल की। अल्लामा इकबाल ने 1897 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और 1899 में एमए इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इस कॉलेज में प्रोफेसर आर्नल्ड ने उन्हें फलसफा पढ़ाया जिनसे वो बेहद मुतासिर हुए। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही अरबी और फलसफी के शोबे में तदरीसी खिदमात अंजाम दी। 1905 में अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। उन्होंने फलसफा अजम के मौजू पर पीएचडी की और 1908 में वो हिंदुस्तान वापस लौट आए। हुकूमत बरतानिया ने 1923 में उन्हें सर का खिताब दिया और इस अजीम शायर ने 21 अप्रैल बरोज जुमेरात 1938 ईस्वी को इस दारे फानी को अलविदा कहा। अल्लामा इकबाल की शायरी का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए हर तबके को अपनी जानी मुतवज्जे किया। वो आला अखलाकी कदरों और इंसानी अजमतों के शायर हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। उन्होंने इब्तदाई दौर में जो नज़में लिखी वो वतन की मोहब्बत की आला मिसाल हैं। उनकी इब्तदाई दौर की नज़मों में हिमालय, तराने हिंदी, हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत और नया शिवाला वगैरह काबिले जिक्र हैं। नज़्म हिमालय में इकबाल ने हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, उसके दिलफरेब मनाजिर और उसकी अजमत रफ्ता के गुन गाए हैं। ए हिमालय, ए फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। तराना हिंदी अल्लामा इकबाल की वतन परस्ताना शायरी का आला तरीन नमूना है। मादरी वतन से उनकी वालेहाना मोहब्बत का इजहार होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद का नगमा यूं गाया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। महात्मा गांधी ने एक खत में तराने हिंदी की तारीफ इस अंदाज में की है। कोट, जब उनकी मशहूर नज्म हिंदोस्तां हमारा पढ़ी तो मेरा दिल भर आया, और बड़ौदा जेल में तो सैकड़ों बार मैंने इस नज्म को गाया होगा। इस नज्म के अल्फाज मुझे बहुत ही मीठे लगे और ये खत लिखता हूँ तब भी वो नज्म मेरे कानों में गूंज रही है। अनकोट। नज्म हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत में उन्होंने मुल्क की वहदत और कौमी यकजहती का गीत गाया है। चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल हमारी जुबान के एक फलसफी शायर हैं। उन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ और मुतनव्वो मसाइल पर गौर फिक्र के बाद अपने कलाम में ऐसे बसीरत अफरोज नजरियात पेश किए जिन्होंने दुनिया के लोगों के दिलो दिमाग पर गहरे असरात मुरतब किए। अल्लामा इकबाल ने इंसान को खुद शनासी का पैगाम दिया है कि इंसान खुद से मार्फत हासिल करे और खुद से आगाह हो। इस सिलसिले में उन्होंने फलसफा खुदी को पेश किया जिसे उनकी शायरी में मरकजी हैसियत हासिल है। खुदी, खुद का एहसास, जुरतमंदी, गैरत, जज्बे खुददारी और अपनी जात सिफात का इदराक रखते हुए अपनी दुनिया आप पैदा करने का नाम है। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी,

अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। खुदी दर हकीकत इंसान की शनाख्त का दूसरा नाम है। उसका महवर फ़र्द का एहसास खुद शनासी है। उसके ज़रिए इंसान मादी और रूहानी तरक्की की इंतहा तक पहुँच सकता है। यही वजह है कि इकबाल की शायरी में जा बजा खुदी और खुदी को मुस्तहकम करने का जिक्र कसरत से मिलता है। ये पयाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही, कि खुदी के आरिफों का है मुकाम पादशाही। तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, न रही तो रू स्याही। गिरां बहा है तो हिफ्ज़े खुदी से है वरना, गिरां बहा है तो हिफ्ज़े खुदी से है वरना, गुहर में आबे गुहर के सिवा कुछ और नहीं। खुदी के इस्तेहकाम के लिए अल्लामा इकबाल ने जिन चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है, उनमें इश्क, जहद व अमल, कोशिश पहम के नतीजा खेज होने का यकीन, फ़िक्र इस्तगना और मुर्शिद कामिल की इत्तबा शामिल हैं। इश्क इस्तेहकाम खुदी में सबसे ज़्यादा मुआविन साबित होता है। इकबाल के नज़दीक इश्क एक अतिया इलाही और नेमत अज़ली है। अक्ल पर वो इश्क को इसलिए फ़ौकियत देते हैं क्योंकि अक्ल मसलहत अंदेश है और ख़तरात मोल लेने की जुरत नहीं करती, उसका दायरा महदूद है। लेकिन इश्क राह की दुश्वारियों को खातिर में नहीं लाता और किसी खौफ व हिरास के बग़ैर आतिश नमरूद में कूद पड़ता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशा लबे बाम भी। अल्लामा इकबाल की शायरी में इश्क के मुतरादिफात लवाजिमात यानी वुजदान, खुदागही, बातनी शऊर, जज्ब, जुनून, दिल, मोहब्बत, शौक, आरजूमंदी, दर्दो सोज, जस्तजू का जिक्र जिस तकरार, तवातुर, इनहिमाक और शिद्दत एहसास के साथ मिलता है, किसी और मौजू का नहीं मिलता। इश्क से पैदा नवाए ज़िंदगी में ज़ेरो बम, इश्क से मिट्टी की तस्वीरों में सोजे दम बदम, आदमी के रेशे रेशे में समा जाता है इश्क, शाख गुल में जिस तरह बादे सहरगाही कनम। अल्लामा इकबाल के नज़दीक इश्क एक ज़बरदस्त मुहर्रिक है, जो एक तरफ तस्खीर फितरत में इंसान का मुआविन होता है तो दूसरी तरफ उसे कायनात के साथ मुत्तहिद रखता है। कायनात की सारी रौनक इश्क ही के दम से है। इश्क के बग़ैर किसी चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है। इकबाल का अकीदा है कि इश्क लाफानी है और जिस दिल में इश्क की आग रोशन हो तो वो मौत की दस्तरस से बाहर हो जाता है। मस्जिद कुर्तुबा में इश्क के लाफानी होने के मजमून को इस तरह बयान किया है मगर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्द खुदा ने तमाम। मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असल हयात, मौत है उस पर हराम। तुंदुसबुक सैर है गरचे जमाने की रौ, इश्क खुद एक सैल है, सैल को लेता है थाम। इश्क की तकवीम में असरे रवां के सिवा और जमाने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े इश्क के मुतालिक खलीफा अब्दुल हकीम अपनी किताब फ़िक्र इकबाल में लिखते हैं, कोट, जिस्मानी ज़िंदगी में हयात व मौत अनासर मादी की तरकीब व तहलील का नाम है, लेकिन जौहर रूह इस कौन आलम कौन व फसाद की चीज़ नहीं। उसकी हकीकत न मादी है और न ज़मानी व मकानी। इस जौहर रूह की बका का ज़ामिन इश्क है, जिसकी बदौलत इंसान अबद पैवंद हो जाता है। महज हिकमत पर मौत गालिब नहीं आ सकती, बका फ़कत इश्क से हासिल की हो सकती है, क्योंकि इश्क हकीकी माखज़ हयात भी है और मकसूद हयात भी, वो जादा हयात भी है और मंजिल हयात भी, अनकोट। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म इश्क और मौत, जो कि टेनिसन की नज़्म का तर्जुमा है, उसका मौजू ये है कि इश्क के फरिश्ते की मौत के फरिश्ते से मुलाकात हो जाती है। नज़्म इस अंदाज़ में शुरू होती है कि मौत कहती है, उड़ाती हूँ मैं रख्त हस्ती के पुर्जे, बुझाती हूँ मैं ज़िंदगी का शरारा, मगर एक हस्ती है दुनिया में ऐसी, वो आतिश है मैं सामने उसके पारा। शरर बन के रहती है इंसान के दिल में, वो है नूरे मुतलक की आँखों का तारा। सुनी इश्क ने गुफ्तगु जब कज़ा की, हंसी उसके लब पर हुई आशकारा। गिरी इस तबस्सुम की बिजली अजल पर, अंधेरे कहो नूर में क्या गुजारा। बका को जो देखा फना हो गई वो, कज़ा थी शिकारी कज़ा हो गई वो। अल्लामा इकबाल की इश्क की न इंतहा है और न इब्तिदा, और ख़ुद इकबाल उसकी इंतहा के कायल नहीं, क्योंकि उनके नज़दीक ज़िंदगी अजल से अबद तक जस्तजू ही जस्तजू है। हर लहजा नया तूर, नई बर्क तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक न होते। उनके नज़दीक इश्क मोहब्बत में शिद्दत का नाम है। इश्क की आखिरी मंजिल ये है कि आशिक माशूक की खुदी में गुम हो जाए। इश्क उनके नज़दीक वो सोजो मस्ती और तड़प है जिससे इंसान कामलियत हासिल करता है। उनका इश्क नाम है एक आलमगीर कुव्वते हयात का, जज्बे अमल से सरशारी का, हुसूल मकसद के लिए बेपनाह लगन का, अज़्म व आरज़ू से आरास्ता जहद मुसलसल का, बका व इर्तिका का, जो हर लम्हा अहवाल नौ का शाइक है।

0: उसे एक हालत पर कायम रहना पसंद नहीं। हर लम्हा जहां नो पैदा करना उसकी फितरत में दाखिल है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है ज़मीर कुन फुका है जिंदगी, जिंदगानी की हकीकत को कन के दिल से पूछ, जुए शीरो तीशो संगे गिरा है जिंदगी। अल्लामा इकबाल की जिंदगी से भरपूर ख्यालात और तसव्वुरात का अंदाज़ा ज़ौक व शौक़, खिज़्र राह, साकीनामा, मस्जिद कुर्तुबा जैसी शाहकार नज़मों से लगाया जा सकता है जो उर्दू शायरी का कीमती वर्सा है। अलगर्ज अल्लामा इकबाल की शायरी में जिंदगी का हर पहलू मौजूद है।
1: खाक में क्या सूरतें होंगी, इस सिलसिले के तहत अभी आप समाप्त कर रहे थे ये तकरीर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। मुकर्रर थीं मोहतरमा शिफा मरियम। आइए इसके बाद शेर व अदब की महफिल में लिए चलते हैं और गज़ल का लुत्फ लेते हैं, क्योंकि गज़ल जिसको हर दौर में पसंद किया जाता रहा है और ये खुद कलाम शायर की शक्ल में हो तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है और चार चांद लग जाते हैं। कलाम शायर के तहत समात करते हैं जनाब अकील मियाँ नुमानी से उनका ताज़ा कलाम।
2: गज़ल का मतला अर्ज करता हूँ, मुलाहजा कीजिएगा कि जुदा हुए तो कोई हादसा हुआ ही नहीं, जुदा हुए तो कोई हादसा हुआ ही नहीं, अब ऐसा लगता है शायद वो इश्क था ही नहीं, अब ऐसा लगता है शायद वो इश्क था ही नहीं। एक आरजू का सफीना है दिल के दरिया में, एक आरजू का सफीना है दिल के दरिया में, गुजर गए कई तूफ़ान वो डूबता ही नहीं। एक आरजू का सफीना है दिल के दरिया में, गुजर गए कई तूफ़ान वो डूबता ही नहीं। किसी की बातों में आकर हम इस कदर खुश हैं कि जैसे सामने अब कोई मसला ही नहीं, जुदा हुए तो कोई हादसा हुआ ही नहीं, अब ऐसा लगता है शायद वो इश्क था ही नहीं। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले। कई निगाहों ने दस्तकें दीं, कई अदाओं ने गुदगुदाया, मगर हकीकत में ख्वाब निकले, ये वाकई दिल नशीं बहुत थे मगर हकीकत में ख्वाब निकले। मैं मुतमैन हूँ कि लब पुशाई से मैंने हद अदब न तोड़ी, मैं मुतमैन हूँ कि लब कुशाई से मैंने हद अदब न तोड़ी, वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सब ने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले। एक गज़ल के चंद शेर तरन में पेश करता हूँ, मुलाहजा कीजिएगा।

مقطع پیش ہے، چند لمحات کی لغزش میں عقیق

लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं किरण देवी के गाए भोजपुरी लोकगीत। अभी आपने सुना इनके स्वर में ये देवी गीत, और लीजिए अब सुनिए ये लोक भजन।

0: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे किरण देवी के गाए भोजपुरी लोकगीत, अभी आपने सुना इनके स्वर में ये लोक भजन। और इसी के साथ अब आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 10 और समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो बिना देर किए आइए चल पड़ते हैं इस संगीत भरे सफर पर। गीत एक बहुत सुंदर सा आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम भी है संगीत और गीत में आवाज़ है जॉली मुखर्जी की।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला नगमा अलका याग्निक और मनहर उदास की फिल्म से सुनिए। आवाजों में फिल्म का नाम है खलनायक।

श्रोताओं, अलका याग्निक और मनहर उदास के गाए इसे खूबसूरत गीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल और हिजबुल्ला लेबनन में संघर्ष रोकने पर सहमत। अमेरिका के रक्षा विभाग ने पेंटागन प्रेस कार्यालय क्षेत्र में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाई। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन

0: दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मामला भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया और पिछले वर्ष अक्टूबर में हुए संवाद के पहले संस्करण के बाद से बढ़े परामर्श और सहयोग पर विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा तथा सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा को नवीनीकृत और सुदृढ़ करने के लिए अपने प्रधानमंत्रियों की प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री ने भारत को वर्ष 2026 के ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय घटनाक्रम, हिंद प्रशांत क्षेत्र और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के बारे में अपने विचार साझा किए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इजराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। उधर ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनन में हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल के हमलों से अमरीका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्शी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। अमरीकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने प्रेस कार्यालय को गोपनीय और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। अब पत्रकारों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। पेंटागन ने कहा कि संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब ट्रंप प्रशासन और मीडिया के बीच तनाव बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में पेंटागन को कवर करने वाले कई पत्रकारों पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: हॉकी में जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। 11 जून से शुरू होने वाला फीफा फुटबॉल विश्व कप का प्रसारण भारत में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड करेगा। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज टॉन्टन में खेला जाएगा। फिलहाल ये श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने पेंटागन प्रेस कार्यालय क्षेत्र में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाई। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। श्रोताओं, समय हो रहा है 10:20 और ये समय है कार्यक्रम चित्रपट से का। तो आइए बिना देर किए आपको लिए चलते हैं नए तरानों की ओर और सुनवाते हैं फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का एक खूबसूरत सा नगमा। गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और शादाब फरीदी की। एंजॉय कीजिए खूबसूरत सा ट्रैक।

अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, जैम का म्यूजिक, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की मीठी आवाज, फिल्म रईस का ये गीत आपके लिए।

0: चले।
1: Once Upon a Time in Mumbai दोबारा, यह है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुन रहे हैं जावेद बशीर की आवाज में।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की।

श्रोता मित्रों नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं धड़कन देश की, आकाशवाणी लखनऊ। पूर्वाह्न के 11 बज चुके हैं और अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। जी हाँ, ये कार्यक्रम आपका है तो करिए हमें फोन, हमसे बातें करिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825 और कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे। यूं सिलसिला दिल की मुलाकात का रहा, कभी हम जा मिले कभी आप आ मिले। जी हाँ, आपसे मिलने का सबसे खूबसूरत कार्यक्रम है ये, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ये जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं।

0: हेलो
1: जय माता दी।
0: जी। जय माता दी। पूरन जी बोल रहे हैं।
1: जी मैडम, मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंजनल बुगला से पूरण वर्मा बात कर रहा हूँ मैडम।
0: जी, आपका अंदाज जो है ना, वो हम सब लोगों को एकदम रट गया है।
1: जी मैडम, मैंने
0: जी,
1: आपका आपके माध्यम से और रेडियो के माध्यम से सीखा मैडम, हमने जो भी कुछ बोलना सीखा है।
0: अरे वाह, नहीं आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और बोलते हैं तो अब बता दीजिए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं।
1: जी मैं आज सुनूंगा, क्योंकि हम सुमन कल्याणपुर जी हमारे बीच नहीं रही, तो
0: जी
1: उसकी आवाज
0: जी
1: में मैं वो गाना सुनूंगा, अपने पिया की बनी रे जोगनिया, ये गाना सुनूंगा मैडम।
0: जी, बहुत ही अच्छा सा गाना है। और 31 मई को सुमन जी ने इस जिस्मानी दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू हमेशा ही कायम रहेगा, है ना पूरन जी?
1: जी हाँ,
0: जी
1: उसकी आवाज के माध्यम से हम ये जाना जाता है और पहचान जाता है, और आने वाले समय में भी वो पहचानी जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि वो हमारे बीच मैडम नहीं है, पर उनकी आवाज हमारे बीच
0: बिल्कुल
1: हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी मैडम।
0: जी, बिल्कुल। तो चलिए, आप और
1: कुछ
0: हम,
1: मित्रों
0: और
1: को याद कर लो, आपके जाते दो तीन को,
0: चलिए याद कर लीजिए।
1: सबसे पहले आप है,
0: धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है रमेश प्रजापति जी, अभिनाथ जी है, और गोल्डी भाई है, और शिवा लोहार है, और जितने कॉलर इटावा से राहुल है, तमाम श्रोता।
0: अच्छा, तो चलिए हम सब मिलकर पूरन वर्मा जी की पसंद का ये गाना सुनते हैं। पूरन जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: अपनी पिया की मैं तो बनी रे जुगनिया, ये खूबसूरत सा गीत हम सब ने सुना सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में और पसंद थी पूरन वर्मा जी की। और आइए देखते हैं अब हमारे साथ जो जुड़ी हैं पूनम जी, वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो।
1: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग पूनम जी, कहाँ से
1: कैसी
0: बोल रही
1: हैं
0: मैम? बता दी, हम तो बहुत अच्छे हैं।

0: आप कहाँ से बोल रही हैं बता दीजिए सबको।
1: मैं कानपुर से बात कर रही हूँ मैम, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कार्यक्रम में मेरा कॉल लग गया है, क्योंकि आपके आकाशवाणी लखनऊ से इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं कि बस मन नहीं मानता है, बस लगता है कि कॉल लगाएं और कार्यक्रम में शामिल हो जाएं।
0: और देखिए आपकी कॉल तो लग ही जाती है ना पूनम जी?
1: जी हाँ बिल्कुल, कॉल तो लग ही जाती है, कहते हैं ना मैम पूरे शिद्दत से कॉल लगाइए ना कार्यक्रम में, तो बिल्कुल कॉल लग ही जाएगा, जैसे
0: सारी
1: हमारे श्रोता लगाते रहते हैं।
0: हाँ सब लोग पूरी कायनात उसके आपके साथ हो जाती है कि ये फोन लग ही जाए, क्यों पूनम जी?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और
0: तो
1: ऐसा
0: जी
1: लगता है जब मैम फोन लग जाता है ना,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ऐसा लगता है सारी जहाँ की खुशियां मिल गई।
0: बिल्कुल सही
1: अब आप
0: कह रही
1: समझ
0: हैं।
1: सकती है कितना ज्यादा आकाशवाणी से लगाव है श्रोताओं को, मुझे भी है, तो अच्छा लगता है कि आप सभी से बातें होती हैं और एक अपनापन सा मिलता है
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी से।
0: बिल्कुल, क्या जो आपकी
1: जी तो
0: हंसी है और जो आपकी आवाज़ में उत्साह है, उससे ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आपको कितनी खुशी हो रही है।
1: जी बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और मैम आपको बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी लखनऊ से हर कोई प्रेम करता है, और बहुत सारे श्रोता है उनका कॉल नहीं लगता है, वो भी कॉल लगाते रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, तो बस सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।
0: चलिए आपकी ये बात सबने सुन ली, और अब आप बता दीजिए कि गाना कौन सा सुनेंगी।
1: जी मैम आज गीत सुना दीजिएगा, फिल्म का नाम है दो दिलों का संगम, गीत के बोल हैं देखा था उसने प्यार से बस एक नजर मुझे, और मैम मैं कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहती हूँ, जैसे जो श्रोता कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो उनका मैं नाम देना चाहूंगी। हमारे श्रोता है राजेंद्र गंगवार जी, उनका कॉल नहीं लग पाता है, और साथ साथ और भी श्रोता है साहिल जी हैं, और हमारे और भी दोस्त हैं अविनाश जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, और विंकी पिंकी जी हैं, और गुंजन तिवारी जी हैं सीतापुर से, समा परवीन जी हैं, अनु पांडे जी हैं गोंडा से, और राम बाबू शर्मा जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं,
0: तो
1: ब्रह्मेश सिंह प्रजापति जी हैं, सभी को श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, राजू भाई भी सुन रहे हैं आपको और जयपाल भाई सुन रहे हैं, सभी को
0: अच्छा,
1: सुनाना
0: तो
1: चाहती
0: इनमें से
1: हूँ।
0: किसी का फोन नहीं लगता? कुछ लोगों का फोन तो लग जाता है।
1: जी किसी किसी का मैम लग जाता है, और जिसका मैंने सबसे पहले नाम लिया राजेंद्र जी का, उनका कॉल नहीं लग पाता है,
0: तो चलिए
1: तो
0: आप
1: उनको
0: उन पूनम जी आप
1: जी
0: उनको बताइए कि आप कैसे कॉल लगाती हैं, है ना? तो
1: जी
0: अगली
1: बिल्कुल
0: बार
1: बिल्कुल मैं बताऊंगी मैम।
0: हाँ अगली बार हमें उनकी कॉल का
1: जी
0: इंतजार रहेगा। चलिए आपकी पसंद का
1: जी
0: गाना आपको सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी मैं

0: और अब हमारे साथ जुड़े हैं आशियाना लखनऊ से रजनीश जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग रजनीश जी, क्या हाल हैं आपके?
1: मैम हम बहुत ही अच्छे हैं और हम आपके बहुत ही पुराने श्रोता हैं और इस समय हम अपनी जॉब करते हैं, इस वजह से कॉल मिलाने के लिए समय नहीं मिल पाता, लेकिन आज हमने कॉल लगाने के लिए छुट्टी कर रखी है।
0: अच्छा, कॉल लगाने के लिए छुट्टी कर ली
1: मैम? आज हमारे घर पे भंडारा भी था और इसी वजह से आज छुट्टी भी कर लिए, हमने सोचा कॉल ट्राई कर लेते तो लग गया मैम।
0: चलिए बहुत अच्छा है कि आपने भंडारे का आयोजन भी किया है और कॉल भी आपने लगा ली। तो बताइए रजनीश जी, क्या सुनवा दें आपको?
1: मैम फिल्म है धर्मवीर, उसका एक गीत है सात अजूबे इस दुनिया में, यही गीत सुनवा दीजिए और जितने लोग सुनने मैम सभी के लिए।
0: अच्छा, सभी आपके दोस्त हैं?
1: जी मैम।
0: तो चलिए रजनीश जी, आपकी
1: और
0: पसंद।
1: मैम हम सभी श्रोताओं को इनवाइट कर रहे हैं कि अगर वो आशियाना है तो जो हमारे पुराने मित्र उनके पास मेरा नंबर जरूर है, तो जरूर शामिल हों।
0: चलिए, आशियाना में आप रहते हैं, जो हमारे श्रोता आशियाना की तरफ रहते होंगे वो जरूर भंडारे में पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है
1: जी मैम,
0: जी
1: धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया।
2: अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जिला औरैया ग्राम पुराने थल्ला से गगनदीप कमल बोल रहे। अच्छे
0: हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और बताइए, क्या हाल है?
1: हैं
0: अच्छा, क्या कर रहे
1: आप?
0: थे?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
0: शुक्रिया आपका। और ये बताइए, क्या कर रहे थे? आप गाना ही सुन रहे थे कि कुछ और काम भी चल रहा
1: अरे
0: है?
1: बाजार गए थे, बाजार से आए, एक पहली कॉल लगाई, आज मेरी पहली हाल लग गई।
0: अच्छा,
1: आज मेरी
0: चलिए।
1: पहली हाल ही लग गई कॉल
0: हाँ,
1: दीदी।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कॉल लग गई और आपकी खुशी से हम देख रहे हैं कि कितनी है। और बताइए,
1: हाँ,
0: क्या करते हैं आप?
1: खेती किसानी करते हैं दीदी।
0: अच्छा, खेती किसानी। आज कितनी तारीख है?
1: हाँ,
0: आज कितनी डेट है? कौन सी डेट है आज?
1: 2 तारीख है जी।
0: हाँ, दो दो तारीख है और 2 जून की रोटी के लिए हम सब लोग काम करते हैं, है ना?
1: हाँ दीदी,
0: तो चलिए बताइए, कौन सा गाना आपको सुनवा दें?
1: कोई मिल गया कायता सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं जी।
0: हाँ, चलिए नाम ले लीजिए।
1: इटावा से ओम नारायण कुशवाहा जी को, और अपने पापा गुराम शंकर कमल को, और
0: अच्छा
1: मावीलाल चंदेल को, गुना मध्य प्रदेश से। हाँ
0: अच्छा तो चलिए सुनवा दें सबको ये गाना।
1: दीदी।
0: जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और एक बार फिर से हम अपना फ़ोन नंबर बता दे रहे हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। और आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देर मत करिए, कोशिश करिए, फ़ोन लगाइए हमें। और आइए देखते हैं अब हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़ी हैं। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते दीक्षा जी।
1: जी नमस्ते मैम, थैंक यू आपने मेरा फोन रिसीव किया।
0: तो बताइए।
1: बहुत खुशी हो रही है।
0: हाँ, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ,
1: मैं सोच रही थी आज मेरा फोन लग जाए तो बहुत अच्छा। आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है आज।
0: अरे वाह, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बच्चे को, वो खूब पढ़े लिखे जीवन में आगे बढ़े।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू।
0: आप कहाँ से बोल रही हैं दीक्षा जी?
1: इसलिए मैं आराधना मूवी का गाना सुनना चाहती थी कि चन्ना है तू, मेरा सूरज है तू।
0: हाँ, बहुत ही अच्छा गाना
1: है। आँखों का तारा है तू।
0: जी आप कहाँ से बोल रही हैं दीक्षा जी? हेलो,
1: मैं ग्राम पाली पोस्ट पाली ब्लॉक बीघापुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से।
0: जी उन्नाव से आप बोल रही हैं और बहुत अच्छा गाना आपने अपने बेटे के लिए चुना है। तो हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके बेटे के साथ हैं और आपकी पसंद का ये गाना हम सुनवा देते हैं। और अपने बेटे का नाम भी बता दीजिए।
1: मैं नाम ले लूं अपने परिवार का?
0: हाँ, पहले तो बेटे का नाम ले लीजिए जिसका जन्मदिन है आज।
1: जी जी, मेरे बड़े बेटे का नाम उल्लास पाली है और छोटे बेटे का नाम उत्कर्ष पाली है और मेरे पति हैं श्री भीमलाल पाली और मेरे एक भैया हैं धर्मेंद्र पाली, धर्मेंद्र भैया बीघापुर से और राजेश विद्यार्थी हरदोई से। और मैम एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि फोन के माध्यम से कुछ लोग कहते हैं कि आपके बच्चे का नाम मुस्लिम लगता है,

0: तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का नाम शुद्ध हिंदी का शब्द है, उल्लास मीन्स होता है खुशी,
1: खुशी खुशी।
0: कोई समाचार पत्रों में या रेडियो में समाचार सुनते हैं तो उसमें बात समाचार में आता है कि उल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया।
1: जी जी जी जो बहुत से लोगों को बहुत से चीज़ों के का अर्थ नहीं पता होता है। और नाम तो देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नाम है आपके बच्चे का, तो हम आपका गाना सुनवा दें, है ना?
0: और उत्कर्ष माने होता है
1: हाँ
0: शिखर पर पहुंचना,
1: जी जी
0: चोटी पर पहुंचना,
1: जी बिल्कुल
0: होता है।
1: बहुत अच्छा नाम है दोनों बच्चों का आपका। तो दीक्षा जी आपका नाम भी बहुत प्यारा है, हम आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा देते हैं, ठीक है? जन्मदिन की एक बार फिर से शुभकामनाएं।

0: जी हाँ, अब हमारे साथ लाइन पर हैं ओम नारायण कुशवाहा जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ ओम नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम इटावा से बोल रहे हैं।
0: जी हाँ इटावा से बोल रहे हैं। इटावा से अब हमारे काफी श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं, फोन करने लगे
1: नहीं,
0: हैं।
1: इटावा से दो ही है, हम हैं और राहुल जी हैं, केवल लाल प्रसाद।
0: अच्छा अच्छा तो और लोगों को भी जोड़िए। अच्छा दो ही हैं तो और लोगों को भी जोड़िए,
1: क्योंकि हम सुनते रहते हैं रोजाना।
0: हाँ हाँ
1: सुनते हैं।
0: हाँ तो और लोगों को भी कहिए कि वो भी हमारा कार्यक्रम सुने, हमसे जुड़े, फोन करें, है ना?
1: जी हाँ जी
0: जी। तो बताइए ओम नारायण जी, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: हम सुनना चाहते हैं, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, और दो चार मित्र हैं मेरे।
0: चलिए दो चार मित्रों को याद कर लीजिए और उन मित्रों से भी आप कहिएगा कि वो भी फोन लगाएं हमें, ठीक है?
1: अच्छा यानी
0: जी
1: इटावा लालपुरा से राहुल जी है, और मांगी लाल जी है, और सतीश जी फरदाबाद से है, और रिंकी पिंकी, और जो है अच्छा

0: अकला से गगनदीप कमल जी हैं।
1: अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपके इटावा की
0: बहुत, बहुत आपको धन्यवाद रिसीव करने के लिए हमारी कॉल।
1: नहीं हम हमें तो इंतजार रहता है कि हम आपकी कॉल्स का है ना।
0: सही है सही है।
1: तो चलिए आपका यहाँ का मट्ठे का आलू बहुत फेमस है तो वो खाइए और आपकी पसंद का हम गाना आपको सुनवा दे रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और हमसे मिलने का बहाना आपके पास भी है, हमें फ़ोन करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। और कार्यक्रम में आज आप हैं अपनी रेडियो दोस्ती शिखा दुबे के साथ, और आइए जानते हैं मास्टर राधेश्याम जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो शिखा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कहाँ से बोल रहे हैं बता दीजिए।
1: मास्टर राधेश्याम साग के बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से।
0: कासगंज से बोल रहे हैं, और बताइए क्या हाल हैं आपके।
1: हाल ठीक है मैम
0: तो मास्टर हैं आप, तो क्या पढ़ाते भी हैं।
1: जी, इंटर कॉलेज लेक्चरर हूँ मैथ का।
0: अरे वाह, मैथ का लेक्चरर हैं। अरे
1: जी जी जी
0: बहुत कठिन शब्द सब्जेक्ट लगता है मुझे मैथ।
1: नहीं, कठिन नहीं है मैम, समझ में आया वो सरल है, ना समझ में आया वो कठिन है।
0: जी हाँ, आप जैसे मास्टर होंगे तो बच्चों को ज़रूर अच्छे से मैथमेटिक्स समझ में आती होगी, है ना।
1: ऐसा है, कोई क्वेश्चन है उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए तो ऑटोमेटिक सरल हो जाएगा फिर वो।
0: चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि मैथ जो है वो खैर प्रैक्टिस तो हमेशा मांगती है। तो आज छुट्टी है।
1: जी, अब छुट्टी चल रही है, जून की 20 मई से छुट्टी पड़ गई है, अभी
0: अच्छा
1: जून तक
0: अच्छा
1: चलेंगे,
0: अच्छा चलिए बढ़िया है, छुट्टियां चल
1: जुलाई
0: रही
1: खुलेगा
0: हैं
1: 1 जुलाई को।
0: तो आपको मौका मिल गया आज हमसे बात करने का।

0: भी इसीलिए है ना।
1: ऐसा फोन कम लगा पाते, सुनते तो डेली है। खैर
0: अच्छा, तो चलिए बता दीजिए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: फिल्म का नाम है सूरवीर
0: हाँ
1: और गाने के बोले हैं, हाय क्या पूछते हो, दर्द किधर होता है।
0: अच्छा, तो चलिए सुनवा देते
1: ठीक
0: हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। मास्टर राधेश्याम जी, फोन करने के लिए
1: जी ठीक
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: है, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: और अब हमारे साथ हैं रमेश प्रजापति जी, हमारे नियमित कॉलर, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम वाया, तहसील रैती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा अच्छा रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, आप तो हमारे नियमित कॉलर हैं। और बताइए क्या कर रहे थे आप?
1: मैं कपड़े बना रहा हूँ, सिलाई करता हूँ, शर्ट
0: अच्छा,
1: बना रहा था।
0: अच्छा अच्छा तो चलिए बढ़िया से आप शर्ट बनाइए और बताइए कि गाना कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: जी मैं दो रास्ते फिल्म का गाना है, बिंदिया चमकेगी और चूड़ी खनकेगी, एक दो मित्रों को याद कर लूँ आपकी इजाजत
0: हाँ
1: हो?
0: जी कर लीजिए।
1: भगवान सिंह परमार, पूरम वर्मा जी, गजराज लोधी जी, केसरी सिंह राजपूत, मांगीलाल चंदेल, प्रेम सिंह सिसोदिया है, आशुतो जी है, संगीता जी है, पूर्णमा जी है, पूनम जी है कानपुर से, रविनाथ जी, राकेश जी है, और अमन और विमल भस्माकारी है, गोल्डी जी है, पूनम वो अमर सिंह साहू जी है।
0: जी रमेश जी, आपने दो नाम बोलते बोलते आपने तो पूरी जड़ी लगा दी है ना। चलिए आपकी पसंद का गाना हम आपको सुनवा दें, ठीक है? दो रास्ते पिक्चर का गाना है, ठीक है? फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ जुड़े हैं दिनकर जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है दीदी जी कि यदि अपराधी को कानून का भय हो
0: जी
1: और भय मुक्त समाज हो, वही समाज वही राज।

0: तरक्की में नंबर वन हो सकता है, नंबर वन हो सकता है। और दीदी जी जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड वसुधैव कुटुम्बकम, हर समाज और हर राष्ट्र के लिए ये मेरा कथन अनिवार्य है और सत्य भी है।
1: जी हाँ, बहुत जरूरी है। दीदी जी नमस्ते दिनकर जी, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि भय मुक्त, अपराध मुक्त समाज होगा तो हम सबकी प्रगति होगी, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, कानून का भय हो, भय मुक्त समाज हो, हर आदमी स्वच्छंद होगा, अपना पैसा फंसाएगा और तरक्की में अव्वल नंबर हो जाएगा। ये मैं पूरे वसुधैव कुटुम्बकम हर राष्ट्र के लिए, हर समाज के लिए कह रहा हूँ।
1: चलिए और बताइए कि क्या कर रहे थे आप?
0: बिल्कुल, मैं आपको जो है डबल डेकर यानी डबल जाल में फंसा रहा था, तब जाके दो फोन से पे नंबर में आपका जो है लगा। मुझे बहुत उम्मीद थी कि आज मेरा नंबर लग जाएगा, क्योंकि एक महीने से दीदी जी आपसे बात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा सीखा दीदी जी जरूर आज बात करूंगा, तो मैंने डबल जाल लगा।
1: अरे वाह, तो आज आपका फोन डबल जाल लगा के मतलब उसमें हमारी कॉल, आपकी कॉल फंसी गई है ना?
0: बिल्कुल, आपकी कॉल को फंसा लिया मैंने किसी तरह से, वो भी लास्ट पोजीशन में आते आते।
1: जी जी, तो बताइए दिनकर जी कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: जी मुझे गाना सुनना, तू जो हंस दे बहार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। और मेरे दो तीन मित्र तो सैकड़ों हजारों हैं, लेकिन दो तीन मित्रों का नाम लूंगा जल्दी जल्दी।
1: जी
0: हमारे बुजुर्ग हैं प्रेमदास बाबा
1: जी,
0: और सबसे बुजुर्ग हैं और प्रिंसिपल है हमारे देवी शंकर शुक्ला जी, बाबा दीन निषाद जी, और आपके फूल चंद पाल और बेटा सिंह यादव और मांगी लाल चंदेल और उर्दू के शायर विजय पांडे जी।
1: जी चलिए, तो सबको ये गाना सुनवा देते हैं, तू जो हंस दे, तो क्या बोल है उसके गाने के?
0: तू जो हंस दे बहार आ जाए, मुझे मेरे दिल को
1: करार आ जाए। तो चलिए सब लोग मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए ये गाना। आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। नमस्कार,
1: नमस्ते
0: जी।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं अजीत शर्मा जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते अजीत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं ग्राम नगला काचियान, पोस्ट औरंगाबाद, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
0: जी, और बताइए क्या हाल है आपके?
1: बस बढ़िया है।
0: तो रेडियो सुना जा रहा था कि उस रेडियो सुनते हुए कुछ काम भी किया जा रहा था?
1: काम भी कर रहा है, साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, तो डीटीएच पे सुन रहे थे प्रोग्राम।
0: अरे वाह, देखिए कितना फायदा है कि अब आप मोबाइल पे भी हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं, है ना? तो बताइए जी जी, कौन सा गाना सुनवा दें आपको? हेलो।
1: हाँ जी,
0: हाँ गाना बता दीजिए।
1: गाने के बोल हैं मेरे महबूब तुझे सलाम, फिल्म का नाम बगावत है, और कुछ दोस्तों का नाम ले लूं?
0: कुछ होने चाहिए, आप लोग की लिस्ट कुछ लंबी हो जाती है।
1: नहीं नहीं, दो चार दोस्त रूप सिंह साक हैं, वेदराम मुखिया हैं, रोशन लाल साक हैं।
0: हाँ हाँ,
1: बस
0: बस। अरे वाह, तो चलिए सबको हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: लिस्ट कुछ लंबी हो जाती है।
1: नहीं नहीं, दो चार दोस्त रूप सिंह साहब के हैं, वेदराम मुखिया हैं, रोशनलाल साहब के हैं।
0: हाँ हाँ बस, अरे वाह, तो चलिए सबको हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के हमारे अंतिम कॉलर हैं मोहम्मद हारून जी। आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
0: जी, और बताइए क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं तो इस समय
1: जी, काफी समय हो गया आपसे बातचीत हुई, लेकिन फोन नहीं लगता।
0: तो आज पहली बार फोन लगा है क्या?
1: जी, काफी समय हो गया, महीना भर हो गया होगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पहले बात हो चुकी है आपकी हमसे?
1: हाँ, बात तो कई बार हो चुकी है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप गाना भी बता दीजिए, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे हमें इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम हमें खत्म भी करना है, फिर आपका गाना सुन नहीं पाएंगे आप पूरा।
1: देखो, समय भी खत्म होने वाला है।
0: जी जी,
1: मेरे मेहरबान का सुना देना आप।
0: अच्छा, तो सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना, और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। धन्यवाद आप।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त शिखा दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है।

0: कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें, ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
0: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुडी और प्रमोद कुमार डुडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
0: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
0: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
1: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन तथ्य कुछ और है।
0: जी।
1: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
0: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
1: बताइए।
0: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
1: जी वो तो है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
0: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी,
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि

0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है
1: जी।
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।

0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
1: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
3: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
2: चलो,
4: अरे
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो
5: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
2: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की

0: साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है, और अच्छी बात यह है इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया, और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा आज, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?

0: I am sure, 100%, सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर सर, ये टेलीग्राम।
0: अच्छा, लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
0: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
0: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
0: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
4: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
0: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
4: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
4: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
4: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।

0: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे, वो नगमे जो छेड़ जाते हैं दिल के तारों को, जो बन जाते हैं आपकी आवाज। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं फिल्म खट्टा मीठा के इस गीत से, जिसे गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर और राजेश रोशन ने। शब्द रचना है गुलजार की, संगीत से इस गीत को संवारा है राजेश रोशन ने।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: बदल रहा है भारत, तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की 747 किलो हर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है खानदान फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की, संगीत खय्याम का, बोल नक्श लालपुरी के।

आप सुन रहे हैं तपस्या फिल्म का गीत किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ में, संगीत रविंद्र जैन का, बोल एमजी हशमत के।

और आइए अब सुनते हैं आनंद आश्रम फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। बोल इंदिवर के धुन बनाई है श्यामल मित्रा ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है रजनीगंधा फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत सलिल चौधरी का।

0: आंटी आप कहानी सुनाओगी?
1: जरूर सुनाऊंगी, इधर आओ। बोलो कौन सी कहानी सुनोगे?
0: तोते और बंदर की।
1: अच्छा, जरूर सुनाऊंगी।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा

से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1,200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। खैरत अली निवासी भबरापुर थाना भिनगा जिला श्रावस्ती ने सूचित किया है कि रेशमा दिनांक 13 मई 2026 से लापता हैं। रेशमा की आयु 16 वर्ष रंगोरा कद 4 फीट 10 इंच चेहरा गोल है। इनके होंठ पर कटे का निशान है। इन्होंने नीले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9721306264। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9721306264। अशोक मौर्य निवासी बखारीपुर थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर ने सूचित किया है कि उनके पुत्र अमन मौर्य दिनांक 11 अक्टूबर 2024 से लापता हैं। अमन मौर्य की आयु 17 वर्ष कद 5 फीट रंगे हुआ चेहरा लंबा है। गुमशुदगी के समय इन्होंने लाल टी शर्ट व काला पैंट पहन रखा था। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दे 8960125527। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 8960125527।

9527. सर्वेश कुमारी, पत्नी धर्मराज, निवासी रुस्तमखेड़ा, गजियापुर, थाना बछरावां, जनपद रायबरेली ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री शिवगौरी दिनांक 26 अप्रैल 2026 से लापता हैं। शिवगौरी की आयु 16 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, एकहरा बदन और लंबा चेहरा है। इनके माथे पर चेचक के निशान हैं। इन्होंने काला कुर्ता पैजामा और गुलाबी रंग की चप्पल पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 8957867927। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 8957867927। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कुशीनगर की तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की लागत वाले 278 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने तमकोही राज में मुख्तलिफ महकमों की नुमाइश का मुआयना और स्कीमों के फैजियाब अफराद को सर्टिफिकेट तकसीम किए। वजीर आला ने आज इस मौके पर वहां मौजूद अवाम को खिताब भी किया। इस दौरान वजीर आला ने कहा कि आज कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के भी हक में काम कर रहे हैं।
1: कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सेलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं।
0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि हुकूमत की बहबूदी स्कीमों का फायदा हर अहल अफराद तक पहुंचना यकीनी किया जाए। कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक़िद जनता दर्शन में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। दिक्कतें सुनने के बाद वजीर आला ने दरख्वास्तों के तस्फिये के लिए मुतल्लिका अफसर और पुलिस अफसरान को अहकाम दिया कि सभी दिक्कतों का तस्फिया मुकर्रर वक्त में मुनसिफाना और पुर इत्मीनान होना चाहिए। मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रिंसिपल के तहत गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तब्दीली हुई है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए कई जरूरी पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 12 सालों में खसूसी शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। आज खवातीन बाइख्तियारी की सिमत में हुई कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं

0: दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को मौजूदा पेन और पेपर की जगह कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुनक़िद करने का मतालबे वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदलिया ने कहा है कि कंप्यूटर मबनी री एग्जाम मुनक़िद करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इम्तिहान रद्द होने के बाद से कौमी एग्जाम एजेंसी पहले से ही चैलेंजेस का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और उसके मसावी ओहदों के लिए तहरीरी इम्तिहान 8, 9 और 10 जून को मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन मराकज पर मुनक़िद होंगे। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एडिशनल सेक्रेटरी भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने बताया कि ये इम्तिहान 2 शिफ्टों में मुनक़िद होंगे। 32,000 से ज्यादा ओहदों के लिए इस भर्ती से मुतालिक तफसीली मालूमात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। लखनऊ मेट्रो भी अब वन नेशन वन कार्ड ला रहा है। इस कार्ड के होल्डर मुल्क के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में बैलेंस रखना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा। आज ज्येष्ठ महीने का 5वां बड़ा मंगल है। लखनऊ के अलीगंज वाके पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज वाके दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वैड ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के इल्जाम में आजमगढ़ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। और महकमे मौसमियात ने रियासत के मगरबी अजला में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक इस दौरान रियासत के मशरकी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे ने आने वाले दिनों में रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: सखियों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम अपराजिता में। मैं हूं आपकी सखी मेघा।
1: और मैं हूं श्वेता। सखियों
0: नमस्कार।
1: मेघा, पता है कल मैं अपने एक रिलेटिव के घर गई, वहां एक बड़ी ही दिलचस्प बात हुई।
0: क्या?
1: भाई, मेरे अंकल ने मेरी 10 साल की बेटी से पूछा कि बेटा बड़ी होकर क्या बनोगी, तो उसने बड़ी ही मासूमियत से कहा, मैं तो पहाड़ों पर चढ़ूंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी और कुछ ऐसा करूंगी जो किसी ने ना किया हो।
0: अरे वाह, फिर क्या कहा तुम्हारे अंकल ने?
1: अरे बस वही जो अक्सर कहा जाता है। थोड़ा तो मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई ढंग का काम करना।
0: सच कहूं श्वेता, कई बार हम ढंग का काम और अलग काम, इन दोनों के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाते।
1: हाँ, क्योंकि जो रास्ता सबने चुना हो वही हमें सुरक्षित लगता है, लेकिन जो नई राह चुनता है वही तो नई मंजिल भी खोजता है ना?
0: बिल्कुल, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। भाई, ज्यादातर घरों में एक मान्यता होती है ना कि अगर कई पीढ़ियों से कोई खास व्यापार होता चला आ रहा हो तो घर के बड़े पहले से ही कह देते हैं कि हमारा या बेटा या बेटी भी यही गद्दी संभालेंगे।
1: हाँ, और कुछ जगहों पर तो मेगा, जैसे किसी परिवार के सदस्य सेना में, पुलिस में या सिविल सर्विसेज में होते हैं, तो भाई उनका भी सपना यही होता है कि जो उनके बच्चे हों वो

0: उसी वर्दी में उन्हें नजर आए।
1: बिल्कुल, लेकिन सोचो अगर सब लोग एक ही रास्ते पर चलते रहते तो शायद कोई नई खोज ना होती, है ना?
0: हाँ।
1: और ना ही कोई नया विचार जन्म लेता।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और देखो ना, हम महिलाओं की बात करें तो आज हम सभी हर क्षेत्र में आगे हैं, फिर चाहे बात हो साइंटिस्ट की, पर्वतारोही की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की। और देखो ऑपरेशन सिंदूर को हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ महिलाओं ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। और जबकि हम हर समय एक ऐसा भी दौर था जब इन क्षेत्रों में महिलाओं की लोग कल्पना भी नहीं करते थे।
1: बिल्कुल। और श्वेता, सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनमें से कई महिलाओं ने शुरुआत एकदम साधारण परिस्थितियों से की थी। और जानती हो, ना तो उनके पास कोई जादुई छड़ी थी, बस था अपने सपनों पर भरोसा।
0: बिल्कुल सखियों, यही भरोसा कायम रखना है खुद पर। और अगर आपके मन में भी कोई सपना हो, कोई ऐसी इच्छा हो जो सिर्फ इसलिए दब रखी है क्योंकि वो दूसरों से थोड़ी अलग है, तो एक बार खुद को मौका जरूर दें।
1: बिल्कुल, जैसे श्वेता तुम्हारा और मेरा सपना भी तो आकाशवाणी के माध्यम से पूरा हुआ।
0: हाँ
1: भाई, जिसके जरिए से हम आज अपनी सखियों से बात कर पा रहे हैं और सपनों की उड़ान को उड़ पा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हो। और देखो, क्योंकि हर ऊंची उड़ान के पीछे कुछ अनुभव, कुछ सीख और कुछ अनकही कहानियां होती हैं। और जब बात आकाशवाणी की हो तो ऐसी कहानियों का खजाना और भी समृद्ध हो जाता है ना?
1: तो सखियों, इसी पर सुनते हैं विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष, कुछ यादें कुछ बातें, पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्रीमती जयश्री कुलभास्कर जी से। इनसे बात कर रही है नीना सोनकर।
2: हम अपने सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। मैं नीना सोनकर आकाशवाणी लखनऊ के विशेष स्टूडियो, जो कि अब VIP स्टूडियो हो गया है, वहां पर उपस्थित हूं। और एक समय में इसे ग्रामीण स्टूडियो के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, समय बदलता है, दौर बदलता है, और हर बदलते दौर में कुछ न कुछ विशेष होता है। और आज इन्हीं विशेषता को लेकर मैं आई हूँ अपनी सीनियर यानी कि वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती जयश्री कुलभास्कर जी को लेकर, और दिल से करते हैं उनका स्वागत। जयश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियो में, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। यादों के झरोखे में आप रही हैं, और एक अनाउंसर कभी भी रिटायर नहीं होता, क्योंकि आवाज का जादू किसी के भी सर चढ़कर बोलता है। तो मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार, साथ में नीना, तुम्हें भी मेरा बहुत नमस्कार। मेरे सभी श्रोताओं को मैं बधाई देना चाहूंगी कि हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। मेरी कर्मस्थली और ये मेरे सारे स्टूडियोज, जहाँ हम लोगों ने दिन रात काम किया है, स्टूडियो में बैठ जाने के बाद न बाहर का पता चलता है, सिर्फ आप अपने स्टूडियो, अपने माइक्रोफोन, अपनी घड़ी और अपने टेप्स के साथ लिमिटेड हो जाते हैं।
2: जी जयश्री जी, कब आपके मन में ऐसा आया कि आपको रेडियो में आना है? क्या कोई ऐसी आवाज जो आपने बचपन में रेडियो में सुनी हो? क्योंकि उस समय का जो रेडियो था वो सिर्फ आकाशवाणी ही हुआ करता था, एक मनोरंजन ज्ञान का माध्यम, और उसकी प्रतियोगिता में कोई भी अन्य नहीं था। तो आपके मन में कैसे आया कि रेडियो में आना चाहिए और अपनी आवाज को पेश करना चाहिए?
3: ऐसा था कि जब मैं छोटी थी, हमारे घर में बहुत रेडियो चलता था। मेरे पिताजी अक्सर हिंदी और इंग्लिश न्यूज सुना करते थे, और हमारे समय में जो रेडियो अनाउंसर्स हुआ करते थे, उनका जो उच्चारण होता था, उनके जो प्रस्तुतिकरण का तरीका था, तो वो हमें बहुत ही आकर्षित करता था। उसके साथ साथ हम लोग हवा महल भी सुना करते थे, रेडियो सिलोन तो खैर चलता ही था।
2: जी,
3: मैं जब 4 बजे स्कूल से आ जाया करती थी तो एक उर्दू कार्यक्रम आता था एक्सटर्नल सर्विसेज का, उसमें बहुत अच्छे 4-4:30 बजे आपकी फरमाइश पर गाने प्रस्तुत होते थे।
2: जी,
3: वो मुझे बहुत आकर्षित करता था, तो मैं वो भी सुना करती थी। और कहना चाहिए जिन्हें देखने की मेरी बड़ी लालसा रहती थी, इंग्लिश के सुरजीत सेन थे,

0: और बोरुन हलदार, विनोद कश्यप और मेलविन डुमेलो, इन सब की आवाजें बहुत प्रभावित करती थी हम लोगों को भी। तो मुझे भी लगता था कि कभी मैं भी इस तरह से रेडियो में बोलूंगी, या मुझे भी कोई भगवान ऐसा अवसर दे दे जब मैं भी इस तरह से आकाशवाणी जाऊं और बोलूं। और हम लोग 6th या 7th क्लास में पढ़ते थे तो मेरे साथ की कई सारी लड़कियां बाल सभा में आती थी और विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम और भाषा सीखें इस तरह के कार्यक्रम पहले हुआ करते थे। संस्कृत भाषा सिखाई जाती थी और उसके साथ साथ में हिंदी होती थी और दूसरी भी भाषाएं आती थी जिनके पहले टेप्स भी बजा करते थे भाषा सीखो का। तो मेरी बहुत सारे मित्र आया करते थे, पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे कोई अवसर नहीं मिला उस तरह से जाने के लिए और अवसर की तलाश में काफी समय बीत गया। फिर आया 1974 का वर्ष
1: जी,
0: यहाँ से मैंने अपनी रेडियो की यात्रा शुरू की। हुआ यूं कि मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं एक बार जरूर अपने आप से रेडियो स्टेशन जाऊंगी और मैं आकाशवाणी भोपाल पहुंच गई।
1: जी,
0: डरते डरते वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनसे पूछा कि मुझे युववाणी कार्यक्रम में, मैंने सुन रखा था युववाणी कार्यक्रम के बारे में, तो मैं वहां जाना चाहूंगी।
1: जी,
0: उन्होंने मुझे बता दिया कि कौन से कमरे में जाना है। मैं वहां पहुंची तो अधिकारी बैठे हुए थे, पहले तो बड़ा मन में डर था और बात करने में भी झिझक रहे थे और उम्र भी ज्यादा नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी वार्ता वगैरह देना चाहती हूँ, तो उन्होंने एक रजिस्टर दे दिया और कहा कि इसमें नाम पता अपना और आप किस विषय में रुचि रखती हैं उसके बारे में लिख जाइए।
1: जी,
0: और मुझे फिर थोड़े ही दिनों के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर, तब पोस्ट से आया करते थे,
1: जी, जी.
0: तो मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला और उसमें मेरा मनोविज्ञान, चूंकि मैं पढ़ रही थी विषय, तो उससे ही संबंधित एक कॉम्प्लेक्स जो मनुष्य के अंदर ग्रंथि होती है
1: जी.
0: उसके विषय में मुझे एक 10 मिनट की वार्ता करनी थी।
1: जी,
0: तो मैंने उसकी तैयारी करी और वार्ता जो है वो शाम को युववाणी कार्यक्रम सजीव प्रसारण होता था, शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो मेरा युववाणी कार्यक्रम में वो पहला सजीव प्रसारण था। डरते डरते पढ़ा गया, कई सारी रिहर्सल्स घर में की, घर वालों को सुनाया और उसके बाद फिर अपने अधिकारी को भी मैंने एयर पर जाने से पहले सुना चुकी थी। फिर जब मेरी वार्ता प्रसारित हो गई तो एक और कोई अन्य अधिकारी जिन्हें मैं जानती नहीं थी वो स्टूडियोज में आए और मुझसे पूछने लगे क्या आप कहीं पढ़ाती हैं। तो मैं तो पहले घबरा गई, मैंने उनसे कहा नहीं सर, मैं तो खुद विद्यार्थी हूँ। तो बोले नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया, मुझे ऐसा लगा शायद आप इस विषय पर पारंगत हैं और आपने तो इतनी अच्छी वार्ता प्रसारित की। थोड़ा सा मन में उत्साह जागा
1: जी,
0: और मैंने आकाशवाणी के चक्कर काटने शुरू किए। फिर वहां पर पता चला कि विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर्स की पोस्ट आने वाली है
1: जी,
0: और फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो मैंने फॉर्म भर दिया वहां पर। और फॉर्म भरने के बाद में हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। ट्रेनिंग के दौरान हमारे सीनियर अनाउंसर्स ने हमें बोलने का अंदाज सिखाया।
1: जी,
0: 1975 में मध्य प्रदेश में कई सारे नए केंद्र आ रहे थे तो वहां पर ऑडिशंस होने वाले थे और मुझे वहां मेरे सहयोगियों ने बताया कि तुम क्यों नहीं फॉर्म भर देती हो। मैंने फिर भरा वहां पर और इंटरव्यू में मुझसे मेरे स्टेशन डायरेक्टर, जो अपने वक्त के बहुत नामी गरामी स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, के शिंगलू साहब, उन्होंने कहा कि क्यों जगदलपुर जाओगी।
1: जी,
0: मैंने कहा हाँ सर जाऊंगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम जगदलपुर जाओगी। और मुझे फिर जगदलपुर पोस्टिंग मिली जो कि अब छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, पहले वो मध्य प्रदेश का इलाका हुआ करता था।
1: जयश्री जी, आपने एक बार में शिंगलू साहब से कह दिया कि मैं जगदलपुर जाऊंगी, मन में ऐसा नहीं हुआ कि घर से दूर जाना पड़ेगा और कैसे क्या होगा? ऐसा लगता है कि मन में कहीं ना कहीं आपके ये कुछ उत्सुकता थी कि जब जाऊंगी तो नौकरी मिलेगी, कमाऊंगी। कहा जाए कि एक युवा लड़की के मन में जो कुछ होता है कि इससे अपने सपनों को पूरा करूंगी।
0: बिल्कुल नीना, तुमने सही कहा। और उस समय माहौल ऐसा नहीं था कि कोई डरने वाली बातें हुआ करती थी या कुछ, एक मन में उत्साह था कि हाँ मैं ये कर दिखाऊंगी।
1: जयश्री जी, चूंकि हम लोग आकाशवाणी के उद्घोषक हैं, 3

0: यानी कि तीन शिफ्ट में हम लोग की ड्यूटीज हमेशा लगा करती हैं, तो कोई ऐसा वाकया जगदलपुर का बताइए कि आपकी सवेरे की ड्यूटी हो और समय पर ना पहुंच पाई हो, या फिर सोकर ना उठी हो, हड़बड़ी में उठी हो, तो क्या हुआ उस समय?
1: क्या था कि लोग अभी जगदलपुर में इतना जानते नहीं थे कि कोई आकाशवाणी केंद्र खोला है। घर जो हमने लिया था वो आकाशवाणी केंद्र से काफी दूर था। अब सुबह के समय 5 बजे हमें कोई न सवारी मिलती थी न कोई था। हड़बड़ाकर हम सुबह उठे और दौड़ के उस समय तो बस निकले ड्यूटी करने के लिए, तो एक साइकिल पर कोई व्यक्ति जा रहा था। मैंने उससे रोक के कहा कि भैया हमें आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र पहुंचा दो। तो उसने कहा कि मैं तो जानता नहीं हूं कि केंद्र कहाँ पर है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे तुम बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता बताती हुई चलती हूँ। ऐसे कोई मन में डर वर भी नहीं था कि मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ में साइकिल पे बैठी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वैसा माहौल ही नहीं था उन दिनों कोई। तो वो भी मुझे स्टेशन तक पहुंचा दिया, कोई धन्यवाद वगैरह का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। भागी सीधी स्टूडियोज में, और चूंकि हमारे अनाउंसमेंट्स पहले से ही तैयार ड्यूटी रूम में रखे रहते थे, मेरे जो टेक्निकल साथी थे उन लोगों ने सिग्नेचर ट्यून जो हमारी आकाशवाणी की धुन होती थी वो पहले बजानी शुरू कर दी थी। मुझे तो उस समय ऐसा लगा था आज मेरी छुट्टी हो गई, आज मेरे को शायद नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहले क्या होता था तुम्हें बता दूं मैं, आकाशवाणी उद्घोषक जो रहते थे वो कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड पे आते थे, और हम लोगों को जब पहली पोस्टिंग मिली थी उसमें यह होता था कि हम लोगों को मंथली कॉन्ट्रैक्ट मिलता था और मंथली कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिन्यू होता था। उसके बाद जब हम लोगों का परफॉर्मेंस और ये देख लिया जाता था उसके बाद हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। जो मेरे 40 साल का जो सफर रहा उसमें कई मौसमों के बदलाव देखे, कई ठंडियां गुजारी, कई गर्मियां देखी, कई बारिश घनघोर बरजते गरजते, बस हमें एक लक्ष्य हमारा जो होता था हमारे स्टूडियोज पहुंचना समय पर, ये हमारे लिए पूजा से कम नहीं होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जगदलपुर जो है वो डिफिकल्ट स्टेशन गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया और हम लोगों से ट्रांसफर मांगा, तब आकाशवाणी रीवा आने वाला था। रीवा मैंने ट्रांसफर अपना लिया। जब आकाशवाणी रीवा में मेरा सफर जारी हुआ तब भी वहां पर इंस्टॉलेशन का काम हो रहा था।
0: किस सन में आप रीवा आई जयश्री जी?
1: मैं रीवा आई लगभग 1977 में, और वहाँ पर भी हम लोग जो है 20-30 किलोमीटर दूर एक मैसा गांव हुआ करता था, वहाँ पर ट्रांसमीटर था, वहाँ से हमारी पूरी तीनों सभाओं का प्रसारण होता था। तो हम लोग ऑफिस से अपना सारा मटेरियल लेकर के गाड़ी में टेक्निकल स्टाफ के साथ में उद्घोषणा करने के लिए वहाँ जाते थे।
0: जयश्री जी, दूर दराज जो भी ट्रांसमीटर्स लगा करते थे, तो चूंकि हम लोग अनाउंसर्स थे, आप बता रही हैं अपना वृत्तांत कि किस तरह से हम वहां गए और किस स्थिति में काम किया, लेकिन उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए काम को आपने बखूबी अंजाम दिया।
1: हाँ बिल्कुल दिया, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन ही उसके लिए हुआ था। तब लगता था हमें कि नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमें यहाँ पहुँचना है, हमें ये करना है।
0: जी,
1: जब हमें अपने स्टूडियोज और अपनी चीजों सबसे लगाव हो जाता है, हमारे श्रोताओं के जब हमारे पास पत्र आने शुरू होते हैं, लोग हमको सुनने लगते हैं, तो उससे एक अलग ही लगाव लगता है।
0: जी,
1: हमारे एक केंद्र निदेशक थे, उन्होंने ये बताया था कि जब आप जो भी सभा प्रेजेंट कर रहे हैं एक श्रोता को मन में रखिए।
0: जी,
1: वैसे तो हमारे हजारों श्रोता हैं, पर आप एक को मन में रखिए कि ये व्यक्ति तो जरूर मुझे सुन रहा होगा।
0: जी,
1: तो आज का ये जो कार्यक्रम है मैं इसको सुना रही हूँ, मन में ये रहेगा कि वो सुन रहा है, तो आप कोई भी गलती करने से पहले चौकन्ने हो जाएंगे।
0: जयश्री जी, बातें तो चल रही हैं, बहुत सी बातें अभी बाकी भी हैं, इन बातों के बीच में आपकी पसंद का कोई एक गाना हो जाए।
1: देखो, जो गीत मुझे बेहद पसंद है और उसकी जो मिठास है उस गीत की, मैं बयां नहीं कर सकती। मुझे अगर कोई कहे कि सुबह से शाम तक सुनो तो मैं वो सुनूंगी। ओ पंछी प्यारे, बंदनी फिल्म का, आशा भोसले की आवाज में।

0: अपने सुनने वालों को ये बात बताना चाहूंगी मैं नीना सोनकर कि आज वरिष्ठ उद्घोषिका जिनका नाम है श्रीमती जयश्री कुलभास्कर वो हैं आज स्टूडियोज में अपने संस्मरण सुना रही हैं। जयश्री जी आकाशवाणी की अगर हम बात कर रहे हैं पुराने दौर से ये दौर चला आ रहा है कि एक उद्घोषक होता है केंद्र की रीढ़ यानी वो जो कुछ प्रेजेंट करता है उस केंद्र को बोलते हुए करता है वो केंद्र ही उसकी धड़कन होती है और आपने ये भी बताया कि किस तरह से उस समय के जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे वो हमें गाइड करते थे।
1: जब हम रीवा में थे तो हमारे साथ जो हमारे डायरेक्टर्स थे वो तो कहना चाहिए कि एक प्रसारण के क्षेत्र में मील का पत्थर वो साबित होते हैं
0: जी।
1: श्री उमेश चंद्र दीक्षित जी श्री हेमेंद्र नाथ जी उमेश चंद्र जी हमारे बाद में डायरेक्टर जनरल रहे वो हमारे एएसडी हुआ करते थे रीवा में। तो ये कहें कि उनका ऐसा टेरर रहता था हम लोगों में इतना डर रहता था कि अगर उन्होंने बुलाया है तो समझो नीना पैर ऐसे मन मन भारी हो जाया करते थे दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती थी कि पता नहीं आज कौन सी गाज गिरने वाली है
0: जी।
1: अच्छा फिर क्या हुआ कि उद्घाटन होने वाला था आकाशवाणी रीवा का तो उद्घाटन के समय पहले ये परंपरा रहती थी कि 3 दिन 4 दिन तक लगातार कंसर्ट्स हुआ करते थे तो आकाशवाणी रीवा में भी 3 दिन के कंसर्ट्स हुए जिसमें कि युववाणी कार्यक्रम हुआ सुगम संगीत और लोक संगीत का कार्यक्रम और 1 दिन क्लासिकल कार्यक्रम हुआ
0: जी।
1: तो मुझे जो है वो क्लासिकल प्रोग्राम दे दिया गया तो मैंने कहा ये कौन सा भाई कार्यक्रम क्लासिकल मुझे दे दिया गया क्या मैं युववाणी और क्या मैं लोक संगीत या सुगम संगीत नहीं प्रस्तुत कर सकती हूँ
0: बिल्कुल
1: क्या?
0: क्योंकि आपकी युवा सोच थी आप युवा थी तो आपको लगा कि युववाणी देना चाहिए था जी।
1: तो मैंने फिर सर से जाकर कहा सर मुझे क्लासिकल क्यों दे दिया कहने लगे क्यों क्लासिकल में क्या बात है मैंने कहा सर क्लासिकल सुनने कौन आएगा तो फिर उन्होंने डांटते हुए कहा क्लासिकल अपने आप में एक बहुत ही समृद्ध परंपरा लिए हुए है और उसमें एक गंभीरता की एक पहचान केंद्र अपनी देता है तो इसलिए तुम्हें कहा गया है। तो मैंने सोचा शायद हम कुछ होंगे भाई मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय था और उस समय क्लासिकल कंसर्ट में डॉक्टर एम आर गौतम जी जो कि शास्त्रीय संगीत में अपना नाम रखते थे विदुषी पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर एन राजम और उस समय की उपशास्त्रीय और सुगम संगीत की गायिका निर्मला देवी जी मैंने उन सब की अनाउंसमेंट की थी। उस अनाउंसमेंट में मुझे बहुत वाहवाही मिली मुझे बहुत सब लोगों ने सराहा
0: जी।
1: जब निर्मला देवी जी को हमने स्टेज पर प्रस्तुत किया नीना तो मैं एक

0: बात बताना चाहूंगी। उन्होंने आने से पहले अपना एक आसन बिछवाया, अपने गुरुजी की वहां पर तस्वीर रखी और धूप अगरबत्ती जलाई गई, पुष्प अर्पित किए गए। मुझे इतना अच्छा लगा शास्त्रीय संगीत के उस माहौल में धूप दीप की जो सुगंध फैली थी उससे मन इतना प्रफुल्लित हो गया कि मैंने दूने उत्साह के साथ, सच मानूं मुझे वो आज भी पल याद आते हैं
1: जी।
0: और इधर मैं एक और बात बताती चलूं, हमारे स्टेशन डायरेक्टर मुझे बुलाकर एक दिन कहने लगे कि क्या सिर्फ ट्रांसमिशन ड्यूटी तक ही अपने आप को सीमित रखोगी, आगे बढ़ना नहीं है। हम अपने स्टेशन डायरेक्टर को दादा कहते थे। मैंने कहा दादा आदेश करें, तो कहने लगे अब तुम महिला कार्यक्रम भी संभालोगी। तो मैंने कहा सर मुझे तो कुछ आता नहीं। बोले अरे आता नहीं आता नहीं, क्या लगाती हो, हम सिखाएंगे ना तुम्हें। फिर उन्होंने मुझे किस तरह से उसकी शेड्यूलिंग करते हैं, बाकायदा किस तरह से आप प्लान बनाते हैं, वो सब सिखाया मुझे महिला कार्यक्रम का। और हम लोगों का तब महिला कार्यक्रम शुरू हुआ। और जानती हो महिला कार्यक्रम शुरू करने के लिए हमने रीवा की महारानी श्रीमती प्रवीण कुमारी जी को आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम की शुरुआत। उसकी जो प्रश्नावली थी वो हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने खुद तैयार की थी। और बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैंने महारानी जी से इंटरव्यू लिया और मेरे साथ में मेरी सहयोगी भी थी, हम दोनों ने मिलकर उनसे बातचीत करी। और उनसे बातचीत करने पर पहले तो बहुत डर लगा कि भाई महारानी साहिबा हैं, पर उनका इतना अच्छा स्नेह भरा सानिध्य मिला हमें और पता चला कि वो भी बहुत अच्छी संगीत और साहित्य की जानकार थीं, उसमें माहिर थीं
1: जी।
0: ये तो रहा सब आकाशवाणी रीवा जगदलपुर वाला सफर। फिर मैंने 1980 में आकाशवाणी भोपाल वापस मेरा स्थानांतरण हुआ और वहाँ मैंने लगभग 80 से 98 तक अपना कार्यभार संभाला। और इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी देखे, प्रस्तुतियाँ बहुत सारी दी, परिपक्वता आ गई थी। तब हम लोगों के लाइव कंसर्ट्स हुआ करते थे, जो हमारा आकाशवाणी केंद्र होता था उसमें ही कई सारे कंसर्ट्स हुआ करते थे, मुशायरे होते थे, कवि सम्मेलन होते थे।
1: मतलब जयश्री जी, जो एक उद्घोषक का काम होता है उद्घोषणा करना, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे कामों का दायित्व सौंपा गया और आपको ये कहा गया कि हम सिखाएंगे, तो आपको इतने अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने आपको सिखाया।
0: अब नीना ये बातें तो बहुत लंबी हो गई, अब मैं आना चाहूंगी जब मैंने अपना कार्यक्षेत्र लखनऊ चुना।
1: वाह क्या बात है, नवाबों की नगरी में आपका स्वागत है। नजाकत से नफासत से पेश कीजिए, क्या चाहेंगी आप पेश करना?
0: मेरा ये परम सौभाग्य है 1998 में पारिवारिक कारणों से मैंने अपना स्थानांतरण लखनऊ मांगा
1: जी।
0: इस केंद्र की ख्याति, इस केंद्र की जो धरोहर है, मैं समझती हूँ वो आकाशवाणी के जो अन्य केंद्र हैं उनसे ज्यादा है। एक समृद्ध परंपरा, यहाँ इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे हुए हैं, साहित्यकार अमृतलाल नागर जी, इलाचंद्र जोशी जी और भगवती चरण वर्मा जी, बिस्मिल्ला खां साहब, बेगम अख्तर, जिन्होंने अपनी जिंदगी की पाली की जो कहते हैं दूसरी शुरुआत इस आकाशवाणी लखनऊ से की। तो ये मेरा कहना चाहिए सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर आकर के आकाशवाणी का एक हिस्सा बनी, क्या कहना चाहिए, एक सागर में बूंद बराबर हमारी सेवाएं हमने इस केंद्र को दी।
1: एक खूबसूरत एहसास ये आपके मन में आया जब आप लखनऊ की सरजमी पर आई, और वाकई में लखनऊ बहुत खूबसूरत है। आपने समृद्ध परंपरा की बात की, विशेष तौर पर जब हम बात करते हैं आकाशवाणी लखनऊ की तो यहाँ की दरो दीवार बहुत कुछ कहती है। यहाँ हमारे पुरखों की वो बातें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं जुनूनी बनने के लिए, कुछ ऐसा नया करने के लिए कि जो याद रखा जाए।
0: देखो आज भी अगर हम हवा महल कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें आकाशवाणी लखनऊ की जो हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग्स थे वो आज भी बजते हैं। और नाटक के क्षेत्र में, महिला कार्यक्रम के क्षेत्र में, बाल कार्यक्रम में, जो रेडियो कार्टून्स जो हुआ करते थे, है ना,

0: जी जी
1: और हम लोगों का एक किसानों का कार्यक्रम हुआ करता था, उसके जो स्टॉक कैरेक्टर्स हुआ करते थे, रमई काका,
0: जी जी
1: ऐसे कई सारे
0: जी
1: कैरेक्टर्स थे सुदूर गांवों तक जिनकी प्रसिद्धि होती थी। और जब मैं आकाशवाणी रीवा में थी तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर, और वो पहले यहाँ काम कर चुके थे
0: जी
1: आकाशवाणी लखनऊ में, तो वो हमसे कहा करते थे कि आकाशवाणी लखनऊ का महिला कार्यक्रम सुनो, उससे प्रेरणा लो और उस जैसा कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश करो।
0: जी
1: तो उस समय का जो महिला कार्यक्रम, जो नाटक, संगीत जो प्रसारित होता था, सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने जो हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हमारी जो रीति रिवाज हैं, वो सही मायने में मैंने लखनऊ आकर ही उसको देखा,
0: जी
1: परखा, सुना। ऐसे लगा जैसे मैं अपने रूट से, अपनी जड़ों से जुड़ गई हूँ। ये जो सफर था, ये समझो इतना लंबा सफर था, जब मैं बात कर रही हूँ आपसे
0: जी
1: तो न जाने कितनी स्मृतियां मेरे दिमाग में कौंध रही हैं, पर समय सीमा अपनी जगह पर है। एक जो परिवार का जो वातावरण जो हमें इस आकाशवाणी में मिलता है, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। और जिसने मेरे अपने निजी जीवन में भी बहुत परिवर्तन लाए, सुख समृद्धि जो शांति मन को मिलती है वो इस कार्यक्षेत्र में मुझे मिली, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन सफल हुआ।
0: श्रोताओं कहते हैं कि जो लखनऊ एक बार आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। तो जयश्री जी ने अपनी जो दास्तान सुनाई वो यही कह रही है कि वो लखनऊ की ही होकर रह गई हैं। लखनऊ में एक खासियत है कि हर एक को मोहब्बत से अपनाता है। कहीं कहीं आपने लिखा हुआ देखा भी होगा कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और आज इस मुस्कुराहट के साथ आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की उद्घोषिका श्रीमती जयश्री कुलभास्कर जी के संस्मरण। कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ अच्छी अच्छी यादें, जीवन का उतार चढ़ाव होता ही कुछ ऐसा है। एक अनाउंसर का दिल कैसा होता है इनकी बातों से आपको बखूबी लगा होगा कि कहीं भी कुछ भी हो जाए जब स्टूडियोज में आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ काम नजर आता है। हमारी अनाउंसमेंट्स, हमारा प्रेजेंटेशन बस यही मायने रखता है। जयश्री जी आप प्रोग्राम में आई, आज आपने अपने पुराने दिनों को याद किया, इसके लिए हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
2: बिल्कुल, हम भी शुक्रिया करते हैं सखियों। अभी आप सुन रही थी आकाशवाणी के 90 वर्ष कुछ यादें कुछ बातें पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक श्रीमती जयश्री कुलभास्कर जी से। इनसे बातचीत कर रही थी नीना सोनकर। और हम कार्यक्रम में अब तुरंत लौटेंगे, बस छोटे से अंतराल के बाद। तो इंतज़ार रहेगा आपका भी, और आप हमारा इंतज़ार करिएगा।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक युग, एक आवाज, एक एहसास, भले ही स्मृतियों में समा गया लेकिन सुमन कल्याणपुर जी की मधुर आवाज हम सभी के दिलों में यूं ही सदैव गूंजती रहेगी।

0: मेरा धरती हमें हर दिन अनमोल संसाधन देती है, लेकिन बढ़ता कचरा इन संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है।
1: वो तो इसीलिए क्लाइमेट एक्शन की दिशा में रिड्यूस वेस्ट यानी कचरा कम करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो सखियों अपनाते हैं 10 आर्स मंत्र,
0: जिसमें सबसे पहले रिफ्यूज यानी अनावश्यक चीजों को लेने से मना करें, रिड्यूस करें अपनी जरूरतों को और रीयूज करें उन वस्तुओं को जिन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकें।
1: रिपेयर एंड रिफर्बिश के जरिए पुरानी चीज़ों को नया जीवन दें, रिपर्पस करके उनका नया उपयोग खोजें और रिसाइकिल के माध्यम से कचरे को संसाधन में बदलें।
0: हाँ, और साथ ही रिकवर, रीथिंक और रिस्पेक्ट को भी अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।
1: तो सखियों इन टिप्स को अपनी जीवन शैली में अपनाकर हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मेघा को
0: और मुझे यानी श्वेता को दीजिए अनुमति। सखियों
1: नमस्कार।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी शहरी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अपराजिता, और अब आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से फौजी भाई सुनेंगे पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों, जय हिंद। कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे पास ये पहला मेल आया है जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानू, रामशंकर पत्रकार, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू और राम चरण प्रजापति का। आप सभी सुनना चाहते हैं जानी दुश्मन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

और ज़िला रायबरेली से पंकज गुप्ता, देवताधीन मास्टर जी राजेश चौहान का हमें ये मेल आया है। आप सुनना चाहते हैं बरसात की रात फिल्म का गीत, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में।

एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें https://prasarbharti.gov.in/NIPP या https://akashvani.gov.in/files/NIPP.pdf। आवश्यक सूचना समाप्त हुई।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से चल रहा है कार्यक्रम जवानों के लिए। और ये मेल हमारे पास आया है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागरपुरे, राधेश्याम नागरपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। और आप सभी सुनना चाहते हैं राजा और रंग फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

और ये पत्र हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा का, और आप सुनना चाहते हैं रंग फिल्म का गीत जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका

0: यह योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग

0: ऐसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी

का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले दो से तीन दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में डॉक्टर विनायक प्रताप शाही जानकारी दे रहे हैं खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं, वहां खरीफ सब्जियों की खेती कैसे करें, इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट बहराइच से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर बीपी शाही साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ सब्जियों की अगेती खेती करनी है तो अभी से शुरुआत कैसे करें, क्या कुछ करें किसान भाई बहन?
2: नमस्कार किसान भाई एवं बहनों, चूंकि बात होती है खरीफ फसल की, सब्जियों की कैसी फसल लें, तो जैसे ही आप देखते हैं कि अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी उस समय हम नर्सरी पे विशेष ध्यान देंगे कि अगेती हम नर्सरी कौन सी लें।
1: जी, तो शुरुआत करें कि खरीफ में कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी खेती फायदेमंद होगी।
2: किसान भाइयों, खरीफ की बात होती है तो टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, अगेती फूल गोभी है, खरीफ प्याज है और हरी मिर्च है। इसके साथ साथ किसान भाई जो बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी है, करेला है, खीरा है, चिकनी तुरई है, धारीदार तुरई आती है। इसके साथ ही आप लोबिया की फसल भी हम लेते हैं
1: और उनका स्वस्थ और प्रमाणित बीज इस्तेमाल करें बुआई में। अब कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी नर्सरी डालनी होगी तो उसके लिए नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव महत्वपूर्ण है।
2: हाँ किसान भाइयों, नर्सरी का स्थान का चुनाव ऐसे जगह करना चाहिए जहाँ कि हमारा जल भराव ना हो, क्योंकि जब हम नर्सरी का स्थान चुनाव करते हैं तो समतल क्यारी की अपेक्षा हम ऊपर उठी हुई क्यारियाँ बनाते हैं,
1: ऊपर उठी हुई
2: क्यारियाँ बनाते हैं, जिससे कि हमारा उसमें पानी ना लगे, जिसमें हमारी नर्सरी ना खराब हो, ये विशेष ध्यान देना है।
1: डॉक्टर साहब, अब जहाँ नर्सरी डालनी है तो उस मिट्टी का, उस भूमि का उपचार भी करना होगा ताकि रोग दोग या कीड़ा मकोड़ा न लगे।
2: नर्सरी 10 से 15 दिन पहले उसकी मृदा का सौरीकरण, सॉइल सोलराइजेशन करना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए किसान भाई जुताई करके उसमें फार्मलिन आता है 10 से 15 ml प्रति लीटर पानी में घोल तैयार कर लें और इसकी मात्रा अगर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 4 से 5 ml 3 से 4 मीटर गहराई पे अगर आप डाल करके ऊपर से सफेद पन्नी 200 गेज की आती है, चारों तरफ से ऐसे दबा दें कि मिट्टी से कि हवा का संचार अंदर न जाए, अंदर का बाहर न जाए, जिसमें क्या होता है इसमें कीट और बीमारियां जो लगभग 1 फीट की 2 फीट की गहराई तक हमारी पूरी मर जाए। और खास बात होता है कि जैसे ही हम नर्सरी लगाते हैं उसमें खर पतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है तो उससे भी हम निताज पा जाते हैं।
1: यानी भूमि उपचार का फायदा होगा कि रोग दो कीड़ा मकोड़ा और खर पतवार तीनों से मुक्ति हो जाएगी।
2: जी जी,
1: तो नर्सरी की क्यारियां कैसे बनाएं किसान भाई बहन, उनकी साइज क्या होगी? और आपने शुरू में ही कहा कि उठी हुई क्यारियां होनी चाहिए, तो कितनी ऊंचाई?
2: देखिए, अगर हम बात करते हैं कि नर्सरी की जैसे जाड़े वाली फसल होती है उसमें समतल क्यारी बनाते हैं और इसमें उठी हुई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पे हम इसकी क्यारी बनाए, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं, लंबाई आप आवश्यकता अनुसार रखें, फिर उसके बाद लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की एक नाली बनाए, फिर दूसरी क्यारी

0: हुई बनाएं, और उसमें जो हम खाद एवं उर्वरक की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 2 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद है तो 500 ग्राम डालना चाहिए। अगर आपकी भारी मिट्टी है तो 2 किलोग्राम रेत आप मिला करके उसमें करें, और चूंकि जब चौड़ाई 1 मीटर से ज्यादा ना रखें, जब 1 मीटर से ज्यादा रखेंगे तो किसान भाई क्या होता है, जब निराई गुड़ाई करना होता है तो उसमें दिक्कतें होती हैं, हमारा नर्सरी का नुकसान होता है।
1: फिर जो भी खरीफ की सब्जियां हैं, चाहे वो नर्सरी डालना है या सीधी बुआई करनी है, तो बीज का उपचार भी करना होगा।
0: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बीज का उपचार हमको करना बहुत आवश्यकता है, कि अगर हम बीज की बुआई के पहले 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करके ही बुआई करें, जिससे हमारी स्वस्थ नर्सरी होगी।
1: जहाँ खुले में खरीफ सब्जियों के बीज की बुआई करनी है डॉक्टर साहब, तो वहाँ क्या क्या बारीकी करनी है?
0: देखिए, अगर आप खुले में बुआई किसान भाई करते हैं तो वहाँ लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पे आप लाइन बना लें, और लाइन हमारी बनेगी 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्योंकि क्या होता है किसान भाई जल्दी बीज लाता है और क्यारी तैयार करता है उठी हुई और उस पर छिटक के बुआई कर देता है, तो किसान भाई लगभग हमारा 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन बना लें 1 से 2 सेंटीमीटर गहरी, और उसमें बीज की बुआई कर दें। अब बुआई करने के बाद सड़ी या कंपोस्ट की खाद हो जो बारीक हो भुरभुरी है उसके ऊपर से रख दें, तो हमारी बीज स्वस्थ जमा होगा और उसमें जो खर पतवार की निराई गुड़ाई की भी समस्या कम होगी।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ सब्जियों की नर्सरी है वो हानिकारक कीटों से प्रभावित न हो, उसके नुकसान से प्रभावित न हो, तो इसके लिए आजकल कुछ नेट भी आ गए हैं क्या?
0: हाँ, आजकल देखिए इंसेक्ट प्रूफ नेट आते हैं, आप ग्रीन कलर के भी आते हैं, सफेद भी आते हैं, तो किसान भाई जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, तो इसकी जब हम नर्सरी लगा लेते हैं तो उसके बाद लगभग लो टनल के माध्यम से आप देखते हैं तो ऊपर से नेट जाली लगा दें, जिसमें इसमें प्रकाश का भी आगमन होगा और इसमें जो धूप भी आएगी तो बहुत तेज धूप पौधों को नहीं लगेगी, जिससे हमारी नर्सरी स्वस्थ होगी। अगर नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि जब हम मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, तो उसमें लीफ कर्ल वायरस ज़्यादा आ जाता है, पत्ती सिकुड़न बीमारी आती है, तो अगर हम नेट के अंदर अगर नर्सरी करते हैं तो ये बीमारियां हमारी कम होती हैं।
1: फिर खड़ी नर्सरी में कौन कौन सी देखभाल है डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जब हमारी नर्सरी को ध्यान देने की बात होती है कि जैसे ही हम नर्सरी लगाते हैं तो लगाने के 20 से 25 दिन बाद हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके पहले जैसे ही अब हम बेड तैयार करते हैं, बेड तैयार करने के पहले उसमें कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उस बेड पर छिड़काव कर दें, छिड़काव करने के उपरांत उसमें हम बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद आप ध्यान देते हैं कि जैसे ही नर्सरी हमारी करीब 15 से 20 दिन हो जाए तो उसमें एक कीटनाशक दवा का आप स्प्रे कर दें, जैसे आप रोगार है, तमाम तरह की दवाएं हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, और रोपाई के करीब 1 सप्ताह पहले, जैसे नर्सरी हमारी तैयार होती है उसके 4 से 5 दिन पहले उसमें सिंचाई की व्यवस्था रोक दें, क्योंकि उसमें हार्डनिंग हो जाएगी तो हमारा जो पौधे जब रोपाई करते हैं तो उस समय हमारा ग्रोथ चेक नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही नर्सरी हमारी कल लगाना हो तो आज शाम को आप उसमें पानी दे दें, उसके बाद उसको उखाड़ करके उसमें इमिडाक्लोरोपीड आती है दवा, 1 ml दवा 3 लीटर पानी में घोल बना लें, और उस जड़ को 15 से 20 मिनट डीप करने के बाद भी उसकी रोपाई करें, तो जिससे हमारी कीट और बीमारियां भी कम लगेंगी।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ खरीफ सब्जियों की बुआई करनी है, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं, भिंडी है, लोबिया है, खरीफ के लिए, तो उनकी बुआई कब तक कर लें किसान भाई बहन?
0: देखिए, अगर आप भिंडी की बुआई बात करते हैं तो आखिरी जून तक आप लोबिया है, भिंडी है, इसकी बुआई कर लें, और खासकर इसमें लोबिया की काशी निधि है और काशी कंचन 2 प्रजातियां हैं जो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र से विकसित हैं, इसी तरह भिंडी की भी 30 जून तक आप कर सकते हैं, और जो बुआई करें वो नाली बना करके मेड़ पे करें, क्योंकि जल भराव होता है तो हमारी फसलें खराब हो जाती है, तो भिंडी की बुआई और लोबिया की भी बुआई आप करके आप अधिक आमदनी इससे प्राप्त कर सकते हैं।
1: और कद्दू वर्गीय सब्जियों को मचान विधि से भी चढ़ा सकते हैं?
0: हाँ, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जैसे ही आप कद्दू वर्गी लगाएंगे, जैसे ही बारिश होगी तो उस समय क्या होता है कि मचान विधि से अगर हम खेती नहीं करते हैं तो खेत में जैसे ही जल भराव होता है ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो मचान विधि से करेला, खीरा, लौकी, चिकनी तोरोई, ये सब इसकी मचान विधि से करते हैं, तो इसमें जैसे अगर बांस की सहायता लेते हैं और इसके लिए तार होती है और उसके बाद सुतली की प्लास्टिक की रस्सी होती है, मचान बनाने के लिए किसान भाई इसमें गड्ढे से गड्ढे की दूरी 6 फीट की हम रखते हैं, तो उसकी 2 से 2.5 फीट गहराई में

0: हम बांस गाड़ते हैं। जब हम बांस लगाते हैं किसान भाई, तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे ही, तो उसमें क्या होता है, दीमक का प्रकोप होता है चाहे किसी चीज का, तो जो बांस है तो बांस के पहले या तो प्लास्टिक में नीचे करीब 1 फीट तक उसमें बांध दीजिए, और या तो एक पाइप आती है प्लास्टिक वाली उसमें फिट कर दीजिए, और उसके बाद उसको गाड़िए जो मजबूत रहे, सीधा रहे, और उसके बाद उसमें तार को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप मिला दीजिए, फिर उसके बाद उसमें प्लास्टिक की रस्सियां भी बांध दीजिए चारों तरफ, और दूरी बहुत ज्यादा मत रखिएगा किसान भाई। अगर दूरी रख देते हैं तो हमारा मचान सही नहीं होता है, उसमें लचीलापन आ जाता है, और इसमें जो उत्पादन होती है मचान से सबसे बड़ी चीज होती है कि उसमें जैसे आपकी मधुमक्खियां हैं उसमें परागण भी अच्छा होता है। और जब हम लगाते हैं पौधे, कहाँ लगाएं, तो लगभग 3 फीट की दूरी पे आप उसमें गुड़ाई करके पौधे लगाएं। जैसे 3 से 4 फीट की पौधे की लंबाई हो जाए, उस समय आप रस्सी के सहायता से उसमें मचान पे चढ़ा दें, और मचान की ऊंचाई अगर किसान भाई बात करते हैं तो 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पे हम करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ सब्जियों के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 87-550-110-86 87-550-110-86 87-550-110-86
1: डॉक्टर बीपी शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर विनायक प्रताप शाही ने खरीफ सब्जियों की उन्नत कृषि तकनीक पर जो भी जानकारी आपको दी है उसे आप ध्यान में रखेंगे। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ब्रजेश कुमार निवासी हैती, थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी शिवानी दिनांक 15 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 21 वर्ष, कद 5 फीट रंगोरा, चेहरा लंबा है। इनके बाएं हाथ पर एस गुदा है। इन्होंने पीली साड़ी व सैंडल पहन रखी थी। सुभान अली निवासी साईपुरवा, परशुरामपुर, कोतवाली भिनगा, जिला श्रावस्ती ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री सायदा दिनांक 16 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 17 वर्ष, कद 4 फीट, रंगोरा, चेहरा गोल, लंबे बाल हैं। इनके दाहिने पैर की कानी उंगली छोटी है। इन्होंने हरी समीज व लाल सलवार व पट्टेदार दुपट्टा पहन रखा था। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें, 775-480-9755। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 775-480-9755। इंद्रजीत निवासी कचौदा, नानकाटी, पोस्ट मिलहरिया, जिला रायबरेली ने सूचित किया है कि पार्वती दिनांक 2 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 40 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। इन्होंने लाल साड़ी पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें, 7460079120। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7460079120। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ।

0: जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: मिट्टी की सोंधी महक से महकते लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे किरण देवी के गाए भोजपुरी लोकगीत। आरंभ करते हैं सोहर से।

अयोध्या नगरिया के सुंदर डगरिया, आइए सुनते हैं ये कहरवा किरण देवी की आवाज़ में।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं किरण देवी के गाए भोजपुरी लोकगीत, और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में झूमर। बोल है ना जाने कजरा के मोल।

0: लोकमादरी कार्यक्रम में आज आपने सुने किरण देवी के गाए भोजपुरी लोकगीत। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा शाम 5 बजे से आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।
1: संबोधन में

कुछ नया और खास लाते हैं हम आपके लिए। तो आज भी बातें होंगी बहुत ही दिलचस्प, पर उससे पहले एक प्यारे से ट्रैक से करते हैं शुरू प्रोग्राम का ये सफर।

करते हैं, आपको लगता है ऐसा? उन रिश्तों के बिना हमारा जीवन बेरंग सा लगता है, लेकिन उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए, या यूं कहें कि उन रिश्तों की मिठास को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं या हमें क्या करना चाहिए, तो ये जानेंगे आज कि हम वो जो प्यारे प्यारे से रिश्ते हैं उनको हमेशा एज इट इज मीठा रखने के लिए, एज इट इज बनाए रखने के लिए क्या करें, वो हम जानेंगे आज सतरंगी दुनिया में। लेकिन एक प्यारा सा गाना लगा के रखा है आप लोगों के लिए, तो वो आ रहा है आप तक, तो चलिए पहले उसको एंजॉय करते हैं, फिर बात करेंगे कि कैसे हम अपने जो रिश्ते हैं, प्यारे प्यारे से रिश्ते हैं जिनसे हमारा जीवन है वो परफेक्ट बनता है, उनको हम कैसे वैसा ही बनाए रख सकते हैं जैसे उनकी मिठास।

करने से नहीं बल्कि छोटे-छोटे प्रयासों से सफल होता है। तो आज ये कार्यक्रम सतरंगी दुनिया में बातें करेंगे उन्हीं छोटे-छोटे प्रयासों की जो रिश्तों को दिल की गहराई

और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सतरंगी दुनिया, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैंस की, यानी रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किए गए छोटे छोटे और भावनात्मक प्रयास। ये कोई बहुत बड़े काम नहीं होते, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको अगर हम बताएं, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है जब आपके हस्बैंड ऑफिस से आए और आप उनके लिए कुछ बिना कहे उनके पानी ले आए या उनके लिए एक चाय बना के ले आए। तो ये क्या हुआ? ये आपके छोटे छोटे वही प्रयास हुए। और जब आप थकी हो और आपके कुछ भी ना कहे हुए आपके हस्बैंड कहें आपसे कि आज बच्चों को तो मैं सुलाऊंगा, तो ये छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं ना, ये आपके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे इशारे और प्रयास रिश्तों में प्यार

पैनल लगवाने के लिए। बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है।

और आज सतरंगी दुनिया में हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैन्स की। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने रिश्तों के प्रति बहुत केयरफुल होते हैं, या यूं कहें कि वो अपने छोटे छोटे प्रयासों जैसे आपकी पसंद का ध्यान रख

चीज ले आना या बिन कहे आपके सिर की मालिश कर देना। और कभी-कभी ये भी होता है कि कभी आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी बिना कही हुई बात को समझ लेते हैं, जैसे आपको भूख लगी है और वो आपके लिए कुछ लेकर चले आए। तो इस तरीके की कुछ छोटी-छोटी चीजें होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोमैन्स। तो ये जो माइक्रोमैन्स होते हैं ना, ये आपके रिश्तों को सवारते हैं, निखारते हैं, और यही छोटे-छोटे प्रयास भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करते हैं, जिससे संबंध मजबूत और मधुर बनते हैं। तो अगर आप इन छोटे-छोटे प्रयासों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।

करते हैं। जब आप इन छोटे छोटे पलों को महसूस करते हैं या फिर किसी और को महसूस कराते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं। जो खुशी और मेंटल स्टेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। जी हाँ, और ये बात तो मुझे लगता है हम सबको ही नहीं पता थी कि ऐसी भी चीजें होती हैं। तो आप जब माइक्रोमैंस को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं ना, तो आप तो दूसरों को खुश करते ही करते हैं, साथ में आप भी उतना ही खुश होते हैं। और ये सच बताऊं, ये वही खुशी है जो हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये छुपी कहाँ रहती है? ये छुपी रहती है हमारे प्रयासों में। तो अगर किसी रिश्ते में कुछ लग रहा है कि मनमुटाव हो गया है या दूरी आ रही है, तो आप इन छोटे छोटे प्रयासों को अपना के देखिए, इन छोटे छोटे माइक्रोमेंट्स को अपना के देखिए। और सच कहती हूँ कि ये आपकी जो लाइफ है ना, ये बेहतर से बेहतरीन

그래.

सतरंगी दुनिया में हम बातें कर रहे हैं माइक्रोमैन्स की, और वही माइक्रोमैन्स जो छोटे छोटे प्रयास हम एक दूसरे के लिए करते हैं। दोस्तों, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये पेड़ की तरह होते हैं, जिन्हें पानी खाद ना मिलने पर ये मुरझाने लगते हैं। तो बस ये माइक्रोमैन्स वही पानी और खाद की ही तरह होते हैं, जिनका उपयोग रिश्तों की ग्रोथ के लिए किया जाता है। दोस्तों, रिश्तों में दरार आने का अक्सर यही रीजन होता है कि हम छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं, जैसे ध्यान ना देना, भूल जाना या अनदेखी करना। तो बस आज से यही कोशिश करनी है कि माइक्रोमैन्स को अपनाकर

0: ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है।

मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने कुशीनगर में इंसेफेलाइटिस और माफिया दोनों पर प्रभावी प्रहार करते हुए विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि बुलेट स्पीड से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की तपोभूमि कुशीनगर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिवसीय दौरे पर आगरा आए हुए हैं। आज उन्होंने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। गौतम बुद्ध नगर में आज मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चतुर्थ संस्करण की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित इवेंट मास्टर प्लान एवं लेआउट का अवलोकन करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रदेश का एक प्रतिष्ठित और महत्वाकांक्षी आयोजन है, जिसे इस वर्ष और अधिक भव्यता एवं नवाचार के साथ आयोजित किया जाए। पीलीभीत में आज भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने पूरनपुर खटिमा रोड और माधो टांडा कालीनगर रोड पर पड़ने वाले हरदोई ब्रांच नहर के दो जर्जर पुलों का शिलान्यास किया। विधायक श्री पासवान ने कहा कि इन दोनों पुलों और उनकी अप्रोच बनाने के लिए 52 करोड़ से अधिक की धनराशि शासन से स्वीकृत हुई है। इन पुलों के बन जाने से स्थानीय लोगों को लाभ होगा और पर्यटन में इजाफा होगा। आईसीआर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ग्राम काजीचक और आराजी लाइन में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीम लीडर डॉक्टर राजेश कुमार ने अभियान के उद्देश्यों एवं मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, मृदा की उर्वरा शक्ति बनाए रखना कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

Jennifer.

Aha.

सब चीजों को आप एक डायरी में हो सके तो लिखिए। जी हाँ, डायरी में लिखिए या कागज पे लिखिए, किसी भी डिवाइस पे नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप छात्र हैं तो किसी डिवाइस का सहारा लेना

0: जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। जिनमें प्रतिभा तो होती ही है, परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जनजन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ओम मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ओम मिन आउन लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: मिडीवेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर

कर 10 मिनट पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, विषय है किसान कल्याण। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा सतीश चंद्र का सितार वादन, राग होगा पीलू। राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण होगा रात्रि 10 बजे। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी गोरखपुर की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद होगा रात्रि 10 बजे। सुगम संगीत के अंतर्गत प्रगति राठौर के स्वर में गीत व भजन सुनिएगा रात्रि 8:10 पर। हिंदी कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। शाम 7:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनिएगा। हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम लोकायतन व खेती किसानी होगा शाम 6:30 पर। नई उड़ानी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:45 पर। और हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग आप सुन सकेंगे आपसे थोड़ी देर में, यानी 5:10 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कल रात्रि 11:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, विषय है मध्यम वर्ग कल्याण। कल रात्रि 10:30 पर सुनिएगा सुगम संगीत के अंतर्गत सुभांत मुखर्जी का वायलन वादन, तबले पर संगत करेंगे प्रमोद कुमार मिश्र। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड होगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 8:10 पर सुनिएगा सुगम संगीत के अंतर्गत जनाब कमाल अहमद खान की आवाज़ में गजलें। हिंदी कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे, जिसमें आप सुनेंगे धर्मराज उपाध्याय का काव्य पाठ, वाचन व संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। पत्र व मेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातों बातों में, ये कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर। शाम 7:31 पर सुनेगा कार्यक्रम कानून की बात। कल शाम 6:30 पर होगा हमारे किसान भाइयों का फोन इन प्रोग्राम हेलो किसान। नई उड़ान इस कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45 पर। और युवा साथियों का युवा तरंग होगा अपने ही समय पर, यानी शाम 5:10 पर। दोपहर 2:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत लोक माधुरी में कुसुम वर्मा व पूर्विका पांडे के स्वर में अवधि युगल लोकगीत। विज्ञान और किसानी कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर राम कुमार सिंह से एक भेंट वार्ता, विषय होगा धान की सुगंधित प्रजातियां, और आपसे बात करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दोपहर 1:15 पर होगा हमारा मातृ व शिशु स्वास्थ्य का कार्यक्रम आंगनबाड़ी। सुबह 11:00 आप सुन सकेंगे फोन इन प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। सुबह 9:50 पर लोक गीत के अंतर्गत लोक रंग में सुनेगा कुसुम वर्मा व पूर्विका पांडे के स्वर में अवधि लोकगीत। उर्दू कार्यक्रम नष्ट किया जाएगा सुबह 9:30 पर। कल आप सुनेंगे लखनऊ व गाजियाबाद जिले की हलचल सुबह 9:15 पर। आपके मेल व आपके गीत, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:45 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुभांत मुखर्जी का वायलन वादन आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर। साथ ही में तबले पर संगत करेंगे प्रमोद कुमार मिश्र। कार्यक्रम व्यवधा होगा प्रातः 7:10 पर, जिसमें कल का विषय है विश्व बाईसाइकिल दिवस। स्वास्थ्य चर्चा, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 7 बजे, जिसमें आप सुनेंगे विश्व बाईसाइकिल दिवस पर पैडल से जुड़ी सेहत व सादगी की कहानी, पेशकार होंगी नीना सोनकर। रामचरितमानस होगा प्रातः 6:43 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रातः 6:15 पर। कृषि चर्चा होगी प्रातः 6:05 पर। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा तरंग में, जिसे लेकर उपस्थित हैं आज आपके दो रेडियो दोस्त। मैं हूं अनुष्ठा
1: और मैं हूं दिव्यांशु। दोस्तों, ढल गया दिन, हो गई शाम, बज गया है 5:10 और शुरू हो चुका है आपका युवा तरंग, जो हर शाम शुरू होता है ठीक इसी वक्त और इसी जगह पर।
0: जी हाँ दोस्तों, और आज का दौर तेजी से बदल रहा है। नई तकनीकें आ रही हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और रोजगार के अवसर भी पहले से कई अधिक हो चुके हैं। ऐसे समय में सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट भी सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी बन गया है।
1: सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आज के युवाओं के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास मौजूद ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल होना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे डिजिटल तकनीक हो, संचार कौशल हो, उद्यमिता हो या किसी विशेष क्षेत्र का प्रशिक्षण, हर कौशल युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और बेहतर अवसरों तक पहुंचने में मदद करता है दोस्तों।
0: जी हाँ, और यही कारण है कि आज देश भर में युवाओं को नए कौशल सिखाने और उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के लिए तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और आज के युवा तरंग में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर, कौशल विकास पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बदलते समय में स्किल्स क्यों इतनी ज़रूरी हो गई हैं और युवा अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किन किन क्षेत्रों में खुद को तैयार भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक विशेष वार्ता, जिसमें श्री कृष्ण प्रताप सिंह ने शहरों को हो रहे पलायन की दिशा विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस वार्ता में वे बताएंगे कि लोग गांवों और छोटे कस्बों से शहरों की ओर क्यों जा रहे हैं, इसके सामाजिक और आर्थिक कारण क्या हैं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
0: तो दोस्तों, जानकारी, जागरूकता और नए विचारों से भरपूर आज के युवा तरंग में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ मिलती है युवाओं की सोच को नई दिशा और भविष्य को नई उड़ान।
1: तो फिर शुरू करते हैं अपने आज के इस युवा तरंग को इस गाने के साथ।

0: दोस्तों चलिए अब सुनते हैं ये वार्ता जिसमें श्री कृष्ण प्रताप सिंह ने शहरों को हो रहे पलायन की दिशा के बारे में कई अहम बातें बताई हैं।
1: हम जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और भारत माता ग्रामवासिनी। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि इस देश की आत्मा गांवों में बसती है और इसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन गांवों में ही संभव है। राष्ट्रकवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त तो अपनी एक कविता में आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे कहते हुए थोड़े में निर्वाह के लिए गांवों की प्रशंसा करते हुए यह भी पूछ गए हैं कि ऐसी सुविधा और कहाँ है। निस्संदेह थोड़े में निर्वाह संभव होने के ही कारण बढ़ते शहरीकरण के अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबावों के बावजूद अधिकतर देशवासी अभी भी गांवों में ही रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के 68.84%। लेकिन इस स्थिति के दूसरे पहलू पर गौर करें तो गांवों से ग्रामीणों खासकर रोजी रोजगार की तलाश में लगे श्रमशील युवाओं के शहरों को पलायन की समस्या भी उतनी ही पुरानी है जितने शहरीकरण और औद्योगिकरण। पलायन का अर्थ है परिस्थितियों के दबाव में एक से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास। देश में ऐसे प्रयासों के कई रूप हैं, जैसे एक गांव से दूसरे गांव को पलायन, गांव से शहर को, एक शहर से दूसरे शहर को और शहर से गांव को। इनमें शहरों से गांवों को पलायन अपवाद स्वरूप ही होता है, जबकि गांवों से शहरों को पलायन उस पर लगाम लगाने के नाना प्रयासों के बावजूद बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि समूचे बुनियादी ढांचे को अस्त व्यस्त करते हुए यह शहरों को भी समस्याग्रस्त करता है और गांवों को भी। गांवों में जीविका के परंपरागत स्रोतों पर संकट आने के कारण होने वाले इस पलायन से शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं कम पड़ने लगती हैं और उनके अनियोजित विस्तार को बढ़ावा मिलता है तो गांवों का आत्मनिर्भरता का स्वप्न भंग होता है। दूसरी ओर गन्ने की खेती या फिर ईंट भट्ठा उद्योग में रोजगार के लिए मजदूरों का गांवों से गांवों को होने वाला पलायन कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन के रूप में भी नजर आता है। शहरों को पलायन गांवों को कितना सताता रहा है इसे इस तथ्य से समझ सकते हैं कि अवध में जन्मे प्रतिष्ठित कवि स्मृति शेष त्रिलोचन की एक पुरानी कविता की नायिका चंपा तब महानगर कलकत्ते पर बजर गिराने को उद्यत हो जाती है जब उसे यह बताकर पढ़ने लिखने के लिए कहा जाता है कि ब्याह तुम्हारा होगा तुम गांव में जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, नटखट चंचल व उद्यमी मगर काले काले अक्षर नहीं चिन्हने और चौपायों की चरवाही करने वाली गांव की बेटी चंपा तब साफ मना कर देती है, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालन को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। लेकिन पलायन का बजर है कि अभी भी कलकत्ते के बजाय चंपा जैसी नायिकाओं की कामनाओं पर ही गिरता आ रहा है, क्योंकि जीविका और जीवन स्तर बेहतर करने के साधनों के केंद्रीकरण की बाजी अभी भी शहरों के ही हाथ है, क्योंकि शहरों और गांवों

के विकास में व्याप्त पुराने असंतुलन को अभी भी खत्म नहीं किया जा सका है, इसलिए ज्यादातर ग्रामीणों में अपनी जीवन पद्धति को लेकर असंतोष की भावना रहती है। इस भावना को सूखे व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाली क्षति और कृषि क्षेत्र में बेहतर आय व रोजगार के अवसरों की कमी और बढ़ाती है। यह असंतोष ही है जो कमाई के अपेक्षाकृत बेहतर स्रोतों व संभावनाओं की जरा भी उम्मीद जागते ही श्रमशील ग्रामीण युवाओं को शहरों की ओर खींचने और ललचाने लग जाता है। भले ही वे किसी तरह के प्रशिक्षण या कुशलता के अभाव में शहर जाकर उसके अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम की उपलब्धता ही बढ़ा पाएं और वहां भी गरीबी, असुरक्षा और सामाजिक अलगाव का वातावरण उनका पीछा न छोड़े। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने वक्त में इस समस्या का एक बहुत अच्छा हल सुझाया था, यह कि शहरों को गांवों में ले जाया जाए। उनका आशय यह था कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण व स्वास्थ्य वगैरह की आधारभूत सुविधाएं उनके गांवों में ही उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उनके लिए उन्हें शहरों का दरवाजा न खटखटाना पड़े। सच पूछिए तो यह मॉडल आजादी के वक्त महात्मा गांधी द्वारा दी गई इस सलाह की दिशा में एक कदम ही था कि सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित कर उसे आत्मनिर्भर बनाने के जतन किए जाएं। पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी सुझाया था कि हालात बदलने के लिए शहरों में या उनके इर्द गिर्द लगाए जाने वाले छोटे बड़े उद्योग गांवों के इर्द गिर्द लगाए जाएं। तब उनके नेतृत्व में इंडिया विजन 2020 नामक जो दस्तावेज तैयार किया गया था उसमें कृषि और फूड प्रोसेसिंग उत्पादन व सोलर पावर बढ़ाकर गांवों में उन्नत खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, आवास, बिजली, सड़क, संचार, न्याय व सामाजिक सुरक्षा की सहज उपलब्धता और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास के पूरा यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज मॉडल के जरिए गांवों व शहरों के बीच की सारी खाइयां पाट देने पर जोर था। देश की तत्कालीन सरकार ने इस मॉडल के तहत गांवों से शहरों को पलायन रोकने के लिए कई योजनाएं आरंभ की थी। फरवरी 2006 में शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का उद्देश्य जो अभी भी चलाई जा रही है इस पलायन की दिशा बदलना ही है। इसके तहत गांवों में जरूरतमंदों को उन दिनों में काम देने की व्यवस्था है जब उनके पास खेती का काम नहीं होता। इस योजना से पहले उनके पास उन दिनों में शहरों का रुख करने के अलावा कोई उपाय नहीं होता था। इस योजना के अलावा महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के जरिए विभिन्न व्यवसायों और रोजगारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मनरेगा के सार्थक नतीजे बताते हैं कि ग्रामीण युवाओं को मनपसंद क्षेत्रों में कौशल विकास और समुचित पारिश्रमिक की संभावनाएं गांवों में ही उपलब्ध करा दी जाएं। साथ ही ऊंच नीच की भावना से जन्मे उन सामाजिक भेदभावों से मुक्ति दिला दी जाए जो लोकतांत्रिक चेतना व जागरूकता के अभाव में अभी भी ग्रामीणों के पांवों की बेड़ियां बने हुए हैं, तो पलायन रोका जा सकता है। इस हेतु यह ध्यान रखकर समग्र ग्रामोन्मुख राष्ट्रीय नीति बनानी होगी कि पलायन हमेशा रोजगार के लिए ही नहीं होता, उसके पीछे दो और कारण होते हैं, अन्याय से उपजे असंतोष का शमन और अस्तित्व की सुरक्षा। अभी ज्यादातर अल्प आय वाले ग्रामीण परिवारों के निकट इन दोनों कारणों के निवारण का आमतौर पर सूझने वाला एक ही उपाय है कि उनका कोई सदस्य शहर की ओर जाए और वहां कमाई धनराशि उन्हें भेजे जिसे वे अपनी रीढ़ के रूप में इस्तेमाल कर सकें। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बढ़ती जनसंख्या के दबाव में कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती जाने और छोटे व सीमांत किसानों के साथ कृषि मजदूरों की जीविका के विविधीकरण व पारिवारिक श्रम के पुनर्वितरण की जरूरतें लगातार बढ़ती गई हैं। इन जरूरतों के चलते स्थानीय स्तर पर काम धंधों का अभाव उन्हें दूर दराज पलायन करने और कई बार ठेकेदारों व बिचौलियों के शोषण के शिकार होने को भी मजबूर करता है। कई अर्थशास्त्री इसे श्रमिकों के कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की ओर खिसकने के रूप में देखते हैं और उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करते हैं। क्योंकि इसके आर्थिक ही नहीं समाज शास्त्रीय कारण भी हैं, इसलिए वे मानते हैं कि इस पलायन और इससे जुड़ी विडंबनाओं को रोकने के लिए गांवों में वास्तविक सामाजिक समानता एवं न्याय पर आधारित समाज का निर्माण भी करना होगा। बहरहाल पिछले वर्ष कोरोना की महाविपदा के बीच पलायन की दिशा में तब बड़ा परिवर्तन आया जब देशव्यापी लॉकडाउन के कारण

0: शहरों में सारे काम धंधे ठप पड़ गए और उनमें जीविका अर्जित कर रहे लोगों को उल्टे पांव गांवों को लौटाना पड़ा। तब सरकार के समक्ष अचानक दोहरी चुनौती आ खड़ी हुई। पहली, लौट आए मजदूरों को बेरोजगारी व गरीबी के जाल में फंसने से बचाने, और दूसरी, शहरों में उद्योग धंधे फिर से शुरू हों तो उन्हें मजदूरों की कमी से बाधित न होने देने की। दरअसल उस दौर में लॉकडाउन समाप्ति के बाद भी लौट आए श्रमिक महामारी के डर से वापस शहर जाने को लेकर बहुत अनमने थे। ऐसे में सरकार को ऐसा संतुलन बनाना था जिससे, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी, कि आपदा को अवसर में बदला जा सके। इसके लिए पलायन की समस्या का ऐसा तात्कालिक व दीर्घकालिक प्रबंधन अभीष्ट था जिससे कोई अफरा तफरी न पैदा हो और शहर व गांव दोनों राष्ट्र निर्माण में अपनी अपनी भूमिकाएं निभा सकें। इसके लिए सरकार ने जहां मजदूरों की उद्योग धंधों में अपेक्षाकृत लाभकारी वापसी की योजना बनाई, वहीं उनके लिए गांवों में आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और कल्याण योजनाओं के लाभ सुनिश्चित किए। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन, किसान कल्याण, खाद्य सुरक्षा और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को तब मिशन मोड में लाया गया। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने अपने स्तर पर मजदूरों को गांवों में रोजगार देने के जतन किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको काम देने के अन्य उपायों के साथ मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार योजना लागू की, जिसके तहत वे केवल 5% अंशदान कर अपने गांव या कस्बे में अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकते हैं। योजना के तहत उनके उद्यमों का बाकी वित्त पोषण सरकारी अनुदान और बैंकों से कर्ज के जरिए किया जाता है। इस योजना का लाभ ऐसे कामगारों को मिलता है जो शहरों में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, दर्जी, ड्राइवर, बुनकर और रंगरेज आदि के तौर पर काम करते रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये योजनाएं अच्छे नतीजे देंगी और देश शहरों की ओर पलायन के समुचित प्रबंधन में सफल होगा।
1: दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वार्ता शहरों को हो रहे पलायन की दिशा के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ सुन लेते हैं एक और गाना और मिलते हैं आपसे इस गीत के बाद।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दिव्यांशु, तुम्हें नहीं लगता कि आज के दौर में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है? क्योंकि आज जरूरत है सही स्किल्स की, और इसी सोच के साथ सरकार ने PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की। और इस योजना का मकसद युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
6: बिल्कुल सही कहा। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, ब्यूटी, मैकेनिकल और कई दूसरे सेक्टर। सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत कई कोर्स बिल्कुल मुफ्त होते हैं और ट्रेनिंग पूरी तरह से होने के बाद युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है दोस्तों।
5: जी हाँ, मतलब कि सीधा फायदा, काम के लिए तैयार युवा और बेरोजगारी को कम करने की दिशा में एक ठोस भी कदम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत देती है, और ये योजना उन युवाओं के लिए एक उम्मीद है जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है।
6: दोस्तों, चाहे बात हो ई लाइब्रेरी की या ज्ञान बढ़ाने की या कौशल विकास योजना की, आज के युवा के पास बहुत सारे मौके हैं। जरूरत है बस जागरूक होने की, सही जानकारी लेने की और आगे बढ़ने की।
5: अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं या कॉलेज कर रहे हैं और किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो स्किल इंडिया आपके लिए सही मौका है, क्योंकि हुनर है तो मंजिल दूर नहीं।
6: दोस्तों, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महज सिर्फ एक योजना नहीं, ये एक आंदोलन है जो देश के युवाओं को आत्मनिर्भर और काबिल बना रहा है। चलिए हम भी इससे जुड़ें और अपने भविष्य को चमकाएं।
5: जी हाँ।

0: दोस्तों, अब समय हो गया है हमारे खास सेगमेंट प्रश्नोत्तरी का। इसमें हम एक सवाल पूछेंगे और उसके चार विकल्प भी देंगे। आपको प्रश्न का सही उत्तर पहचानना है और सेगमेंट के अंत में हम सही जवाब भी बताएंगे। फिर आपको देखना है कि आपका जो चुना हुआ जवाब है वो सही निकलता है या नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
1: तो
0: और
1: दोस्तों,
0: इसके ऑप्शंस मेरे दोस्त दिव्यांशु आपको बताएंगे।
1: जी दोस्तों, आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 10 जून या ऑप्शन डी 15 जून।
0: जी हाँ, तो अब आप अपना अपना जवाब सब लोग सोच के रखिए। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
1: तो दोस्तों, आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी कछुआ या ऑप्शन डी व्हेल।
0: तीसरा हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, जी हाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
1: आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र।
0: अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?
1: आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 21 जून या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर।
0: हमारा अगला प्रश्न है कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? और हमारे ऑप्शंस हैं
1: ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मिर्जापुर या ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी कुशीनगर।
0: जी हाँ, तो अब समय हो गया है कि हम आपको इन सब प्रश्नों के सही उत्तर बताएं। चलिए देखते हैं कि आपका जो सोचा हुआ उत्तर है वो सही निकलता है कि नहीं। तो पहला प्रश्न क्या था दिव्यांशु?
1: हमारा पहला प्रश्न था कि विश्व पर्यावरण दिवस

0: वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा उत्तर है
1: 5 जून, यानी कि बी बी ऑप्शन सही था।
0: बिल्कुल सही जवाब, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह हमारा दूसरा सवाल था और इसका सही जवाब है
1: गंगा डॉल्फिन, यानी कि इसका भी जवाब है बी।
0: हमारा तीसरा सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है?
1: और
0: हमारा सही जवाब है, अनुष्ठा क्या है?
1: हमारा सही जवाब है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन।
0: बिल्कुल। और हमारा जो चौथा प्रश्न था वो था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?
1: जी हाँ दोस्तों, और इसका सही जवाब है 21 जून।
0: बिल्कुल सही जवाब। पांचवा और आखिरी सवाल जो हमारा था वो ये था कि कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है
1: मिर्ज़ापुर, यानी कि बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे सही जवाब, और हो सकता है कि आपके बहुत सारे जवाब गलत निकले हों, कुछ सही भी निकले हो। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुन लेते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवा तरंग। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा।
1: जी हाँ, और चलते चलते आपको बता दें हमारे कल के युवा तरंग के कार्यक्रम का विवरण। तो कल की चर्चा का विषय है साइकिल है सेहत की सवारी। साथ ही प्रज्ञा सिंह की वार्ता सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण पर, और फिर होगी बातचीत ODOP पर।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब हो गया है जाने का वक्त। दीजिए अपने दोस्त दिव्यांशु और
1: अनुष्ठा को इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

नई उड़ान सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को शालिनी सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़े दोस्तों, आपके स्वागत के साथ बता दें कि आज कार्यक्रम में क्या होगा खास। आज हम बात करेंगे सफलता के मूल मंत्रों पर, साथ ही साथ हम आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग में आपको बताएंगे कौशल क्रांति कैसे आएगी, यानी ग्रामीण युवाओं हेतु डिजिटल स्किल, डिजिटल गाँव, सक्षम युवा, इस थीम पर आप ब्रॉडकास्टिंग सुनेंगे आउटडोर, और साथ ही साथ रोजगार समाचारों से भी वाकिफ होंगे। दोस्तों, सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता है। कोई पढ़ाई में सफल होना चाहता है, कोई व्यवसाय में, कोई कला के क्षेत्र में, तो कोई अपने सपनों को साकार करने की यात्रा में। लेकिन एक प्रश्न हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है कि क्या सफलता की कोई कुंजी होती है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें, महान व्यक्तित्वों के जीवन को देखें, तो पाएंगे कि सफलता का कोई जादुई सूत्र नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे गुण हैं जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में अवश्य दिखाई देते हैं। सबसे पहली कुंजी है स्पष्ट लक्ष्य। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि उसे कहाँ पहुँचना है, उसके लिए कोई भी रास्ता सही नहीं हो सकता। लक्ष्य हमें दिशा देता है। दूसरी कुंजी है निरंतर प्रयास। कहा भी गया है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, कदम कदम से सफर पूरा होता है। सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छुपा होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण कुंजी है असफलताओं से सीखने की क्षमता। असफलता अंत नहीं है, वो एक शिक्षक है जो हमें बताती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता है। सफल लोग असफलताओं से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने अगली सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अनुशासन। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाता है, वही एक दिन बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। और आखिरी जो बिंदु है वो है सकारात्मक सोच। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं मिलेंगी आपको, इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए। ये हमें हर परिस्थिति में अवसर तलाशना सिखाता है। दोस्तों, सफलता की कुंजी किसी ताले में नहीं छिपी है, ये हमारे विचारों, प्रयासों, धैर्य और आत्मविश्वास में छिपी है। सफल वो नहीं है जो कभी गिरा नहीं, सफल वो है जो हर बार गिरकर खड़ा हुआ है। इसी विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सभी आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे और सीखते रहेंगे। हमारे साथी एंकर अभिषेक शर्मा निकल पड़े लोगों के बीच, डिजिटल बदलाव की बयार को जानने, समझने और समाधान तलाशने। क्योंकि अब अगर आपकी स्किल के साथ आपको क्रांति करनी है, तो डिजिटल तो होना ही होगा। ये बदलाव हमारे गांवों से होकर गुजरे तो असली क्रांति संभव है। तो चलिए अभिषेक के साथ जानते हैं कि कैसे गांव हो रहे हैं डिजिटल और युवा सक्षम।

0: आज भी अगर लोगों से सवाल पूछा जाए गांव या शहर में वो सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि अगर कमाई का जरिया हो तो फिर गांव से बेहतर क्या है। और इसकी वजह शायद यही है कि कभी गांव की पहचान खेत खलिहानों, चौपालों और बैलगाड़ियों से होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है दोस्तों। अब गांव का एक युवा कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर किसी का आधार अपडेट कर रहा है, किसी का बिजली बिल जमा कर रहा है, तो कोई ऑनलाइन डिजाइन और डिजिटल सेवाओं के जरिए अपनी पहचान बना रहा है। डिजिटल तकनीक अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, ये गांवों के सपनों को भी नए पंख दे रही है। नमस्कार, नई उड़ान की विशेष श्रृंखला कौशल क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। दोस्तों, आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे ग्रामीण युवाओं हेतु डिजिटल स्किल, डिजिटल गांव सक्षम युवा की। तो आइए चलिए चलते हैं उस गांव की ओर जहां डिजिटल हुनर युवाओं की तकदीर बदल रहा है। ये स्किल कैसे आपने सीखी, मतलब वीडियो एडिट करना, फोटो शूट करना, वीडियो शूट करना कैसे आपने सीखा?
1: सर, बहुत इसमें मेहनत मैंने की है, बहुत शुरुआत से बचपन से सीख रहे हैं, तब जाके इस मुकाम में पहुंचे हैं।
0: तो कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि शहर चलें?
1: नहीं सर, यहीं गांव में सुकून मिलता है सर।
0: युवाओं को डिजिटली स्किल सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है?
2: डिजिटली तो इस समय तो डिजिटल सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है। जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग 80% लोग गाँव के हम ही लोग के ऊपर डिपेंड है डिजिटल को लेकर।
0: आप भैया बिजली का बिल जमा करने आए?
1: हाँ भैया।
0: तो मतलब आपके लिए फायदा ये है CSC पे आने का कि आपको 6 किलोमीटर नहीं जाना
1: है, पास में है ना है।
0: अच्छा, आप डिजिटली क्या क्या खुद से क्या क्या करते हैं?
3: खुद यही कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बस यही सब चलता है, बस बाकी और नहीं कर पाते।
0: ये तो आपका एंटरटेनमेंट का एक रास्ता है। कभी आपने सोचा कि इंस्टाग्राम पे वीडियो बना करके अपलोड करें और पैसा कमाए? ये बताइए कितना निकलवाने के लिए पैसा आए?
4: 500।
0: कैसे निकलता है यहाँ पे?
4: अंगूठा लगा के आधार से।
0: अंगूठा लगा के आधार कार्ड से।
5: यहाँ पे अभी हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है, जहाँ पे गांव वालों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, ग्रामीण वासियों के लिए जो है यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी और उनके लिए जो है कंप्यूटर्स की सुविधा दी जा रही है।
0: गांव में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। दोस्तों, इसी बदलाव को करीब से समझने के लिए हमने बात की उन युवाओं से जो अपने CSC और डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बना है बल्कि गांव के लोगों को भी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। दोस्तों, अभी इस वक्त हम राजधानी लखनऊ से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर एक स्थित ग्रामीण क्षेत्र रैथा में मौजूद हैं, और चूंकि आज हम ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए डिजिटल स्किल पर बात कर रहे हैं, तो अपने ही गांव में रह करके एक ऐसे युवा हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं जो अपनी डिजिटल स्किल के चलते आज कमाई भी कर रहे हैं और वो आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं कि अगर आप डिजिटल स्किल सीखते हैं तो आप किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके भी अपना रोजगार चला सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका?
1: धर्मेंद्र।
0: धर्मेंद्र जी, आप थोड़ा अपने काम के बारे में बताइए।
1: काम बहुत बढ़िया है, अच्छा है। इसमें जो है कम से कम 8 से 10 लोग काम हमारे नीचे करते हैं और अच्छा कमाई भी रहता है।
0: ये क्या काम है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं।
1: शादी का कैसेट बनाना, शुभ काम पर मतलब वीडियो बनाना, फोटो एडिट करना, ये सब काम रहता मेरा।
0: मतलब एक स्टूडियो आप चलाते हैं?
1: जी, स्टूडियो चलाते हैं,
0: डिजिटल स्टूडियो, और डिजिटल गांव की हम बात कर रहे हैं। ये स्किल कैसे आपने सीखी, मतलब वीडियो एडिट करना, फोटो शूट करना, वीडियो शूट करना कैसे आपने सीखा?
1: सर, बहुत इसमें मेहनत मैंने की है, बहुत शुरुआत से बचपन से सीख रहे हैं, तब जाके इस मुकाम में पहुंचे हैं।
0: तो खुद से सीखा या किसी ने सिखाया आपको?
1: खुद से सीखा है और थोड़ा बहुत इधर उधर से यूट्यूब वगैरह से सीखा मैंने।
0: तो अच्छा, यूट्यूब से भी आपने सीखा?
1: जी।
0: देखिए दोस्तों, यूट्यूब से सीखने का मतलब कि जो डिजिटल भारत की हम बात कर रहे हैं वो अब गांव के हर कोने तक पहुंच चुका है, और चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके जरिए ना लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी डिजिटल स्किल्स भी सीख रहे हैं जो उनके लिए रोजगार का एक नया रास्ता खोल रहा है। अच्छा, कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं भैया?
1: लमसम 11 वर्ष हो गए।
0: तो अभी आसपास के कुछ लोग आपसे सीखने के लिए आते हैं या सोचते हैं कि वो भी सीख करके अपना कुछ काम करें?
1: जी जी, आते हैं लोग, 5-6 लोग आते हैं।

किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा।

0: जी, एक मेरे यहाँ पर दुकान है, एक आगे मंडी के पास है, वहाँ भी लड़का एक सीखने के लिए बैठा है, दुकान पर है।
1: तो कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि शहर चलें?
0: नहीं सर, यहीं गांव में सुकून मिलता है सर। यहाँ के लोग मतलब हमसे जुड़े हुए हैं, काफी लोग काम करते हमारे नीचे।
1: जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ युवा होते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया तो लगता है कि यहाँ 10,000 कमा रहे हैं, शहर चल के 15 कमाएंगे तो वहीं चलते हैं। आपके मन में कभी ऐसा कुछ?
0: जी नहीं सर, मुझे गांव अच्छा लगता है, यहीं से मेरी कमाई अच्छी हो जाती है।
1: तो जो युवा ऐसे ही किसी कामों में, या जैसे यूट्यूब आपने देख करके ये स्किल आपने सीखी, तो कुछ लोग यूट्यूब देख करके सिर्फ एंटरटेनमेंट करते होंगे, दिन भर में रील्स देखते होंगे आधे से ज्यादा टाइम अपने पूरे 24 घंटे के में, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कुछ स्किल सीख सकते हैं और गांव में काम कर सकते हैं, क्या मैसेज देंगे?
0: बिल्कुल सर, सीख सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं, अच्छी कमाई होती है इसमें।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू
0: जी सर। थैंक यू सर।
1: दोस्तों, अभी हम एक जन सेवा केंद्र चलाने वाले युवक से बातचीत करने जा रहे हैं और उनसे जरा सा जानने का प्रयास करते हैं कि डिजिटल स्किल ग्रामीण युवाओं के लिए जब हम बात करते हैं तो

0: गांव में काम कर सकते हैं, क्या मैसेज देंगे?
1: बिल्कुल सर, सीख सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं, अच्छी कमाई होती है इसमें।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।
1: जी सर, थैंक यू सर।
0: दोस्तों अभी हम एक जन सेवा केंद्र चलाने वाले युवक से बातचीत करने जा रहे हैं और उनसे जरा सा जानने का प्रयास करते हैं कि डिजिटल स्किल ग्रामीण युवाओं के लिए जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब वो किस तरह से समझते हैं और कैसे आज वो डिजिटली वर्क करके पैसे कमा भी रहे हैं और लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बने हैं। क्या नाम है आपका भैया?
2: ज्ञानदीप।
0: ज्ञानदीप जी, आपकी उम्र क्या होगी अभी?
2: 36, लगभग 36 साल।
0: ओके, और ये CSC यानी कि जन सेवा केंद्र आप कब से चला रहे हैं?
2: ये हम 2015 से चला रहे हैं।
0: लगभग 10 साल के ऊपर हो रहा है, 10-11 साल हो गया। तो डिजिटल चीज़ों को करने का ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, इसके बिहाफ पे आप क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को डिजिटली स्किल सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है?
2: नहीं, डिजिटली तो इस समय तो डिजिटल सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया है। और बाकी रहा गाँव का माहौल जो है, तो ये लोग नहीं सीख पाते हैं डिजिटल के विषय में, इसलिए हम लोग का यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है योगदान कि हम लोग इन सब के काम जो है डिजिटल कर सकें। बाकी तो जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर सबसे ज्यादा लोग 80% लोग गांव के हम ही लोग के ऊपर डिपेंड है डिजिटल को लेके।
0: क्या क्या काम आप करते हैं?
2: हमारे पास आय जाति निवास प्रमाण पत्र हैं, बिजली का बिल है और बिजली कनेक्शन करते हैं, और बाकी खसरा खतौनी से लेके बहुत सारे हैं जो भी आप ऑनलाइन टिकट वगैरह का तो काम हम नहीं करते, लेकिन ऑनलाइन टिकट का काम होता है। जो स्टूडेंट आते हैं उनके स्कॉलर के फॉर्म भरने हो गए, ऑनलाइन इसको एडमिशन के फॉर्म हो गए, एडमिट कार्ड हो गया, और जो भी स्टूडेंट्स के काम रहते हैं वो सारे काम होते हैं।
0: तो अच्छा, थोड़ा सा अर्निंग पे भी हम बात करते हैं कि अर्निंग को लेकर के क्या है, मतलब आपको लगता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में अपने घर पर ही रह करके अपना पूरा परिवार चला सकते हैं इस काम से?
2: जी बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि कुछ काम है जो गवर्नमेंटेड काम है उन पे तो नहीं हम इनकम ले सकते हैं, लेकिन बाकी प्रिंट आउट से लेके फोटोकॉपी से लेके फॉर्म भरना है इन सब में तो पैसा निक बन जाता है।
0: अच्छा, जैसे कुछ लोग होता है कि जब कुछ स्किल सीखते हैं खास करके डिजिटली तो वो शहर की तरफ पलायन करने के लिए सोचते हैं कि शहर चलते हैं, यहां से दो पैसा ज्यादा कमाएंगे। आपने क्यों ये फैसला लिया कि आपको अपने घर पे रहना है, गांव में रहना है और काम करना है?
2: अब रहना क्या है, मुझे तो भाई यहीं से हम जुड़े हुए हैं, बाकी मैंने भी नौकरी की हुई है, लेकिन जो अपना काम करके है ना कि अपना हम बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं, काम भी हो रहा है, चार लोगों से मिल भी रहे हैं और लोगों के बारे में जान भी रहे हैं। बाहर जाके नौकरी करते हैं बस वही दो चार लोगों के बीच में रहना है। और
0: तो मतलब आपको अपने गांव की मिट्टी की जो खुशबू है वो बाहर नहीं जाने देती,
2: यही चीज है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।
2: धन्यवाद।
0: दोस्तों एक समय था जब किसी छोटे से काम के लिए ग्रामीणों को शहर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज वही काम गांव में ही हो रहे हैं। CSC केंद्र यानी कि जन सेवा केंद्र सिर्फ सेवा केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए अवसरों के केंद्र बनते जा रहे हैं, जहां डिजिटल स्किल रोजगार का जरिया भी है और सम्मानजनक पहचान का माध्यम भी। लेकिन आखिर इन सेवाओं का लाभ गांव के लोगों तक किस तरह पहुंच रहा है, इसे जानने के लिए हमने बात की उन लोगों से जो स्वयं इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आप भैया बिजली का बिल जमा करने आए हैं?
3: हाँ भैया।
0: विद्युत केंद्र कहाँ पर है आपका?
3: ये मुंशी खेड़ा।
0: कितना दूर होगा आपके घर से लगभग?
3: अरे 5-6 किलोमीटर पे है।
0: और जिस CSC पे आप हैं ये कितना दूर है?
3: ये 1.5 किलोमीटर।
0: अच्छा, तो मतलब आपके लिए फायदा ये है CSC पे आने का कि आपको 6 किलोमीटर नहीं जाना
3: है। पास में है ना। अच्छा, इसीलिए।
0: अच्छा, तो यहाँ पे डिजिटली पेमेंट जमा हो जाती है?
3: हाँ हो जाती है।
0: अच्छा, कभी खुद से करने के लिए आपने नहीं सोचा?
3: नहीं,
0: मतलब सीखा नहीं आपने?
3: हाँ सीखा नहीं।
0: आपका नाम क्या है भैया?
4: राहुल वर्मा।
0: आप किस लिए आए हैं यहाँ पे?
4: खेती का कागज निकालने आए।
0: अच्छा, तो तहसील पे आप नहीं गए, आप यहीं से निकल?
4: जब यहीं पे हमें सेवा मिल रही है मुफ्त में तो क्यों हम वहाँ पे जाएं?
0: ये कितना दूर है घर से आपके?
4: बस 500 मीटर।
0: 500 मीटर, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपके नजदीक जो है डिजिटल सेवा केंद्र है, वहाँ पे आप जाइए और डिजिटली अपनी चीजों को करवा लीजिए।
4: जो काम बाहर होता है वही काम हमारे पास में हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आए थे।
0: अच्छा, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की बात करें, चूंकि आप भी युवा हैं, तो उनके लिए डिजिटल स्किल कितनी ज्यादा जरूरी है, आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में?
4: बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो काम बाहर हो रहा है वो जब यहाँ पे आसपास हो रहा है तो यहीं पे सुविधा उपलब्ध है।
0: अच्छा, आप डिजिटली क्या क्या खुद से क्या क्या करते हैं?
4: खुद यही कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बस यही सब चलता है, बस बाकी और नहीं कर पाते।
0: ये तो आपका एंटरटेनमेंट का एक रास्ता है, कभी आपने सोचा कि इंस्टाग्राम पे वीडियो बना करके अपलोड करें और पैसा कमाएं?
4: हाँ वो तो कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें

0: थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से काम किया जाता है, पर ऐसा फोन नहीं है, ना महंगा फोन है, ना कुछ।
1: इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए करते हैं ज्यादा?
0: फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब।
1: चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए।
0: भैया नमस्ते।
1: माता जी क्या करवाने आई हैं यहाँ पे, क्या काम कराएंगी?
2: हम पैसा निकलवाए।
1: पैसा निकल रहे? बैंक नहीं गई क्या?
2: बैंक नहीं पहुँच पाए, देर होते रहे।
1: अच्छा, बैंक दूर है ना। क्या नाम है आपका?
2: रामपति।
1: अच्छा, तो जैसे पैसा निकालना होता है तो आप CSC पर चले आते यहाँ ना?
2: हाँ।
1: कितना दूर है ये घर से?
2: अरे घर हमारा दूर ही है,
1: लेकिन बैंक से तो ये नजदीक ही है।
2: हाँ।
1: ये बताइए कितना निकलवाने के लिए पैसा आई है?
2: 500।
1: कैसे निकलता है यहाँ पे?
2: अंगूठा लगा के, आधार से।
1: अंगूठा लगा के, आधार कार्ड से। क्या नाम है चाचा आपका?
3: विश्वनाथ।
1: अच्छा, क्या काम करते हैं आप?
3: मजदूरी यही करते हैं, और क्या करते हैं, खेती किसानी मजदूरी।
1: आज आप CSC पर आए हैं किस काम के लिए?
3: हम खेती वाला पिन कार्ड बनवाने आए थे।
1: अच्छा।
3: बैंक के लिए लगाने लिए, और वही जो है हमको रसे भी लेना है।
1: अच्छा, तो आपके घर के नजदीक जो CSC है ये आपके लिए फायदेमंद है? CSC मतलब जहाँ पे आप आए हैं काम करवाने के लिए, जनसेवा केंद्र।
3: हाँ हाँ, फायदा कहने है, फायदा तो है, फायदा ना होते हम खड़े कैसे होते।
1: अच्छा, अगर ये काम यहाँ नहीं होता तो आपको कहाँ जाना पड़ता?
3: बगचलाब जाना पड़ता।
1: कितना दूर है वो यहाँ से?
3: 3 किलोमीटर।
1: मतलब आपका समय लगभग आधा दिन निकल जाता
3: है? हाँ हाँ, निकल जाता।
1: और वो काम यहाँ पे आपका 10 मिनट में?
3: हाँ, 10 मिनट हो जाता है। थोड़े यहाँ निकाल दिए, चले गए, चाहे इंतखाब निकालो चाहे पैसा निकालो।
1: दोस्तों अभी इस वक्त हम रैथा गांव में हैं, और यहाँ पे एक बैंक है जो कि ग्रामीण क्षेत्र की शाखा है ये। तो यहाँ पर लोगों की भीड़ हम थोड़ा सा देखने के लिए आए थे कि लोग डिजिटली बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बैंकों में वैसे ही भीड़ लगी है जैसे पहले लगती थी। एक ग्राहक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका?
4: मेरा नाम शरद गुप्ता है।
1: शरद जी क्या करते हैं आप?
4: मैं खेती करता हूँ, किसानी।
1: अच्छा, आज आप बैंक की शाखा में आए हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो आप यहाँ पे आए हैं?
4: मुझे पासबुक लेना था और एक DD बनवाना था।
1: अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे आज आप यहाँ आए हैं तो आपको हर छोटे मोटे कामों के लिए बैंक की शाखा में आना पड़ता है या डिजिटली चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं आप?
4: नहीं, अभी तो बैंक ऐप आ गया ना इसमें, तो उससे जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन उससे हो जा रहे हैं, और जो है जैसे IMPS है या गूगल पे है उससे कर लेते हैं। 2 लाख तक तो हो जा रहा है, 2 लाख के ऊपर है तो ब्रांच आना पड़ता है।
1: तो जैसे हम डिजिटल ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वो कितना डिजिटल हुए हैं, तो एक मतलब बैंक के ग्राहक होने के नाते और एक इस गांव के निवासी होने के नाते इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका गांव कितना डिजिटल हो रहा है?
4: वैसे पहले की संभावना बहुत काफी हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ प्रयास करना बाकी है सरकार को, क्योंकि उतना अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को पास अभी वो सुविधाएं भी नहीं है, मोबाइल वोबाइल की अभी कम है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको।
1: आपको बेसिकली जैसे डिजिटल चीजों से जुड़ने में कोई समस्या होती है?
4: नहीं, मुझे तो कोई समस्या नहीं हुई है, मैं तो कर लेता हूँ अपने आप से।
1: नेट वगैरह की क्या सुविधा है?
4: नेट तो है, नेट की कोई समस्या नहीं।
1: और लाइट वाइट की क्या व्यवस्था है?
4: भी अच्छी आ रही है।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। साथियों, डिजिटल बदलाव का असली मतलब केवल तकनीक का इस्तेमाल नहीं है बल्कि लोगों का उस तकनीक पर भरोसा करना भी है। जब गांव का बुजुर्ग बैंकिंग सेवाएं डिजिटल माध्यम से लेने लगे, जब युवा ऑनलाइन आवेदन खुद भरने लगे, जब महिलाएं भी डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करने लगे, तो समझिए कि डिजिटल क्रांति जमीन पर उतर चुकी है, और इस बदलाव को मजबूत करने में पंचायतों की भूमिका भी बेहद अहम है। इस वक्त हम रैथा गांव में मौजूद हैं, जो कि बख्शी का तालाब तहसील के तहत आता है और चिन्हट ब्लॉक यहां पर लगता है। यहां की जो पंचायत सहायक है अंकिता मौर्य जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा सा जानने का प्रयास करते हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं और गांव के जो लोग हैं वो कितना डिजिटली इंडिया को समझ रहे हैं, डिजिटली गांव को समझ रहे हैं और सरकार की डिजिटल योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। अंकिता मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: थैंक यू। मेरा नाम अंकिता मौर्य है और मैं ग्राम पंचायत रैथा में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूँ।
1: आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम डिजिटल भारत और डिजिटल गांव की बात करते हैं तो इसका मतलब आप क्या समझती हैं, और अब चूंकि हम रैथा में मौजूद हैं तो यहाँ की स्थिति क्या है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
5: आज के समय में वैसे डिजिटल जो इंडिया है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारे ग्राम पंचायत रैथा में ही आप देख लीजिए कि यहाँ पे अभी हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है, जहाँ पे गांव वालों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, ग्रामीण वासियों के लिए जो है यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी और उनके लिए जो है कंप्यूटर्स की सुविधा दी जा रही है, और यहाँ पे जो है

0: हम लोगों के लिए जो है सहज आईडी दी गई है, जिसके द्वारा हम लोग ग्रामीण लोगों के लिए जो है आय जाति निवास जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जो है डॉक्यूमेंट डिजिटल तौर पे उपलब्ध करवाते हैं न्यूनतम शुल्क में।
1: अच्छा, यहाँ पे जैसे लाइट की सुविधा की बात करें या वाईफाई की कनेक्टिविटी की बात करें, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसका कितना रोल है डिजिटल गाँव को मजबूत करने में और कितना बेहतर है यहाँ पे?
0: वाईफाई तो बहुत कामगार है। जैसे कि हमारे पंचायत भवन में ही वाईफाई लगाया गया है, और जैसे कि अभी यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह का संचालन होगा तो वहाँ पे भी जितने भी बच्चे रहेंगे तो उनके लिए भी वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, और गांव में भी जगह जगह पर वाईफाई बहुत सक्सेसफुल है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग डिजिटली करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पेंशन से संबंधित जो कार्य हैं, पेंशन अप्लाई करना, पेंशन देखना, जिन लोगों को पेंशन में समस्या है उनका भी हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे सामूहिक विवाह योजना का भी संचालन किया जाता है, अनुदान योजना जिसमें जो है शादी के लिए जो है बच्चियों को धनराशि वगैरह प्रोवाइड की जाती है, उसका भी कार्य यहीं से संचालित होता है, और आवास के लिए जियो टैगिंग और आवास प्रदान करना डिजिटली, ये सब ग्रामीण पंचायत भवन से ही संचालित किया जाता है।
1: चलिए, बेहतर तरीके से आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: किसी भी गांव की असली ताकत उसके युवा होते हैं, और जब इन्हीं युवाओं के हाथों में डिजिटल कौशल आ जाता है तो बदलाव सिर्फ स्क्रीन पर नहीं जिंदगी में दिखाई देता है। आज का ग्रामीण युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि अवसर पैदा करने वाला बन रहा है। एक क्लिक, एक कौशल और एक नया आत्मविश्वास, यही है डिजिटल गाँव की नई पहचान, जहाँ सपनों को शहर जाने की जरूरत नहीं बल्कि तकनीक खुद गांव तक पहुंच रही है। तो हमारी आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दीजिए मुझे यानी कि अभिषेक को इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

दोस्तों नई उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए अब समय है उन खबरों का जो आपको ले जाती हैं आपकी उड़ान की ओर, यानी कि वो खबरें जो रोजगार और अवसर से जुड़ी हुई हैं। बहराइच जिले में लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को गति मिली है। इस परियोजना से करीब 2000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होने की उम्मीद है। इस भर्ती अभियान के तहत 32,679 पदों को भरा जाना है। जून 2026 में विभिन्न विभागों की 46,500 से अधिक रिक्तियों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। इसमें एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एएलपी, एएफसीएटी, एनडीए और सीडीएस जैसी प्रमुख भर्तियां शामिल हैं। कई पदों की अंतिम तिथि इसी महीने ही है। देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर आधारित रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास नए औद्योगिक, लॉजिस्टिक और व्यवसायिक केंद्र विकसित हो रहे हैं। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यूपीएसएससी के टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी से जुड़े युवाओं के लिए 2,759 पदों पर भर्ती की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि जून में ही है। प्रदेश के 73 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को कटाई और भंडारण कार्यों में सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। ये तस्वीरें साफ हैं कि एक तरफ निवेश और औद्योगिक विकास, दूसरी तरफ हजारों सरकारी नौकरियों के अवसर युवाओं का इंतजार कर रहे हैं। ज़रूरत है आपको तैयार रहने की कमर कस के। नई उड़ान के सफ़र में ये खबरें आपके काम की हैं और फिलहाल आज के कार्यक्रम में जो दी गई जानकारी थी, हमारी आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग थी, वो सब आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रियाएँ और प्यार हमें ज़रूर भेजिएगा। कैसे लिख के भेजेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए हमारे ईमेल और हमारे पते पर। नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान aarlakhnow@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18 विधानसभा।

तो दोस्तों, ये रहा आज के पूरे कार्यक्रम का सफ़र, और उम्मीद है कि आपको हमारा ये सफ़र अच्छा लगा होगा। यूं ही आप तरक्की की राह में आगे बढ़ते रहिए, नई उड़ान सुनते रहिए, सुनने के साथ जुड़ते रहिए हर अपडेट के साथ में। फिलहाल समय हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, तो इजाज़त लेते हुए यही कहेंगे कि फिर मिलेंगे आपसे किसी और कार्यक्रम में किसी और जानकारी के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, मीडियम वेव के मीटर पर। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। थाना लालगंज जनपद रायबरेली से राजेंद्र सूचित करते हैं कि उनकी पत्नी सुलोचना 26 जनवरी 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 25 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा व चेहरा गोल है। घटना के समय इन्होंने पीले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके विषय में कोई भी सूचना मिलती है तो वो थाना लालगंज जनपद रायबरेली को सूचित करें, साथ ही इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते।

0: सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8528332436। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 8528332436। थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली से राम नरेश पांडे सूचित करते हैं कि खुशी 9 मई 2026 को सुबह 7 बजे से लापता है। इनकी उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ व चेहरा गोल है। घटना के समय इन्होंने काले रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। किसी भी व्यक्ति को यदि इनके विषय में कोई भी सूचना मिलती है तो वो थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली को सूचित करे, साथ ही इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7897472914। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 7897472914। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम, अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में संस्कृत समाचार होंगे।
3: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्र दत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तीकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते, अपि च वास्तविक विकासः तदैव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अरब रूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। केन्द्र सर्वकारेण आवृजन नियमे निर्गतायाः अधिसूचनायाः अनुसारं अधुना 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवास समयं वर्धयितुम् इच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आवृजनावधे समाप्तिपूर्वम् एव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीश

0: परीक्षेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशानां संख्या समेध्य 38 संजाता। अपि च विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह, जर्मनी देशस्य थुरिंगिया इत्यस्य मंत्री, राष्ट्रपति च मारियो वोक्ट इत्यसौ च अद्य नवदिल्ल्यां क्वांटम संचारस्य फोटोनिक्स इत्यस्य उद्योग नेतृत्वभूतस्य डीपटेक सहयोगस्य च विषये चर्चितवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया प्रोक्तं यत् शिक्षा सशक्तिकरणस्य महत्वपूर्णं साधनं विद्यते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरं जागरूकः सक्षमश्च कारयति। अद्य नवदिल्ल्याम् असौ जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् वास्तविक विकासः तदेव सम्यक् रूपेण प्राप्स्यते यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकेन, आर्थिकेन, शैक्षिकेन च रूपेण विकसिताः भविष्यन्ति।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सा रेखांकितवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्ति योजनया जनजातिवर्गेभ्य उच्चशिक्षायाः अवसराणां च आदानेन प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मुवर्या अकथयत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां नैयून्यं न अस्ति, अपितु तेषां अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचित मार्गदर्शन प्रदानं च आवश्यकमस्ति।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इत्यनेन विगतमासे 23.20 अर्बुदरूप्यकाणां आदान प्रदान विषयकं शिखरं समावाप्तम्। वित्तीय सेवा विभागः सार्वजनिक संदेश माध्यमे लिखिते संदेशे डिजिटल इति रूपेण धनादान प्रदानं स्वीकर्तुं नागरिकान् प्रति आभारं व्यक्तीकृतवान्। अवधेयं यत् यूपीआई इत्येतत् प्रकल्पं विश्वस्य सर्वोच्चत्वेन रियल टाइम पेमेंट इति प्रकल्परूपेण समुद्भूतमस्ति, यत् देशस्य डिजिटल अर्थव्यवस्थायाः आधारः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण आव्रजन नियमे विदेश नियमेषु च संशोधनम् अधिसूचितमस्ति। नियमानुसारं भारते 80+100 दिनानि यावत् आगम्यमानाः वैदेशिकाः यदि स्वकीयं प्रवाससमयं वर्धयितुमिच्छन्ति तर्हि तेभ्यः आव्रजनावधे समाप्तिपूर्वमेव पञ्जीकरणम् अनिवार्यमस्ति। इतः पूर्वम् 80+100 दिनानाम् अवधे समाप्त्यानन्तरं 14 दिनाभ्यन्तरं पञ्जीकरणम् आवश्यकमासीत्। गृहमन्त्रालयेन आव्रजन विदेशी नियमः इत्येषा अधिसूचना निर्गतास्ति, यस्याम् आव्रजन विदेशी नियमः इत्यस्यान्तर्गतं पञ्जीकरणसीमायां समयसीमा अध्यर्थनातन्त्रे च महत्वपूर्णानि परिवर्तनानि कृतानि सन्ति। यद्यपि निर्धारितावधेः अनन्तरं पञ्जीकरणं केवलम् आपत्कालपरिस्थितिषु एव स्वीकार्यं भविष्यति। प्रथमवारं नियमेषु अन्तर्जालमाध्यमेन अध्यर्थनाप्रणालिः योजितास्ति। केनापि आदेशेन प्रभावितः जनः अधुना आव्रजन विभागायुक्तम् अन्तर्जालमाध्यमेन प्रार्थयितुं शक्नोति। अध्यर्थना आदेश प्राप्तिसमयात् 30 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। आयुक्तः सम्बन्धितपक्षं संश्रुत्य निर्णयं दास्यति, अपि च विषयस्य समाधानं 60 दिनानाम् अभ्यन्तरम् एव कुर्यात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः इत्यसौ अद्य सर्वोच्च न्यायालयस्य 5 न्यायाधीशेभ्यः पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिः शीलनागू, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली

0: पंचो जय हिंद। आत्म प्रकाश भैया।
1: हाँ राजेश भैया, भैया देखो हम पंच हमेशा चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया से होता रहे और हमारे सामने कोई तरह की समस्या ना होए, लेकिन बहुत तरह की समस्या ऐसी होती हैं जिनका कबो कबो अंदाजों ना लगाए मिलते हैं और अचानक से हो जाती है।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से कोई ये ऐसी आपदाएं होती हैं वो बताई कि नहीं होती हैं भैया। हाँ, कब का
1: मतलब कोई बड़े जाए, बड़े स्तर पर अगर कुछ हो रहा है तो वे आपदा के यहाँ कैसे संभाला जा सकत है, इसके लिए वैसे तो कुछ ना बता सके थे पहले से, ना समझा जा सकते थे, लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी हैं जिनका हम पंच नाम ली थे कि बहुत ज्यादा बाढ़ आए गए, सूखा हो गया, भूकंप आवा या कहूँ भूस्खलन हो गया, तो ये सब जो

0: ऐसी स्थितियां होती हैं उमा, सबसे जरूरी होता है कि अपन धीरज बनाए रखो और सोच समझ के यहाँ कदम उठाओ।
1: बिल्कुल भैया सही क्यों कहा ऐसे। और कुछ मानव जनित आपदाएं होती हैं भैया, जैसे कि औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई गई, रासायनिक रिसाव होगा, आग लगना है, परमाणु दुर्घटना है, आतंकवादी हमले हैं, यही तरीके की मतलब की आपदाएं होती हैं भैया।
0: सही बात है, तो इनके लिए भी हमका पंचन के यहाँ सजग और सचेत रहने की जरूरत है। और खास तौर से जो हमारे प्रशासन है, जो सरकार के माध्यम से ने समय समय पर सूचनाएं दी जाती रहती हैं, उनका जरूर पालन करेगा होते, जो उन भी सतर्कता बताई जाते उनका जरूर पालन करेगा होते।
1: बिल्कुल भैया कहे से जब वही पालन करबा तब इनसे हम लोगों का बिल्कुल अच्छे तरीके से लाभ मिली है, कहे से कोई नुकसान ना हो तब भाई बच सकत है।
0: बिल्कुल भैया, और बहुत सारी प्राकृतिक आपदन के कारण यू होते कि हम पंच प्रकृति के साथ में चल ना पाई थे, उके लिए जो उन भी चीज़ें जैसे जी का हम पंच विकास कही थे, बहुत सारी चीज़ें जो उन तकनीकी विकास हुआ है वो कहूँ ना कहूँ हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कई दी से, तो उसे भी होती हैं। तो हम पंच देखो यह बारे में आज एक बात भी सुनवे डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय जी से, जो कि बताए रहे हैं कि हरित सोच का निर्माण करे में यहाँ परिवार के का भूमिका है, और हरित सोच यानी कि प्रकृति के साथ में चले के जो सोच है वह कैसे बनाई जा सकत है और कैसे लाभ दे थे, और डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय भैया से जाना जाए।
1: बिल्कुल भैया,
2: हरित सोच एक व्यापक चीज है। इसमें परिवार के माध्यम से हम सीखते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल है, जंगल, जमीन का सदुपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट न उत्पन्न हो। हमारी पीढ़ी जो भी कुछ प्राप्त की है इस पृथ्वी पर, उसे हम कैसे संरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ प्राप्त हो सके। हमें अपनी ग्रीड और हमारी नीड, जिसको हम बोलते हैं कि अपनी आवश्यकता और अपनी आकांक्षा के बीच में एक संतुलन स्थापित करना होगा। संतुलन की जो सबसे पहली पाठशाला है वो हमारा परिवार है, जो हमको सिखाता है कि किस तरह हमें बिजली का सदुपयोग करना चाहिए, किस तरह हमें अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना चाहिए, किस तरह से हमें अपने परिवार के माध्यम से जल संरक्षण करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो कपड़े के झोले का इस्तेमाल करते थे, बाजार जाते थे और वहां से वो वस्तुएं लेकर के आते थे, जिससे वो झोला, एक ही झोला हमारे बहुत बार काम आता था। आज इस बहुत ही अच्छी परंपरा को, एक अच्छी आदत को हमने छोड़ दिया और धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरह से पॉलिथीन के झोले लोकप्रिय हुए और उनका दुष्परिणाम जो हमारे सामने आता है, जो हमारे केवल नगरी जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे ग्रामीण जीवन में भी उसी तरह से वो प्रभावित कर रहा है। नालियों को चोक करना, खेतों की जो जमीन है उसके नीचे पहुंच करके उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट करना, आखिर इन्हें हम रोकें कैसे? सरकार नियम बनाकर रोके, इश्तेहार देकर रोके? इससे बेहतर है कि इसे परिवार स्तर पर ही हमको बताना होगा बच्चों को कि हमें झोले का इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़े का, कागज के झोलों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी न केवल हमारा वर्तमान है बल्कि यह भविष्य है। इस पृथ्वी पर जीवन ही पानी की वजह से संभव हुआ। परिवार अपने बच्चों के मन में पानी के प्रति आदर भाव पैदा करते हैं कि जब हम अपने नदियों के पास जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, पोखरे हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं, वहां बच्चों को जब हम घुमाते हैं, इनके माध्यम से हम कई संदेश भी देते हैं। उनके प्रति एक तरफ जो सम्मान भाव आता है वह तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन वो हमारे जो परंपरागत स्रोत हैं, पोखरे हैं, तालाब हैं, नदी है, वो किस तरह हमारे जल स्तर को मेंटेन करते हैं, किस तरह से वो हमारे पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं और हमारी कृषि के लिए कितना आवश्यक है। तो इन परंपरागत स्रोतों के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है वो परिवार की वजह से होता है। हमें देखना चाहिए कि किस तरह से गांव के जलाशयों को बचाया जा सके, शहरों में जो पोखरे हैं बड़े उनको कैसे बचाया जा सके। तो परिवार पर इसकी जो चर्चा होती है उसका सीधा प्रभाव हमारे बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है। हमें अपने अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया से हमारे सामने आया। एक पूज्य भाव जो विकसित किया जाता है वह हमें एक सतर्कता भी देता है, हमें संदेश भी देता है और हमें एक प्रकार से सुरक्षित प्रयोग की तरफ भी हमें इशारा करता है। दूसरी तरफ जब हम अन्न के प्रति यह भावना रखते हैं तो इसी के माध्यम से हम प्रकारांतर से अपने देश के किसानों के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अन्नादि भवति भूतानि परजन्या अन्न संभवम, यज्ञादि भवति परजन्या यज्ञ कर्मः सद्भवः। अर्थात कृषि जो है एक प्रकार से यज्ञ है, इसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह यज्ञ के माध्यम से उठने वाला जो धुआं होता है वो बादलों में जाकर उन्हें सक्रिय करता है, उस सक्रियता के कारण से बारिश होती है और उस वर्षा के जल से जीवन संभव होता है क्योंकि वह अन्न को उत्पन्न करता है। तो इनके माध्यम से भी एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने कही गई है कि हम कृषि कार्य को, अन्न उत्पादन की प्रक्रिया को एक यज्ञ की भांति देखें और इनके प्रति सम्मान भाव उत्पन्न करें। अक्सर हमारे परिवार छोटे बच्चों को लेकर के अभयारण्य पर, पहाड़ों पर, नेशनल पार्क्स में, नदियों के किनारे हम जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कि केवल ये नहीं कि यह एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है बल्कि इनके माध्यम से हम बच्चों के मन में भाव भी उत्पन्न करते हैं कि किस तरह प्रकृति ने इन सारी चीजों का निर्माण किया है जिनका

0: केवल उपभोग नहीं करें बल्कि इनका संरक्षण भी हमें करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम केवल सरकारी नीतियों के माध्यम से अपनी पूज्य नदियों को नहीं बचा सकते बल्कि परिवारों को भी इस तरह की जो फैलाई जा रही गंदगी है उस पर हस्तक्षेप करना होगा, उस पर एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेना होगा जिसके माध्यम से हम इस हरित सोच को और विकसित कर सकें। जो हमारे पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमारी जैव विविधता के लिए बहुत आवश्यक है। इनका होना हमारे होने के लिए बहुत आवश्यक है। इन पशुओं का, इन पक्षियों का, इन नाना प्रकार के वृक्षों का, पौधों का होना हमारे लिए जरूरी। इसलिए देखते हैं कि हमारी संस्कृति में परिवारों में बहुत जगह पर हाथियों का, गाय का, बंदर का, शेर का, जीव जंतुओं की हम पूजा करते हैं। इसके पीछे हम अपने बच्चों के अंदर एक भाव उत्पन्न करते हैं, एक संस्कार उत्पन्न करते हैं कि वो इनका आदर करना सीखें। ये हमारे साथ अगर हैं तो प्रकृति की उस विविधता को ये साधते हैं। विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीव हैं, जंतु हैं, वो हमारे परागण क्रिया में भी संबंधित हैं, वो हमारे कृषि कार्यों को प्रवर्धन करने का भी काम करते हैं और साथ में इनके माध्यम से ही बहुत सारी चीजें जो इस अस्तित्व में हमारे सामने हैं इनकी वजह से हैं। अतः इनका संरक्षण हमारे लिए जरूरी है। वृक्षों में भी हम देखते हैं किस तरह से पीपल है, तुलसी है, बट वृक्ष है, आम है, आंवले हैं, बांस है। इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व जो भारत में दिखाया जाता है इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हरित सोच है जो परिवारों से जुड़ी हुई है, जो हमारे उत्सवों से जुड़ी हुई है और इनके माध्यम से हम इनकी महत्ता को रेखांकित करते हुए इनको बचाने का प्रयास करते हैं। आज व्यस्तता के कारण से पर्यावरण के प्रति धीरे धीरे उपेक्षा भाव हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है और विकास में और संरक्षण में परिवार की भी कोई भूमिका होती है, हमारा भी कोई योगदान होता है, ये हम भूलते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को अच्छा अच्छा निबंध तैयार करवा देते हैं, खुद ही जाकर कहीं भाषण भी दे आते हैं, किंतु ये क्यों हम भूल जाते हैं कि इन सब के बचाव में एक परिवार का, एक व्यक्ति का, एक माता का, एक पिता का बहुत बड़ा रोल है और उस रोल को हम सभी को समझना होगा। ये परिवार ही बच्चों को सिखाते हैं कि आपके पास अगर हम पैसा दे रहे हैं, आपको अगर हम कोई वस्तु दे रहे हैं तो आप उसका दुरुपयोग मत करिए, अधिक से अधिक जितना ही आप इस्तेमाल करना चाहेंगे वह धीरे धीरे आपकी आवश्यकताएं, आपकी आकांक्षाएं, आपकी डिजायर्स बढ़ती चली जाएंगी और कभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसे में सभी परिवारों को अपने बच्चों को ये धीरे धीरे बताना होगा कि जो पहनावा है, जो हमारा खाने का जो तरीका है, जो हमारे जीवन में सारी बहुत सारी चीजों को हमने बना लिया कि इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, ये सारी चीजें पृथ्वी पर एक संकट का रूप धारण करती जा रही हैं। अगर हम अपनी इन उपभोग की वस्तुओं के प्रति इस तरह का भाव नहीं रखेंगे कि हमें इनके उतने ही इस्तेमाल करना होगा जिसका संबंध सीधे हमारी आवश्यकता से है, अगर हम बचत करते हैं तो हमारे परिवार के भी काम आएगा और प्रकारांतर से वो समाज के भी काम आएगा। इसलिए बचत केवल धन से ही संबंधित नहीं है, जल से संबंधित है, पौधों से संबंधित है, हमारी मिट्टी से संबंधित है। तो जो प्रकृति के जो संसाधन है पहले वे बचेंगे, उसके बाद तो हमारे आमोद प्रमोद के और जो हमारे मेटीरियल नीड्स हैं वही तब पूरी हो सकती हैं जब पहले प्रकृति का जो मूल स्वर है, मूल तंतु है, जो मूल एलिमेंट है वो बचेगा। हम देखते हैं किस तरह से आज से 100 साल पहले भी हमारे जो कवि हुआ करते थे वो प्रकृति को लेकर किस तरह से सतर्क है। मैथिली शरणगुप्त की एक रचना है कि अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुम्हला गए, फलते कहाँ है अब यहाँ वे फल रसाल नए नए, बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ है झंखाड़ है, तन सूख कर काटा हुआ है, शेष है तो हाड़ है, यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को, पर अधिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। पहले जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं थी जिनका सीधा संबंध पर्यावरण से था, जैसे कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धोलो, बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहकुठी पेड़ों पर बहने लगी हवा अति सुंदर। इस तरह की कविताओं को परिवार में हमारे माताएं, हमारे पिता, हमारे चाचा सभी लोग गाते थे और धीरे धीरे हम इन चीजों की महत्ता को समझते थे। इसी तरह के अच्छी अच्छी जो प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं हैं, जो कहानियां हैं, हमें परिवारों के माध्यम से सुनी और उस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए, एक परंपरा के रूप में इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से परिवार के स्तर पर ही इस सोच को विकसित करते हुए, बढ़ाते हुए हम समाज, देश और पूरी दुनिया के लिए एक हरित वातावरण के संरक्षण में, प्रवर्धन में योगदान कर सकते हैं।
1: आत्मप्रकाश भैया।
2: हाँ राजेश भैया।
1: देखो कितनी नीक जानकारी रही हरित सोच निर्माण में परिवार की भूमिका विषय पर, कितनी नीक तरीके से जानकारी दी डॉक्टर चंद्र मोहन उपाध्याय भैया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया देखो बहुत चीज़ें रहती हैं जो अपने पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छा कहा जाए कि अगर बचाव है तो हमका ध्यान रखे पड़ते हैं।
2: सही बात है। और आज के जो शाम है यानी कि काल विश्व साइकिल दिवस है।
1: अच्छा।
2: और आज की पहले के सांझ
1: है, पूर्व संध्या कहा जाए,
2: पूर्व संध्या है। तो आज हम पंच कल कहाँ कहाँ साइकिल से चले के यहाँ है और कती कसरत करे के यहाँ एक तैयारी कर सके थे पहले से ने। और भैया साइकिल से देखो हमारे जो
1: स्वास्थ्य जो है,
2: चाचा ताऊ पहले साइकिल से ने बाजार जाते रहे और पास पड़ोस में कहूँ जाए घूत रहे बाजार जाते रहे, आजकल के नए लड़के तो घर से तनिको दूर जाए गए तो कहते हैं कि मोटरसाइकिल उठा ली।
1: बिल्कुल सही कहो। कैसे आप आपको बताऊं भैया, हमारे जो बप्पा है ना वो आज साइकिल

0: भैया जाते हैं।
1: तो भैया यही खातिर वे आजो इतना स्वस्थ हैं, जबकि आजकल के जो नए हैं ना, 40-50 पहुंचत पहुंचत
0: वो 60 के
1: उनका
0: लागे
1: हाल
0: लागत
1: खराब
0: है।
1: हो लागत है।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा था।
1: भैया ये सब चीजन के यहाँ जब इतना अच्छे से राखत है या साइकिल, तो हमको पंचन के यहाँ कल के रे साइकिल दिवस पर यू संकल्प करे चाहिए कि अगर हमका 2-4-5 किलोमीटर चले के यहाँ है तो फिर साइकिल से जाई,
0: बिल्कुल भैया सही कह
1: और
0: रहे
1: उसे अपन स्वास्थ्य तो बढ़िया होता है, पर्यावरण भी अच्छा होते हैं। और स्वास्थ्य अच्छा रहे कर एक और भी तरीका है, वो यो है कि जैसे हम स्वस्थ हन तो हन, लेकिन अगर कोनो भाई के यहाँ कोनो बीमारी हो जाते,
0: हाँ, तो कोई योजना के माध्यम से लाभ मिलत है भैया
1: हाँ,
0: तो।
1: तो उनके इलाज में जो समस्याएं होती हैं उनका भी दूर करे कर एक योजना है, और वो योजना के चर्चा करने के लिए अपने साथ में आए हैं अमित प्रताप सिंह भैया,
0: नहीं भैया,
1: अनिल
0: अनिल
1: प्रताप
0: प्रताप
1: सिंह
0: सिंह
1: भैया।
0: भैया। हाँ
1: तो अनिल प्रताप सिंह भैया से ने जाना जाए कि आयुष्मान भारत योजना से गांव में यहाँ कैसे कैसे बदलाव आवा है।
0: तो भैया सुना जाए।
2: आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। साथियों, 2018 से पहले याद करो, गांव में किसी को हार्ट अटैक आता था, एक्सीडेंट होता था, या ऑपरेशन की नौबत आती थी तो क्या होता था? सांप काटता था, डिलीवरी में दिक्कत आती थी, या कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी जिसके लिए गांव से शहर के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता था, जिसमें धनहान तो होती ही थी, साथ में खेत बिकने तक की नौबत आ जाती थी, कर्जा चढ़ जाता था, इलाज अधूरा रह जाता था, पैसा खत्म होते ही मरीज को घर ले जाते थे, डॉक्टर कहते थे और ऊपर लेवल पर ले जाओ, पर हम कहते थे जितना नसीब में होता है उतना ही होता है। गरीब आदमी बीमारी से नहीं, बीमारी के बिल से मरता था। फिर आई आयुष्मान भारत योजना, हर परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। अब डर खत्म हुआ, अब बुखार 30 दिन से ज्यादा तो सीधा PSC जाते हैं। अब आयुष्मान कार्ड दिखाओ, फ्री में जांच और दवा, बड़े अस्पताल का रास्ता खुला। हमारे रामदीन काका का पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था, प्राइवेट अस्पताल में बहुत पैसा मांग रहे थे, आयुष्मान कार्ड से जिला अस्पताल में इलाज फ्री में हुआ, एक रुपया भी नहीं लगा। सीता भाभी की डिलीवरी में दिक्कत आ रही थी, पहले घर पर दाई से कराते थे, जच्चा बच्चा दोनों रिस्क में, अब आयुष्मान से शहर के बड़े अस्पताल में सिजेरियन हुआ, फ्री में हुआ, माँ बेटा दोनों स्वस्थ। दलाल, एम्बुलेंस वाला, दवा वाला सब लूटते थे, अब PMJAY हेल्प डेस्क हर अस्पताल में बैठा है, कार्ड स्कैन हुआ, इलाज शुरू, 5 लाख तक का इलाज फ्री। मित्रों, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, पूरे देश में 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान का कवर मिला है, 7 करोड़ से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होकर फ्री में इलाज करा चुके हैं। अगर मैं अपने ब्लॉक की बात करूं, तो 12,000 परिवारों के कार्ड बन चुके हैं, सिर्फ अपने गांव में 180 परिवारों के पास कार्ड है। पिछले एक साल में गांव के 23 लोगों का बड़ा ऑपरेशन हुआ, अगर आयुष्मान न होता तो 10 लाख रुपए का खर्च आता लगभग। सोचिए, 10 लाख रुपए, ये किसी की बेटी की शादी है, किसी का नया ट्यूबवेल है, किसी के बच्चे की इंजीनियरिंग की फीस है, ये पैसा अब कर्जे में नहीं तरक्की में लग रहा है। श्रोता साथियों, हालांकि इस योजना की कुछ समस्याएं भी हैं, पर उन सभी का समाधान भी है। कभी कभी अस्पताल कह देता है सर्वर नहीं चल रहा है, कभी कहता है ये बीमारी पैकेज में कवर नहीं है, कभी दलाल घूमते रहते हैं जो पैसे के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन हर चीज की चाबी है। आप 1-4-5-5-5 मिलाओ, ये आयुष्मान का टोल फ्री नंबर है, 24 घंटे खुला है, कंप्लेंट करो, 48 घंटे में एक्शन होता है। कार्ड खुद बनवाओ, CSC सेंटर जाओ, आधार राशन कार्ड दीजिए, 30 मिनट में फ्री में कार्ड बनता है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। पहले ये दौलत बचाने के लिए हमें अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ती थी, आज सरकार कह रही है तुम अपनी सेहत देखो, खर्चा हम देख लेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी 3 विनती है, जिसका कार्ड नहीं बना आज ही बनवाइए, जिसका बना है वो बटुए में रखिए और इस्तेमाल करिए, पड़ोसी को बताइए, क्योंकि बीमारी बताकर नहीं आती। याद रखिए, जान भी बचाएंगे, जहान भी बचाएंगे, यही आयुष्मान भारत का वादा है। और अब अपने उन साथियों को आयुष्मान योजना की जानकारी भी दे दूं जो अभी तक इसके बारे में नहीं जानते। तो श्रोता भाइयों और बहनों, भारत सरकार की ये सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 2018 में लॉन्च हुई। इसका मकसद था गरीब परिवारों को बड़ी बीमारी के खर्च से बचाना, और इसका मुख्य फायदा हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। अस्पताल में भर्ती होने पर कमरा, दवा, जांच, ऑपरेशन, सर्जरी सब फ्री। अब बात आती है कि कौन कौन ले सकता है इसका फायदा।

0: जनगणना 2011 डेटा के आधार पर वो परिवार जो सामाजिक आर्थिक जात जनगणना में गरीब वंचित श्रेणी में हैं, अर्थात ग्रामीण इलाके में, वे लोग शामिल जिनके कच्चे मकान, भूमिहीन मजदूर, SC/ST परिवार, दिव्यांग सदस्य वाले परिवार, मनरेगा में काम करने वाले परिवार, शहरी इलाके में रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, सफाई कर्मचारी, रेहड़ी पटरी वाले आदि 11 श्रेणियां। दोस्तों, अब इस योजना में नया अपडेट कर दिया गया है। अब 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबको 5 लाख तक का कवर मिलेगा। 5 लाख में क्या क्या कवर होगा, ये आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। इसमें कुल 1949 बीमारियां या प्रक्रियाएं कवर हैं, जिसमें सर्जरी से संबंधित, हार्ट बाईपास, घुटना बदलना, मोतियाबिंद, पथरी, हार्निया, हाइड्रोसील, पित्त की थैली का ऑपरेशन इत्यादि। कैंसर बीमारी में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, नवजात बच्चे का इलाज, इमरजेंसी में एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, सांप काटना, जटिल कुत्ता काटना, ये सब शामिल हैं। भर्ती से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक की सभी जांच और दवा जांचों में आती हैं। इसमें OPD की पर्ची, कॉस्मेटिक सर्जरी, नशा मुक्ति का इलाज, ये शामिल नहीं रहता है। कार्ड बनवाने का तरीका क्या है, जिसमें जरूरी कागज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, नजदीकी CSC सेंटर पर, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जाकर के ये प्रक्रिया की जा सकती है। अस्पताल का PMJAY कियोस्क भर्ती के समय भी बन जाता है। अपने ही मोबाइल ओपन करके ऑनलाइन पर जाकर के PMJAY.gov.in पर आप इसको पा सकते हैं। चेक कैसे करें कि आपका नाम है या नहीं, उसके लिए 1455 पर कॉल करें। पैनल वाले अस्पताल पर जाएं, अस्पताल या चुने हुए प्राइवेट अस्पताल जिसकी लिस्ट hospitals.pmjay.gov.in पर उपलब्ध है। आयुष्मान मित्र से मिल लें, हर अस्पताल में हेल्प डेस्क बना होता है, कार्ड और आधार कार्ड दिखाएं, अपना कार्ड स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट या OTP से वेरीफाई होगा। प्री ऑथराइजेशन अस्पताल 30 मिनट में अप्रूव कर लेता है। इलाज शुरू 5 लाख तक का पैसा नहीं लगेगा, खाना भी फ्री मिलता है। टोल फ्री नंबर है इसका 14555 या 1800111565, 24 घंटे 7 दिन ये सेवा उपलब्ध रहती है। अगर कोई शिकायत की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए भी वेबसाइट बनाई गई है। अगर इलाज के दौरान कोई समस्या आती है तो उसके लिए ऑनलाइन शिकायत की भी व्यवस्था है। अस्पतालों की लिस्ट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। कार्ड आप स्वयं मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। गांव में इलाज के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। जेब से 1 रुपया भी नहीं देना है किसी को। अगर अस्पताल पैसा मांगे तो तुरंत 14555 पर शिकायत करनी है। कार्ड पूरे देश में चलेगा, UP का कार्ड देश के कोने कोने में चलेगा। तो श्रोता भाइयों, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आयुष्मान रहें।
1: आत्मप्रकाश भैया।
2: हाँ राजेश भैया,
1: देखो कितनी नीक जानकारी रही जो आज का जो विषय रहा, जो आयुष्मान भारत योजना से गांव में बदलाव, जिनके जो वार्ताकार यानी कि जानकारी दे रहे हैं अनिल प्रताप सिंह भैया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और भैया अब बात हुई मूली अंतराल के बाद।
1: बिल्कुल भैया।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: यही लोगन की है, कुछ लोगन कट रही, कुछ लोगन की जैसे कि ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये सब इनका अवशेष जो है भैया वो मतलब कि कुछ लोग पलट चुके हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: कुछ लोग
1: और
0: ढाइचा रहा, और ये बहुत चीजें बोई रहा उनका भी
1: हाँ,
0: पलटाई
1: हरी
0: है शुरू
1: खाद
0: लेके फाइनल।
1: भी पलटाई करके जमीन में मिलाई जा रही है। इसके अलावा हम हमेशा ही देखे थे, जैसे अभी गेहूं के मड़ाई भे, उसके बाद बहुत सारा भूसा ज़्यादातर तो लोग अपने घर में रख लीन कि चलो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी हम चारा में इका इस्तेमाल करीबा। लेकिन कुछ पंच भाई होते जिनके पास ज़्यादा खेती होते, जानवर कम होते हैं, तो भूसा बहुत निकलत है। तो ऐसे में आज समझ में आना आयो थे कि उका का करी, अगर तुरंत बेचा जाए तो उतना बढ़िया पैसा नहीं मिला थे। दूसर चीज़ यह है कि कुछ जो और बड़े किसान हैं तो वे बड़ी मशीनन से नहीं कटवावत हैं, तो ज़्यादा ऊपर से नहीं काट दिया जाते, तो भूसा के बजाय बहुत सारे डंठल खेत में लगे रह जाते हैं। तो इसी तरह के जो फसल अवशेष होते हैं, हम पंच अपने हिसाब से ने उका दूर करे के उसे बचे घेर कोशिश करे लागे थे। लेकिन यूं ना जानी थे कि यूं फसल अवशेष वास्तव में हमारे लिए कोई समस्या नहीं, बल्कि बहुत बड़ा एक हमारी पूंजी है, और इका अगर सही से ने इस्तेमाल करा जाए तो यूं हमारे खेती में बहुत लाभदायक है।
0: बिल्कुल भैया सही का सही कहे हो, काहे से जब लाभदायक जब है हुई है जब हम इसका अच्छे तरीके से प्रबंधन कर सके, और प्रबंधन
1: हाँ
0: करने के लिए हमका बहुत चीज़न का ध्यान रखे पड़ते हैं। अब समय पर तो इका मतलब कि पलटा जाए, अगर हम अपने खेत में है जैसे कि
1: हाँ
0: मान लो धान की पराली हुई गई, या गेहूं डंठल हुई गई, या मक्का के अवशेष है, या गन्ने की पत्तियाँ हैं, इनका अच्छे तरीके से अगर पलट दिया जाए तो का होता है ये अपने कहा जाए कचरा से कंचन के रूप में परिवर्तित हो जाते
1: सही
0: हैं।
1: कहो भैया। और इसके अलावा इनका देखो गट्ठर बनाए जाते हैं, पशु चॉकलेट बनाई जाते हैं
0: बिल्कुल
1: कि
0: भैया
1: उनका बढ़िया गुड़ के साथ में और चीज़ें मिला के यहाँ रख लेते हैं लोग, और उनका अपने पशुन के यहाँ बाद में खिलावत हैं। और साथ ही साथ कुछ जने तो इनका बेच देते हैं, जो जिनके पास डेयरी व्यवसाय है या ज़्यादा पशु हैं तो वो लोग खरीद लेते हैं और उनका बढ़िया उनका पैसा मिल जाता है।
0: बिल्कुल भैया सही कहे हो, काहे से वही के बाद में बात की जाए जैसे गन्ने की पत्ती है तो
1: हाँ
0: वही का भी अपने खेत में डाल के एक मल्चिंग तरीके से की जाए सके, जैसे जो हो
1: हाँ
0: जाते हैं कि
1: ढक दो,
0: खरपतवार ना उगत है भैया, और जो नमी भी है अच्छे लंबे समय तक संरक्षित हो
1: सही
0: जाते हैं।
1: कह रहे हो भैया। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी जिनका हम तनिक तनिक प्रयास करके जो हमारे फसल अवशेष है उसका बढ़िया इस्तेमाल कर सके थे और अपनी खेती में लाभ उठा सके थे। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर हम फसल अवशेष कहाँ मिलाए कहाँ खाद बनाई थे तो उसे कार्बनिक अंश बहुत अच्छा मिलत है माटी में, और उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहा थे। बिल्कुल, तो माटी के रे स्वास्थ्य कहाँ बढ़िया रखे के कुछ औरों तरीका है, और खास तौर से हम पंचन कहाँ तो लगातार माटी के रे स्वास्थ्य पर नज़र रखे होते, कहे से कि हर 3 महीना बाद फसल बदल जाते,
0: बिल्कुल
1: तो
0: भैया
1: अगली फसल ले के खातिर पहले से तैयारी करे के यहाँ होते।
0: बिल्कुल सही कहो भैया, कहे से यही की तैयारी के खातिर देखो माटी जो कहा जाए कि मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और खरीफ की तैयारी विषय पर डॉक्टर अर्चना बहनी जो अर्चना सिंह बहनी हैं वो अपना मतलब जो
1: जानकारी
0: जानकारी
1: दे
0: की
1: रही
0: दे रही
1: हैं।
0: हैं, और उनसे बात
1: हाँ
0: कही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय जी, तो आओ मिलके सुना जाए।
1: हाँ भैया सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, माटी की सेहत कितना जरूरी है। जितने ही सेहतमंद माटी होगी तो जो आप फसल पैदा कर रहे हैं वो भी सेहतमंद होगी। यानी मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन कितना जरूरी है और उसके साथ खरीफ तैयारी कैसे करें किसान भाई बहन, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव से वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना सिंह। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खरीफ तैयारी के पहले मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन कितना जरूरी है।
3: किसान भाइयों एवं बहनों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं अच्छा फसल उत्पादन लेने के लिए हमारी मिट्टी का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। स्वस्थ मिट्टी से हमारा तात्पर्य है मिट्टी में जैविक पदार्थों के साथ पौधों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक विभिन्न पोषक तत्वों की समुचित मात्रा, संतुलित पीएच, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता तथा मिट्टी की उचित संरचना। यदि हमारी मिट्टी अच्छी है, स्वस्थ है, तो इससे हमारे पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नमी और अनुकूल वातावरण प्राप्त होता रहेगा, जिससे हमारी फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, गुणवत्ता युक्त होगा और हमारी फसलों में रोग के प्रति सहनशीलता भी अधिक होती है।
2: यानी मिट्टी सेहतमंद तभी होगी जब मिट्टी के भौतिक गुण, जैविक गुण और रासायनिक गुण अच्छे हों।
3: बिल्कुल
2: तो इसके लिए इस समय खेत खाली है, क्या मिट्टी सेहत की जांच के लिए परीक्षण करा लिया जाए?
3: बहुत आवश्यक है, जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें और क्रियाशील बने रहें, ठीक ऐसे ही हमें अपने मिट्टी का भी उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। सबसे पहले आता है मिट्टी की नियमित जांच कराना, संतुलित उर्वरकों का प्रबंधन करना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आत्म प्रकाश भैया।
2: हाँ राजेश भैया।
1: देखो, जो अपन खेती पाती होते हैं वो चाहे खरीफ की हो, चाहे जायद की हो और चाहे रबी ऋतु की हो, हर फसल में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यही समय देखा जाए भाई, जो जायद की फसल कट चुकी

0: जैविक खादों का उपयोग करना, फसल चक्र एवं जैव उर्वरकों का प्रयोग करना।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है, जहां हरी खाद लगाए हैं किसान भाई बहन, तो हरी खाद उत्पादन महत्वपूर्ण है, उनकी पलटाई महत्वपूर्ण है, तभी तो खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ेगा।
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रबी की फसल काटने के बाद हमारे किसान भाई खेतों में हरी खाद का उपयोग निश्चित तौर पे करें। हरी खाद के रूप में ढैंचा है, सनई है, उर्द है, मूंग है, लोबिया जैसी फसलों को ले सकते हैं। इन फसलों की बुआई करने के बाद लगभग 50 से 55 दिन के उपरांत अथवा फूल आने से जस्ट पहले इनको, जब इनका तना मुलायम होता है, खेत में पलट दें। इसके लिए रोटावेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या मिट्टी पलटने वाले हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से जुताई कर दें और मिट्टी में मिलाने के बाद खेत की सिंचाई करें, जिससे कि ये पौधे सड़ जाएं और सड़ करके अच्छी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएं। ये क्रिया हमें खेत में फसल लगाने के 10 से 15 दिन पहले पूर्ण कर लेनी चाहिए। इससे हमारे खेतों में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में अन्य पोषक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है, जिससे कि

0: इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से जुताई कर दें और मिट्टी में मिलाने के बाद खेत की सिंचाई करें, जिससे कि ये पौधे सड़ जाएं और सड़ करके अच्छी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएं। ये क्रिया हमें खेत में फसल लगाने के 10 से 15 दिन पहले पूर्ण कर लेनी चाहिए। इससे हमारे खेतों में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में अन्य पोषक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है, जिससे कि हमारा फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है और गुणवत्ता युक्त होता है।
1: यानी जैविक कार्बन जब खेत का बढ़ेगा, खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो जो रासायनिक खाद किसान भाई बहन प्रयोग करेंगे उसका भी असर दिखेगा डॉक्टर साहब?
0: बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। और आज का जो समय है वो जरूरी है कि हम जो रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी निर्भरता को कम करें, और उन पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने के लिए हमें जैविक खादों का उपयोग, हरी खादों का उपयोग और जैव उर्वरकों का प्रयोग करके ही करना होगा।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ हरी खाद की बुआई सनई ढेंचा की कर चुके हैं किसान भाई बहन, वहाँ 40 से 45 दिन में फूल आने के पहले पलटाई करेंगे
0: जी।
1: जो किसान भाई अभी नहीं कर पाए हैं, क्या गुंजाइश है?
0: हाँ, अभी भी वो लगा सकते हैं। जो हमारे किसान भाई धान की फसल लेने जा रहे हैं, अभी वो धान की नर्सरी डाल रहे हैं, तो वो लोग भी इसकी बुआई कर सकते हैं और फसल लगाने से पहले इसको खेत में अच्छे से मिला करके, सड़ा करके ही अगली फसल लेनी चाहिए।
1: जैविक खादों की बात करें तो गोबर की सड़ी खाद है, कंपोस्ट है, बहुत सारा फसल अवशेष है, वो कचरा कैसे कंचन बने, कबाड़ का कैसे जुगाड़ हो, इसके बारे में किसान भाइयों बहनों को क्या कहना चाहेंगे?
0: गोबर की सड़ी हुई खाद तो पहले से हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यदि इसको और उपयोगी बनाना है तो इसको हम अगर वर्मी कंपोस्ट में करते हैं तो ये और अधिक उपयोगी हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें यदि हम नीम की पत्तियों का और इस तरह के जो जैविक अपशिष्ट है इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो जाती है और हमारे खेत में जो रोग और कीटों का प्रकोप है वो भी कम होता है। इसके अलावा बहुत सारे आपके डीकम्पोजर आ गए हैं।
1: बायो डीकम्पोजर?
0: जी हाँ, तो जो हमारा कूड़ा करकट है उन सबको हम बायो डिकम्पोजर के माध्यम से डिकम्पोज करके एक बहुत अच्छी खाद के रूप में परिवर्तित करके अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारी रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जगह पे इनका प्रयोग किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, रासायनिक खादों के अंधाधुंध और असंतुलित प्रयोग से भी ढेर सारी समस्याएं आई हैं माटी की सेहत से जुड़ी, तो संतुलित उर्वरक प्रबंधन कितना आवश्यक है आज के दौर में जब माटी की सेहत की चिंता है?
0: संतुलित प्रबंधन का सबसे पहले इसका अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। संतुलित प्रबंधन का अर्थ है कि सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं, फिर आप अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार सही उर्वरक का सही मात्रा में सही समय पर सही तरीके से उपयोग करें ताकि आप अधिकतम उत्पादन कम लागत प्राप्त कर सकें।
1: और जैसा आपने कहा कि जो कार्बनिक स्रोत हैं, जैविक खादें हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ाएं।
0: बिल्कुल,
1: जीवाणु खादों का इस्तेमाल करें, जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें।
0: हाँ, और फसल चक्र को भी इसमें दृष्टिगत रखना बहुत जरूरी होता है। जो हमारे किसान भाई धान गेहूं की लगातार फसल ले रहे हैं या मक्का आलू ले रहे हैं, उन्हें वर्ष में एक बार कम से कम दलहनी फसल अवश्य लेनी चाहिए ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी और फसल का उत्पादन अच्छा होने के साथ साथ जो रोग और कीटों का प्रकोप है वो भी कम होता है।
1: क्योंकि जो भी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन की फैक्ट्री है।
0: बिल्कुल,
1: हवा से नाइट्रोजन खींचने वाली और हाँ, खेत की ताकत को बढ़ाने वाली फैक्ट्री है। डॉक्टर साहब, जीवाणु खादों के प्रयोग की बात करें तो जो दलहनी और गैर दलहनी फसलें हैं उनमें भी तो जैव उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा।
0: जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे जैव उर्वरक हैं जैसे आपका एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, पीएसबी है। जैव उर्वरक बाजार में बड़ी अच्छी उपलब्धता है इनकी, हमारे किसान भाई इनको ले करके और अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को घुलनशील करके उनके उपयोग लायक बना करके इनकी उपलब्धता को बढ़ाता है।
1: यानी खेत में जो पहले से मौजूद पोषक तत्व हैं जो पौधों को मिल नहीं रहे हैं उनको उपलब्ध कराएंगे।
0: बिल्कुल सही।
1: डॉक्टर साहब, अब खरीफ की तैयारी की बात कर लें तो खरीफ की तैयारी में फसल योजना कैसे बनाएं किसान भाई बहन माटी के सेहत प्रबंधन के बाद, और तैयारी कैसे करें?
0: अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो सबसे पहले ये वर्षा पर आधारित होता है और खरीफ की फसल में मुख्य रूप से धान है, उड़द है, मूंग है, ज्वार है, बाजरा है और मूंगफली जैसी फसलों को हमारे किसान भाई बोते हैं। तो खरीफ की तैयारी में भी सबसे पहले खेती की तैयारी आती है कि प्रथम वर्षा के बाद ही हमारे किसान भाई अपने खेत की गहरी जुताई कर लें, उसका समतलीकरण अवश्य कर लें। अगर खेत हमारा समतल है तो इसको कम जो है

0: जल की आवश्यकता होगी, अच्छी फसल का उत्पादन होगा और खेत में जो खरपतवार हैं उनको भी नष्ट करके खेत को साफ कर लें।
1: और उन्नत बीज का चुनाव भी महत्वपूर्ण।
0: हाँ, दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बीज का चुनाव। बीज जो है वो प्रमाणित होना चाहिए और उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, और बीज को बोने से पहले फफूंदनाशक और जैव उर्वरकों से चारित अवश्य करना चाहिए।
1: समय से बुआई भी तो महत्वपूर्ण है डॉक्टर
0: हाँ,
1: साहब।
0: बुआई भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश ये करनी चाहिए कि मानसून की शुरुआत में ही फसल की बुआई कर ली जाए, और फसल की बुआई करते समय जो
1: यानी
0: आपका
1: मौसम का
0: मौसम का
1: पूर्वानुमान।
0: पूर्वानुमान आता है उसको दृष्टिगत रखते हुए फसल की बुआई करनी चाहिए। यदि समय पे आप बुआई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको अधिक समय तक फसल के लिए नमी मिलती रहेगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
1: डॉक्टर साहब, खरीफ चूंकि मानसून सीजन होता है तो पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण भी तो महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, इसके लिए किसान भाइयों एवं बहनों को अपने खेत में मेड़बंदी करनी चाहिए। खेत, तालाब एवं वर्षा जल संचयन को अपनाना नितांत ही आवश्यक है। ढाल वाले क्षेत्रों में कंटूर बंडिंग करनी चाहिए और नमी संरक्षण हेतु मल्चिंग का भी उपयोग करना आवश्यक है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और खरीफ तैयारी के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र धौरा उन्नाव आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-51-39-62-34, 9-4-51-39-6-2-3-4, 94-51-39-62-34।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं किसान भाइयों बहनों का मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन और खरीफ तैयारी के बारे में डॉक्टर साहब?
0: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। मैं सभी किसान भाइयों एवं बहनों से यही आग्रह करूंगी कि इस अभियान से आप सब जुड़िए, वैज्ञानिक सलाह के अनुसार सही उर्वरक सही मात्रा में सही समय पर सही तरीके से अपनाकर संतुलित पोषण द्वारा समृद्ध खेत एवं खुशहाल भविष्य बनाइए तथा धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए।
1: डॉक्टर अर्चना सिंह, आज आप कार्यक्रम में आई और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन और उसके बाद खरीफ की तैयारी कैसे करें इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आत्म प्रकाश भैया,
3: हाँ राजेश भैया, बहुत बढ़िया जो बातचीत रहा है उसे हम पंचन का सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि माटी के स्वास्थ्य के बारे में है, समय पर का करे के यहाँ है, ये सब चीज़ें बताएं। खरीफ की तैयारी कैसे करी इके बारे में है बताएं डॉक्टर अर्चना सिंह बहनी, और इनसे बात कही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो इतनी बढ़िया बातचीत खातिर ही दोनों पंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, हम सब जने जानी थे कि जब हमारे खेती पाती बढ़िया होते तो सभी क्यार मन करते कि कहूँ घूम टहल लियाओ, कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि आनंद आवे जीवन क्यार। तो वे आनंद क्यार सबसे बड़ा जो साधन अपनी बैठकी में है वही है कि हम पंच गीत गौनई करके आनंद ले ली थे। और जौन गौनई आज भैया लाए हैं हम पंच, तो वह मैं घूमे टहले वाली बात है, लेकिन हम पंच ना घूमे टहले जा रहे
2: अच्छा
3: हैं।
2: अच्छा
3: जब राम सीता घूम के आए यानी कि टहले खातिर बनका निकल गए, अब वो उनके लिए तो टहले भी रहे, हम पंच
2: अच्छा
3: जानी थे कि वो वन का चले गए रहे, और जो अयोध्या वासी रहे वे बहुत परेशान रहे कि कैसे हुआ कटी, लेकिन उनके लिए तो सब एक जैसा रहे। तो वो जो एक मार्मिक दृश्य रहा है गंगा किनारे क्यार केवट
2: अच्छा
3: क्यार हट रहा है,
2: अच्छा
3: वह अपनी स्वर में है रूपाली श्रीवास्तव बहनी सुना रही, और सुना जाए आनंद लीन जाए।
2: बिल्कुल भैया, सुना जाए।

0: आत्म प्रकाश भैया।
1: हाँ राजेश भैया,
0: देखो गौनाई तो हुई गई, ठीक है।
1: हाँ
0: अब ये के बात जो बात बात आवत है, वो
1: हाँ
0: अपन खेती किसानी में सबसे जरूरी होता है वो मौसम। कहे
1: सही
0: थे
1: बात,
0: मौसम आधारित जो है खेती पाती रहा थे। तो जो मौसम हमें आज प्राप्त हुआ है, भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से, जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का, मतलब आज से लेके 8 तारीख तक का, ठीक है।
1: हाँ
0: तो भैया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कहीं कहीं गरज चमक के साथ में बौछार पड़ेगी संभावना है, मतलब कि आज से लेके 6 तारीख तक, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति बनी रही है। और बात की जाए जो मतलब कि चेतावनी है, फिलहाल
1: हाँ
0: विशेष कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहा है जो कि अगर मौसम कुछ परिवर्तित होते है, क्योंकि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है।
1: तो भैया यही हिसाब से हमका अपन जन अपनी खेती पाती के योजना बनावे के है, यही हिसाब से बाहर जाए के योजना बनावे के है, और अगर कोनो हाट बाजार के योजना है तो वह खातिर संभरे रह के कि बरसे के तो संभावना है न, तो साथ में आए एक छतरी उतरी लेके निकले, ऐसे न जाए पता लाग नहीं वैसी जो शक्कर लेके आई हो तो वह तो रास्ते में भीजे के स्थिति बन सकत है।
0: बिल्कुल भैया, कहे से कहा जाए कि एक आंख अपनी खेती किसानी पर रखे कि एक आंख अपनी जो बाजार पर।

0: रखा है, यानी कुल मिला के अपनी बाजार का भी
1: तो
0: ध्यान रखते
1: भैया
0: हैं क्या?
1: छतरी तो घर से ले ही है, लेकिन कौनी बाजार जाए का यू तब निश्चित कर पे हैं जब सही बाजार भाव उनका मालूम हो।
0: बिल्कुल भैया, तो भैया बाजार भाव बता दीजिए जाए।
1: हाँ, अपने पास चार बाजार के और थोक मंडी भाव है, जिसे कि हमारे पंच भाई पता लगा ले हैं कि उनका कौनी बाजार से खरीदेगा वो कहाँ बेचे के यहाँ है।
0: बिल्कुल भैया।
1: देखो गेहूं दड़ा के और जो थोक बाजार भाव है, लखनऊ में 2,590 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,585 रुपया, गोंडा में 2,523 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में 2,585 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल भैया सही कह रहे हो कि बात की जाए चावल की कामन की, तो लखनऊ मंडी का 3,450 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर का 3,350, गोंडा का 3,040 रुपया और अयोध्या मंडी का 3,020 रुपया प्रति क्विंटल।
1: और चना छोटा लखनऊ में 6,650, कानपुर में 6,380, गोंडा में 6,750 और अयोध्या में 6,400 रुपया प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से बात की जाए मटर की सफ़ेद की, और तो लखनऊ मंडी का 4,430 रुपया, कानपुर मंडी का 4,530 रुपया और गोंडा मंडी का 4,200 रुपया, और बात की जाए अयोध्या मंडी का तो 4,250 रुपया प्रति कुंटल।
1: भैया सरसों काली लखनऊ में 6,700 रुपया, कानपुर में 7,180 रुपया, गोंडा में 6,450 रुपया और अयोध्या में 6,600 रुपया प्रति क्विंटल।
0: भैया बात की जाए मीठे में तो गुड़ पारी की, तो लखनऊ मंडी का 4,660 रुपया, कानपुर का 4,250 रुपया प्रति कुंटल।
1: अब बात की जाए सब्जी मंडी के, तो आलू जो है वो 730 रुपया प्रति क्विंटल है लखनऊ में, कानपुर में है 600 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 875 रुपया और अयोध्या में 715 रुपया प्रति क्विंटल।
0: अब भैया बात की जाए बैंगन की, तो बैंगन लखनऊ मंडी का 1,850 रुपया, कानपुर का 1,600 रुपया और बात की जाए गोंडा मंडी का तो 1,420 रुपया और बात की जाए अयोध्या मंडी का 1,250 रुपया प्रति क्विंटल।
1: प्याज लाल लखनऊ में 1,300 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,280 रुपया, गोंडा में 1,300 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में 1,200 रुपया प्रति क्विंटल।
0: ये तो रहा भैया बाजार भाव।
1: और अब भैया अपनी बैठकी में हाँ विशेष रूप से हम पंच बताए थे कि अगले दिन का होने वाला है और मंगल के बाद के जो कल का कार्यक्रम होते वो खास होते, क्योंकि बुधवार के यहाँ होते हेलो किसान कार्यक्रम, जो कि किसानन खातिर सजीव फोन इन कार्यक्रम होते। इमा हम पंच सभी जने बैठे थे बैठकी में, और जितने हमारे किसान पंच सुनैया हैं वे सब फोन करते हैं, अपने जो सवाल होते हैं उनके जवाब विशेषज्ञ से पावत हैं। तो काल जो बात करे खातिर विषय है वो है
0: खरीफ उत्पादन की उन्नत तकनीक, धान की उन्नत प्रजातियां और नर्सरी प्रबंधन, धान की सीधी बुआई तकनीक, जो कल के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह, वरिष्ठ प्रसार निदेशालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से, जिनका संचालन कल करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: हाँ भैया, कार्यक्रम का संचालन और प्रस्तुति है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के। और बात करे खातिर फोन नंबर सब है पंचन के याद है, लेकिन दोहरियाओ तो हमारी जिम्मेदारी है न
0: बिल्कुल
1: है,
0: भैया।
1: तो भैया नंबर फिर से समझ लें कि 0522-2238-825। हाँ भैया 0522-2238-825 ई नंबर पर फोन करके अपने सवालन के जवाब पा सकते हैं। कोशिश यह करें कि जो विषय निर्धारित होते वह से संबंधित सवाल पूछें, वह से संबंधित अपनी शंका के और समाधान ढूंढें तो अच्छा रहा थे। और जौन पंच भाइन के यहाँ फोन करे में यहाँ कई बार यू होते कि फोन करें बार बार मिलाएं, लेकिन लाइन व्यस्त होए के वजह से ने ना मिल पाओ थे फोन, तो उसकी खातिर हमका पाती लिख सकते हैं, अपनी पाती से भी अपनी शंका कहाँ व्यक्त कर सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं, या फिर अपने मन में कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप भेज सकते हैं। पाती लिखे खातिर पता है लोकायन खेती किसानी, लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। और इसके अलावा भैया जोन डिजिटल पाती लिखे के यार पता है, यानी कि ईमेल करे के यार जो कोड है या ईमेल क्या पता है
0: इलेक्ट्रॉनिक मेल
1: वो
0: भेजा
1: है,
0: जाता है भैया।
1: ईमेल आईडी है farmandhome@lucknow.com।
0: भैया जो ईमेल आईडी है एक बार फिर से अपने पंच नोट कर लें,
1: हाँ
0: FARMAND@HOME@LKO@gmail.com, यही पर अपना मेल भेज के अपनी तुरंत मतलब कि समाधान कर सकते हैं जो अगर समस्या हो रही है।
1: बिल्कुल भैया। और इके साथ साथ देखो हम पंच यू हमेशा जानी थे कि बैठकी में जुड़े रहे सने बहुत सारी चीज़न के हमका जानकारी मिलत रहा थे। अच्छा अपन खेती जो है वह सीधे सीधे आजकल तकनीक और विज्ञान से जुड़ी भई है।

0: बहुत सारी चीज़ें हम पंच देखे थे कि बैठकी में विशेषज्ञ बतावत हैं या फिर हमका किसी अन्य माध्यम से मीडिया के माध्यम से ने जानकारी मिलत है। खास तौर से ने यूँ देखे थे कि यूँ एक विविधता के और समय चल रहा है।
1: बिल्कुल भैया सही कहो, काहे से आप जैसे तकनीकी की बात की हो, तो कभी कभी हमारे पास पड़ोस में एक चाचा रहते हैं ना, वो किसान कॉल सेंटर नंबर मिलाए के पूछ लेते हैं, यानी 1800 180 1551 नंबर मिलाए के।
0: सही कहो भैया। तो ई जब इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, इतना ज़्यादा संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हमको पंचन का अपनी खेती में भी अलग अलग तरह के लिए चीज़न के यहाँ शामिल करे चाहिए। जैसे कि कहा थे विशेषज्ञ कि कृषि के यहाँ विविधीकरण करे चाहिए, और विविधीकरण के माध्यम से हम पंच अपनी खेती के यहाँ चार चांद लगा सके थे कि जो किसानन के आमदनी दुगनी हो, क्या हमार पंचन के लक्ष्य है या जो हमार पंचन के मुहिम है, वह तभी सफल हो सकत है जैसे हम खेती के साथ पशुपालन करी थे,
1: हाँ
0: मुर्गी
1: या मछली
0: पालन,
1: पालन
0: मछली
1: है,
0: पालन और भी
1: बहुत
0: बहुत
1: सारे
0: सारी चीज़ें
1: व्यवसाय
0: हैं, तो
1: हैं
0: उनका
1: जिनसे।
0: कर सके थे। तो यूँ करत रहे सने हमका निश्चित रूप से हमारी आमदनी में है बढ़ोतरी हुई, और हम पंच अपनी बैठकी में जब जब जुड़बा तो अपन अनुभव साझा करके एक दूसरे के यहाँ आगे बढ़ावे में मदद करीबा।
1: बिल्कुल भैया सही कहे हो, काहे से मदद और भी रहा था, अगर मदद ज़्यादा ले गई तो भैया कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से भी लेके आप अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हो
0: बिल्कुल
1: ना।
0: भैया। तो ये सब चीज़न के यहाँ हम पंचन के यहाँ जोड़े रखे के यार बहुत अच्छा संसाधन है, और इनसे जुड़े रहत वे हम पंच और चाहे थे कि और बातें करी, बोल
1: हाँ
0: देखो आज समय पूर्ण हो रहा है तो पंचन से लीन जाए अनुमति।
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम लोकायत तनवा खेती किसानी। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: सोच रहा
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए कार्य कर रही है।
7: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

0: विद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं, उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
1: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने CBSE के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
3: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
1: मुख्य सचिव SP गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 9

0: 718 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
2: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनू और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ज्येष्ठ माह के पांचवें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का।

आइए श्रोताओं कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म नरसिम्हा का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज दी है अलका याग्निक और अमित कुमार ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म जान का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो, नमस्कार, मैं एना कर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूं।
2: तो इससे पहले कार्यक्रम में आगे बढ़े, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर लिख लें। फोन नंबर है
1: 8826224477। जी हाँ, 8826224477।
3: श्रोतो, आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी। कहानी उस बदलाव की है जो हर बच्चे के जीवन में एक दिन आता है। कभी कभी समय से पहले आता है तो कभी कभी समय के बाद, जिसे हम कहते हैं अर्ली पुबर्टी, यानी जब बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा होना शुरू कर देता है। 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या हार्मोनल बदलाव आने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? गलत खानपान से, मोबाइल व टीवी की आदतों से, या तनाव व सामाजिक डर से। पर सच यह है, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि अगर माता पिता, शिक्षक व समाज मिलकर समझ दिखाएं, तो हर बच्चा ये बदलाव बिना डर और लज्जा के स्वीकार कर सकता है। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी में सौंधी खुशबू है पर सोच अब भी पुरानी है।
4: राधा बेटा, सुबह से फिर वही कार्टून लगा लिया, थोड़ा बाहर भी खेल लिया कर, धूप भी जरूरी होती है।
5: माँ,

0: गर्मी है, मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं वीन देख रही हूँ, फिर चिप्स खाकर स्कूल जाऊंगी।
1: हर रोज वही टीवी, मोबाइल और बाहर खेलने से परहेज। फिर कहती है सिर दर्द करता है, ना फल खाना है ना दूध पीना है, बस बिस्किट, चिप्स, नमकीन और कुरकुरे और नूडल्स, यही खिलाओ।
0: अरे माँ, स्कूल में भी ना सब यही खाते हैं और मुझे भी ना यही अच्छा लगता है। माँ, माँ जल्दी आओ।
1: क्या हुआ राधा बेटा, गिर गई क्या? ये खून कहाँ से आया?
0: माँ मुझे नहीं पता, मैं तो बस बाथरूम गई थी, पर कपड़ों पे ही ये लाल निशान, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
1: हे ईश्वर, ये तो मुझे वो बात लगती है, पर इतनी छोटी उम्र में, बस 9 साल में ही।
0: कौन सी बात माँ, मैं क्या बीमार हूँ?
1: नहीं, बीमार नहीं, बस अब ना तू बड़ी हो गई है, अब बाहर खेलने मत जाना और किसी को बताना मत।
0: पर माँ, मैं गंदी क्यों हो गई हूँ? कल तक तो सब ठीक था, आज ऐसा क्या हो गया?
1: अरे गंदी नहीं हुई बेटा, पर अब कुछ बातें बदल गई हैं। तू स्कूल मत जाना कुछ दिन, मैं सविता दीदी से पूछती हूँ कि क्या करना है। कौन है?
2: मैं हूँ सविता।
1: आओ सविता दीदी, अंदर आओ। बस राधा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं भेजा मैंने।
2: अरे क्या हुआ राधा को, बुखार तो नहीं है?
1: वो असल में राधा को ना वो बस हो गई है, मतलब पीरियड। पर दीदी ये तो बहुत जल्दी है ना, अभी तो वो 9 साल की है।
2: हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता, इसे कहते हैं अर्ली प्यूबर्टी, समय से पहले यौवन आना, आजकल बालिकाओं में ये देखने को मिल रहा है।
1: पर इतनी जल्दी कैसे, हमारे समय में तो 14-15 साल में होते थे।
2: बिल्कुल सही, पर वक्त बदल गया है दीदी, हमारे बच्चों का खान पान, जीवन शैली, माहौल, सब कुछ बदल गया है। बच्चे अब बाहर कम खेलते हैं, मोबाइल टीवी ज्यादा देखते हैं, जंक फूड, चिप्स, बर्गर, नूडल्स, बस यही इनकी जिंदगी है। बस इसी वजह से जो उनमें केमिकल होते हैं वो शरीर को जल्दी बड़ा कर देते हैं, मतलब ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा बढ़ा देते हैं।
1: तो इनके खाने से बदलाव जल्दी आता है?
2: हाँ, सिर्फ खाना ही नहीं, कई बार शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव, नींद की कमी, ये सब भी असर डालती हैं। टीवी या मोबाइल की रोशनी से भी शरीर के हॉर्मोन्स प्रभावित होते हैं, और परिवार में अगर किसी को जल्दी पीरियड्स हुए हैं तो ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है।
1: हे ईश्वर, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतनी बड़ी बात है। राधा तो हमेशा घर पर ही रहती है, बाहर खेलने भी नहीं जाती है, बस मोबाइल, कार्टून, चिप्स, यही सब पसंद है उसे।
2: कोई बात नहीं सीमा जी, आप अब समझ गई ना, जो सुधार करना है वो अब हो सकता है, जब समझ जाते हैं तो सुधार करना भी आसान होता है। राधा को डराने की नहीं, समझाने की जरूरत है, उसे बताइए ये बीमारी नहीं है बल्कि उसके शरीर में प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं।
1: और दीदी मैंने तो उसे कह दिया कि मंदिर मत जाना, गलत कहा क्या मैंने?
2: सीमा जी ये सब पुरानी बातें हैं, लड़कियां गंदी नहीं होती, उस समय बस उन्हें साफ सफाई, सैनिटरी पैड का सही इस्तेमाल और संतुलित आहार की जरूरत होती है। और हाँ, राधा को दूध, हरी सब्जियां, फल, सुबह शाम थोड़ा खेल कूद, ये सब करना बहुत जरूरी है, आप समझाएं उसे।
1: सही कहा दीदी, मैं खुद डरी हुई थी।
2: माँ अगर समझेगी तो बेटी डरेगी नहीं, गर्व से बढ़ेगी।
3: क्या बात है सीमा, आजकल राधा दिखाई नहीं दे रही है, कहीं स्कूल से भागने की आदत तो नहीं पड़ गई इसको?
1: नहीं नहीं काका, वो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी।
3: छोटी सी उम्र में बीमारी, अब राधा बड़ी हो गई है।
2: गोपाल काका ऐसी बातों का मजाक नहीं उड़ाया करते, ये कोई हंसी

0: की बात नहीं है, समझ की बात है।
1: अरे सविता बेटी, मैं तो यूं ही मजाक में बोल देता हूँ, मुझे क्या पता कि बात इतनी गंभीर है।
0: गांव में जब भी किसी लड़की के साथ ऐसा बदलाव होता है तो लोग चुप रहते हैं या मजाक उड़ाते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा उस बच्ची पर क्या बीतती होगी?
1: ये बात तो आप सही कह रही हैं। हम तो हंसी में कह देते हैं, पर बच्ची को तो डर लगा रहता होगा।
0: बिल्कुल, राधा सिर्फ 9 साल की तो है, ये बदलाव प्राकृतिक है, पर उम्र से पहले आए तो हर किसी को डर लगता है। इसकी वजह कोई किस्मत नहीं, हमारी जीवन शैली है।
1: जीवन शैली मतलब?
0: मतलब आजकल के बच्चे जो बाहर खेलते नहीं हैं, बस दिन भर घर पे रहते हैं, मोबाइल टीवी यही इनकी जिंदगी बन गई है। पूरे समय बाहर का खाना खाते हैं, फैक्ट्री वाला खाना खाते हैं जिनमें रसायन होते हैं, और वो हमारे हॉर्मोन्स को जल्दी बढ़ा देते हैं जिससे हमारा शरीर जल्दी बड़ा दिखने लगता है।
1: अरे ये तो हमें कभी बताया ही नहीं गया, हम तो सोचते थे ये ईश्वर का खेल है।
0: ईश्वर ने शरीर बनाया है, पर हमें दिमाग तो दिया है ना काका, समझने के लिए। अगर समय से पहले ये बदलाव दिखें तो डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है।
2: मैं भी डर गई थी पहले, मुझे लगा कुछ अब शगुन हो गया, पर दीदी ने समझाया तो अब मन शांत हुआ है।
1: बेटा तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, बल्कि गांव की और लोगों को भी बताऊंगा। यह शर्म की बात नहीं, ज्ञान की बात है।
0: यही तो चाहिए था काका, अगर गांव में बड़े लोग समझ जाएं, तो लड़कियां भी बिना डर के जी पाएंगी। नमस्ते भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ एक बहुत जरूरी विषय पर बात करने आए हैं, समय से पहले यौवन, जिसको हम अर्ली प्यूबर्टी भी कहते हैं। आप सबने देखा होगा कई बच्चियां जो 8-9 साल की उम्र की है, उनमें ऐसे बदलाव आने लगते हैं, शरीर का बढ़ना, स्तनों का विकास, मासिक धर्म शुरू हो जाना। पहले ये 13 से 14 साल की उम्र में होता था, पर अब जल्दी हो रहा है। आप जानते हैं क्यों?
3: क्यों
2: क्यों
3: क्यों
2: क्यों?
0: क्योंकि हमारे बच्चों की जीवन शैली, खान पान, दिनचर्या पहले से बहुत बदल गई है।
4: दीदी इसका इलाज क्या है?
0: देखिए, इलाज से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और समय पर सलाह। अगर आपकी बच्ची जल्दी बड़ी होने लगे या उसके शरीर में जल्दी बदलाव दिखे, तो सबसे पहले डरिए नहीं, शर्माइए भी नहीं, बल्कि डॉक्टर या आशा से बात करिए। साफ सफाई रखिए, पौष्टिक खाना दीजिए और भावनात्मक सहारा दीजिए।
1: अगर दीदी कोई मजाक करे
0: तो उसे समझाइए काका, ये बीमारी नहीं है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। लड़कियों को शर्म से नहीं, आत्मविश्वास से जीना सिखाइए। अगर हर घर में माँ बाप खुलकर बात करेंगे तो कोई राधा फिर ना डरेगी और ना रोएगी।
5: दीदी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बेटा जरूर बोलो।
5: जब मुझे वो पहले हुआ था तो मुझे बहुत डर लगा था, माँ ने कहा बाहर नहीं जाना, बाहर मत खेलना, पर मैं अब जाती हूँ, मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस बड़ी हो रही हूँ और बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि दूसरी लड़कियों को भी डरना ना पड़े।
2: राधा मेरी बेटी है और मुझे तुम पर गर्व है, मैं भी हर माँ को यही बताऊंगी कि बेटी को डराए नहीं, समझाए।
1: अरे भाई अब तो मैं भी गांव में सबको बताऊंगा कि वो कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि जीवन का नियम है।
0: यही तो असली बदलाव है, जब एक माँ, एक बच्ची और एक काका तीनों मिलकर सोच बदल दें, तो पूरा गांव बदल जाता है। हर माँ बाप, हर काका, हर बहन, हर भाई से मेरी यह गुजारिश है, अगर आपके पास कोई बच्ची या बच्चा उम्र से पहले बदलाव से गुजर रहा है, तो उन्हें डराए नहीं, उन्हें छुपाए भी नहीं, पर समझाए और अपनाए। बच्चों को ये खुलकर बताइए कि यह बदलाव प्राकृतिक

0: और उनका शरीर सुंदर व सामान्य है।
1: अब मैं राधा को हर बात खुले दिल से बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर माँ अपनी बेटी से ऐसे ही बात करे, प्यार से, विश्वास से।
2: मुझे अब शर्म नहीं आती है, क्योंकि अब मुझे पता है बड़ी होना कोई गलती नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है।
3: और हाँ, अब मैं गांव में किसी भी बच्चे पर हंसूंगा नहीं।
4: दोस्तों, राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं, बल्कि समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं, बल्कि समझें और संभालें। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दें, तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए,

0: अब मैं गांव में किसी भी बच्ची पर हंसूंगा नहीं।
1: दोस्तों, राधा की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, उन हजारों की है जो अचानक हुए बदलाव से घबरा जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहले से तैयार ही नहीं किया। अर्ली पुबर्टी यानी शरीर का जल्दी बदलना कोई डर की बात नहीं, बल्कि समझ की मांग है। जब किसी बच्चे में 8-9 साल की उम्र में ही शारीरिक या मानसिक परिणाम आने लगते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम डरे नहीं, बल्कि समझे और संभाले। हमारे खान पान में रसायन, हमारी भाग दौड़ की दिनचर्या में बदलाव, बच्चों का टीवी व मोबाइल पर रहना और तनाव भरा माहौल, ये सब मिलकर इस बदलाव को जल्दी ला सकते हैं। पर अगर माता पिता ध्यान दे तो यही बदलाव स्वस्थ और सामान्य बन सकता है। याद रखिए, बच्चे तब नहीं डरते जब शरीर बदलता है, वे तब डरते हैं जब बड़ों की चुप्पी उन्हें अकेला कर देती है। अगर हम अपने बच्चों से प्यार से खुलकर बात करेंगे तो वो हर सवाल, हर डर हमसे साझा करेंगे, और यही है असली शिक्षा। तो आइए आज से ही एक नया प्रण लें कि हर घर में समझ की बात होगी, शर्म की नहीं। हर बच्चा अपने शरीर को डर से नहीं, सम्मान से देखेगा, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को समझ देंगे तो उनका बचपन नहीं छिनेगा, बल्कि मजबूत और आत्मविश्वास से भरा भविष्य बनेगा। बदलाव रुक नहीं सकता, पर समझ उसे सुंदर बना सकती है।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
4: हिंदी कार्यक्रम के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। बदलते परिदृश्य में शिक्षा और इसके विभिन्न माध्यम, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ की उपनिदेशक रीना चौधरी। आपसे बातचीत कर रहे हैं सुभाष खन्ना।
5: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, इसे हम जब आदिकाल से देखते हैं, तब हम कहीं किसी गुरुकुल में, कहीं ऐसे जगह पर, कहीं शांत जगह पर जाकर किसी गुरु के समीप हम शिक्षा लेते थे। बदलते परिदृश्य में ये माहौल बदला है, या यूं कहें ये परिदृश्य बदल गया है। आज जब हम बहुत भौतिकवादी हो गए हैं, हर व्यक्ति बिल्कुल समय को पीछे छोड़ना चाहता है। वो काम कर रहा है, वो ढेर सारी चीज़ें सीख रहा है, ढेर सारी उसके पास अपनी बाधाएं हैं, चाहे वो विवशता में हो, चाहे वो ऐसी स्थिति में हो, दूर दराज में रह रहा हो, या वो ग्रेडी है, अपने किसी और कार्य में व्यस्त है, पर उसके अंदर ये इच्छा है, वो लगातार शिक्षा लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ढेरों कई उसके शिक्षा संबंधी बाधाएं भी हैं, उस विषय में नहीं है, उस विषय से जुड़ा नहीं है। कई बार वो गैप हो गया है कि भाई शादी हो गई, या कहीं हम काम में लग गए, 2-4-5 साल का गैप हो गया है, वो शिक्षा कैसे ले सकता है, कहाँ वो माध्यम है, कब एडमिशन ले सकता है, ये ढेर सारी बातें कई बार हमारी शिक्षा में बाधा होती हैं, कई बार हमें रोकती हैं, और कई बार इसकी अज्ञानता भी होती है और हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते, या यूँ कहें कि हमें लगता है कि शायद हम योग्य नहीं हैं आगे शिक्षित होने के लिए। ये ढेर सारी बाधाएं आजकल कई माध्यमों ने दूर की है, कई विश्वविद्यालयों ने दूर की हैं, ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब ये क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आइए इसी विषय पर जानकारी लेते हैं रीना चौधरी जी से। आप उपनिदेशक हैं इग्नू में, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में। बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में मैम।
6: बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय चुना है। वास्तव में आज जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, या जिनकी शिक्षा में गैप हो चुका है
5: जी,
6: ऐसे लोग भी, ऐसे युवा भी, और किसी भी उम्र के वो लोग हो सकते हैं
5: जी, जी,
6: उम्र उनकी शिक्षा ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं बन सकता है। तो ये उनके लिए प्लेटफॉर्म हो सकता है दूरस्थ शिक्षा का,

0: जिसे कि हम कहते हैं ओडीएल लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। इसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से भी ये शिक्षा को ग्रहण करने के इच्छुक लोग जुड़ सकते हैं। और इसमें इतनी वैरायटी है कोर्सेज की कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किस फील्ड में उनको जाना है, एग्रीकल्चर के फील्ड में उन्हें जाना है, एजुकेशन के फील्ड में उन्हें जाना है, सोशल साइंसेज के फील्ड में जाना है या साइंस के फील्ड में जाना है। कई बार क्या होता है कि उसकी मिनिमम परसेंटेज के कारण परसेंटेज कम था, कॉलेज में सीट्स का लिमिटेशन था, तो उस समय वो अपना ग्रेजुएट नहीं कर पाया। तो इस समय ओडीएल सिस्टम से जुड़कर ऐसे युवा, ऐसे लोग अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, भले ही उनका परसेंटेज कम हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड नहीं होते हैं। जबकि रेगुलर मोड में आप देखेंगे, जो रेगुलर मोड के विश्वविद्यालय होते हैं उसमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होने के कारण बहुत सारा युवा ऐसा है जो कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का, ऑनलाइन लर्निंग का होता है। और यदि मैं फिर से आपको इसमें बताऊं कि यहां कोई, यदि किसी ने ग्रेजुएशन में कोई विषय नहीं पढ़ा है लेकिन उसमें मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मास्टर्स करने के लिए भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक महत्वपूर्ण मोड हो सकता है। किसी कोई युवा है जिसने कि हिंदी विषय को, हिंदी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदी विषय को उसने स्नातक स्तर पर नहीं पढ़ा और उसमें मास्टर डिग्री करना चाहता है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है
1: जी, कि यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं इसमें
0: इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का विश्वविद्यालय राजर्षि ओपन टंडन यूनिवर्सिटी है जी, तो जी, इस प्रकार से इन विश्वविद्यालयों से जुड़कर वो अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विशेषताओं के अंतर्गत क्या है कि स्टडी मटेरियल उनके घर के एड्रेस पर भेज दिया जाता है, इसके अलावा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी उपलब्ध रहता है, तो वहां से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से घर में रहकर या अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी में काम करते करते उसके साथ ही अपनी डिग्री को हासिल कर सकते हैं, और जो उनका सपना है उच्च शिक्षा में डिग्री हासिल करने का, उसे प्राप्त कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: जी, जी, एक और सवाल रहता है, बहुत बार युवा इस बात से भी घबराता रहता है कि शायद हम जब इतनी जो है इंटरडिसिप्लिनरी हो गए या हमारे स्वरूप में शिक्षा हमें मिल जा रही है, तो क्या उसकी मान्यता है, क्या वो उतने मानक पर खरा उतर रहा है, हम कहीं और नौकरी करना चाह रहे हैं, किसी के इक्विवेलेंट डिग्री क्या उसी के बराबर होगी जो नॉर्मल रेगुलर एजुकेशन में थी?
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और वास्तव में जो ये जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी होता है मान्यता से संबंधित। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा भी ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, कोई भी पाठ्यक्रम जो किसी भी छात्र छात्रा या विद्यार्थी के द्वारा वो रेगुलर मोड से किया गया है या ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से किया गया या ओडीएल मोड के माध्यम से किया गया है, इन तीनों की डिग्री ही समान है, एक पार है। और इसके अलावा जो विश्वविद्यालय या कॉलेजेस ब्लैक लिस्टेड होते हैं उनकी लिस्ट भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है, तो जब भी हमारा युवा किसी विश्वविद्यालय को ज्वाइन करता है तो वो वहां पर चेक कर सकता है।
1: जी, मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो यूजीसी की साइट है आप वहाँ जाएं, वहाँ चेक करें, और साथ ही साथ मैम ने जो दूरस्थ शिक्षा माध्यमों की बात की है, आप वहाँ जाकर एडमिशन लें और उससे संबंधित जानकारी लेकर आप अपने कोर्स में जिसमें आप शिक्षित होना चाहते हैं, जिसमें आप विकसित होना चाहते हैं, स्किल लेना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लें और खुद का विकास करें, शिक्षित बने, जिससे आप रोज़गार पा सकेंगे, अच्छा रोजगार पा सकेंगे, या खुद में उसका नॉलेज रख सकेंगे, अपने जीवन को सुधार सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
2: बदलते परिदृश्य में शिक्षा और इसके विभिन्न माध्यम, इस विषय पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय लखनऊ के उपनिदेशक रीना चौधरी के साथ बातचीत कर रहे थे सुभाष खन्ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है जो लोग किसी कारण से भी शिक्षा से वंचित हुए हैं। इग्नू की जो विशेषता है, खासतौर पर दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, भारत और विदेश में अध्ययन केंद्र UGC और AICTE से मान्यता प्राप्त है, लचीला प्रवेश है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिल जाता है, जो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं वो प्रमाण पत्र है, डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है, स्नातक है, BA, BSc, BCom, स्नातकोत्तर है, MA, MSc, MCom, MBA, MPhil और PhD भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नौकरी के साथ पढ़ाई संभव है, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए तो बहुत ही उपयुक्त है, कम शुल्क में उच्च शिक्षा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इग्नू उन विद्यार्थियों के लिए विश्वसनीय और प्रभावी शिक्षा मंच है जो समय, स्थान या आर्थिक कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा सकते।

0: अब इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का ये अंक यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी लखनऊ है।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
5: 870-001-4242।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी लखनऊ है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सुगम संगीत के अंतर्गत प्रगति राठौर के स्वर में गीत व भजन। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रगति राठौर के स्वर में गीत व भजन। कार्यक्रम था सुगम संगीत।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम है चित्रपट से।

श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम है चित्रपट से। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम था चित्रपट से। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए।

0: हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
4: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
5: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
4: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू

0: चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 branches also।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
4: बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया।

0: भारद्वाज को सीबीएसई में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Government forms panel to probe into procurement of services for on-screen marking system by CBSE. Appoints Lokhande Prashant Sitaram as CBSE chairperson. India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 international at Taunton tonight. And now the news in detail. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. The OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. In another development, Senior IAS Officer Lokhande Prashant Sitaram has been appointed as the new Chairperson of the CBSE. Mr. Sitaram was earlier serving as an Additional Secretary in the Home Ministry. His appointment was made in place of Rahul Singh, who has been transferred to the Department of Agriculture and Farmers Welfare as Additional Secretary. The government has also appointed Varun Bharadwaj as Secretary in the CBSE. His appointment has been made in place of Himanshu Gupta, who was serving as the Secretary in CBSE. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books.
2: Soon the portal was made live. Malicious actors attempted to disrupt services through a barrage of cyber attacks. The CBSE said that the most recent being a denial of service attack attempt causing 1.5 million hits on the portal within a matter of 2 minutes and more than 1 lakh attempts of unauthorized file access. The board said that its teams remain vigilant and responsive to ensure that the students are facilitated in all ways possible. Based on students' feedback, CBSE has further refined the platform, including extending session time limits to make the process more convenient and seamless. The CBSE said

0: between India and hosts England will be played at Taunton tonight. The match will begin at 11 p.m. Indian time. The series is levelled at 1-1. Unified Payments Interface UPI has achieved 23.2 billion transaction counts in the last month. In a social media post, the Department of Financial Services thanked these citizens for embracing digital payments. UPI has emerged as world's largest real-time payments platform, anchoring country's digital economy. The India Meteorological Department, or IMD, has issued an orange alert predicting thunderstorm conditions over Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh tomorrow. The weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall over Andaman Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Karnataka, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Saturday. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government forms panel to probe into procurement of services for on-screen marking system by CBSE, appoints Lokhande Prashant Sitaram as CBSE chairperson. India rejects third-party involvement in resolving boundary matters with Nepal. India successfully flight tests indigenous Rudram 2 air-to-surface missile. Prasar Bharati's Waves OTT crosses 1 crore users within 2 years of launch. 21 people killed in Russian strikes across Ukraine. And in women's cricket, India to take on hosts England in third and final T20 International at Taunton tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है. हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है. भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है. भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है. प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज़ के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है. यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं. और ख्वातीन क्रिकेट में आज रात टॉन्टन में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावामी मैच में भारत का मुकाबला मेज़बान इंग्लैंड से होगा. अब खबरें तफसील से. हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी है. कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी. कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है. तलबा को फराहम करदा स्कैंड कापियों में पाए गए मामलात के वेरीफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच जारी है. ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की हैं. तफसील हमारे नामनिगार से.
2: शरपंसन अनासर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद CBSE पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है. ताहम CBSE ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है. CBSE ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज़्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके. CBSE ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज़्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है. सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने बताया है कि 16,000 से ज़्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं. CBSE का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी. नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान.
1: इस दौरान सीनियर IAS अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है. जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे. उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है. हुकूमत ने वरुण भारद्वाज

0: को भी सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुद कफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मानी में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबायलियों की ज़िंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौक़े तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फ़रोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिर ख़ा तब्दीली लाई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। आज ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख़वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौक़े, माली शमूलियत और क़्यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में शुरू की गई थी ने लाखों ख़वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे उसत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं, जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख़वातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर ख़वातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स ख़वातीन के नाम हैं। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ेकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर ज़रूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा

0: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली। तो भाई श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा ये कार्यक्रम आधारित है आप जो हमें कॉल करेंगे और आप हमारे साथ होंगे कनेक्ट, साथ ही साथ होंगी आपकी ढेर सारी फरमाइशें जो कि आप सुनवाना चाहेंगे अपने किसी लव वंस को, अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। तो भाई आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0522223885 पर फोन नंबर वही है और ये भी मुझे पता है हमारे सभी श्रोताओं को याद भी है। तो भाई लगातार आपके कॉल्स जो हैं लगातार जो है मेरे फ़ोन पर जो है यहाँ पे ब्लिंक हो रहे हैं। तो भाई कार्यक्रम की शुरुआत जैसे हम कर ही चुके हैं तो आइए जुड़ते हैं हम अपने पहले कॉलर के साथ। हेलो
1: हेलो, नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान सिंह परमार जी मध्य प्रदेश से, क्या बात है, पहला ही कॉल मध्य प्रदेश से लगा है हमारा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: काफी श्रोता है और आकाशवाणी लखनऊ को दीदी कॉल मिलाते रहते हैं सभी।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। तो और बताए भगवान जी क्या करते हैं साथ में?
1: दीदी खेती किसानी करते हैं और अभी कल हमारे इधर बूंदाबांदी हो गई थी दीदी, गर्मी कम हो गई है, 4-5 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कोई खेती पे असर तो नहीं हुआ है?
1: नहीं दीदी, अभी तो खेत खाली है तो कोई असर नहीं हुआ खेती।
0: अच्छा,
1: पर तो
0: चलिए चलिए। तो आज आपने हमें कॉल करी है तो कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: दीदी फिल्म का नाम है बलमा और गाने के बोले जीने की तमन्ना हो, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
0: क्या बात है, आशा भोसले और नितिन जी की आवाज में है।
1: हाँ दीदी, और 2-3 मित्रों को।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल याद कीजिए
1: जी। रमेश प्रजापति, प्रेम सिंह सिसोदिया, केशव सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, भरत सिंह अजवाई, मांगीलाल चंदेल जी, गंगाधर जी है, पूरन वर्मा जी, राकेश जी, पूनम दीदी है कानपुर से, बहन संगीता देवना जी, आशुतोष देवरानी, अविनाश तेली जी, गुंजन तिवारी जी अयोध्या से और मिंटू तिवारी जी, इन सबका साथ सुनना चाहेंगे दीदी। आपको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल, तो लीजिए आप सभी इंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को।
1: धन्यवाद दीदी।

0: श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और आप इस समय सुन रहे हैं अपना पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद, और मैं हूं आपके साथ आपकी हमजोली, जी हां संजोली। भाई जुड़ते हैं हम अपने अगले कॉलर के साथ जो कि कर रहे हैं हमारा इंतजार। हेलो
1: हेलो संजोली दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, क्या बात है, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है, आज लगता है ये जो हमारा कार्यक्रम है सारे श्रोता जो है मध्य प्रदेश से ही होने वाले हैं, क्या बात है। और बहुत बहुत स्वागत है केसरी जी आपका इस कार्यक्रम में। और क्या करते हैं वैसे?
1: दीदी मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और अभी फिलहाल मैं गांव पर रहे तो गांव पे मंदिर पे भंडारा था, आज मंगलवार था।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो आपका कार्यक्रम भी सुन रहे थे और प्रस्तुति दीदी बाकी मजाक से हटके काफी अच्छी लग रही है आपकी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप जैसे श्रोता जो है जो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दे तो निश्चित तौर पे कोशिश करते हैं कार्यक्रम बहुत से बहुत अच्छा कर सके आपके लिए।
1: बिल्कुल तो, बिल्कुल, मतलब फुल एंड फाइनल, मतलब जो एनर्जी से परिपक्व आपकी प्रस्तुति।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताए आज आपने हमें कॉल करी है भंडारे के साथ साथ, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: ऐसा हुआ मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू
0: ही तू। क्या बात है, गुलशन कुमार जी का ये प्यारा सा भजन है भोले बाबा का।
1: जी दीदी, और आपके लिए रहेगा, और दो तीन मित्रों और याद करूंगा मैं, रामबाबू शर्मा जी, भगवान सिंह परमार जी का लगी चुका, मांगीलाल चंदेल जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, अविनाश जी, आशुतोष जी और पूनम जी।
0: तो लीजिए भाई ये प्यारा सा भजन आप सभी की रेडियो सेट पर, आनंदमय हो जाइए।
1: ओके दीदी, थैंक यू, राधे राधे
0: राधे राधे।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है हेलो मेरी पसंद, तो आइए जुड़ते हम अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो।
1: जिंदगी क्या है जिसकी चाह नहीं है, वो मंजिल ही कैसी है जिसकी राह नहीं है। आदरणीय संजोली गोस्वामी साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार, क्या बात है विजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं ये तो बताएं साथ में।
1: मैं पचपड़वा बलरामपुर से बोल रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरे काल को तस्लीम किए।
0: नहीं बिल्कुल भी, हाँ हम भी आपका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे कि आपने हमें इस कार्यक्रम में कॉल की। तो और बताएं
1: कहा
0: क्या
1: गया है कि जिंदगी उन लोगों के लिए है
0: जी।
1: जिन्होंने खुश रहने का फन सीख लिया।
0: बिल्कुल सही बात है, देखिए दुख और सुख तो आता जाता रहता है, अगर आप दुख को पकड़ के बैठे रहेंगे तो शायद जिंदगी को जी नहीं पाएंगे।
1: जी,
0: तो ये बताएं, आज आपने हमें कॉल करी है तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: फिल्म का नाम है सौतन और गीत के बोल है जिंदगी प्यार का गीत है,
0: वाह क्या बात है,
1: और
0: इसे इसे
1: ये गीत
0: जी
1: अपने हर दिल अजीज दिनकर जी के लिए और फूलचंद पाल के लिए,
0: जी
1: बाकी जितने श्रोता हैं सभी के लिए समर्पित करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल। तो भाई लीजिए प्यारा सा गीत, लता दी की आवाज में आपकी रेडियो सेट तक पहुंचता है, एंजॉय कीजिए इसको।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, यह है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हल्लो मेरी पसंद। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो हमजोली, जी हां संजोली। तो भाई जुड़ते हैं हम अपने अगले कॉलर के साथ, जो कर रहे हैं हमारा इंतजार। हेलो,
1: कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कि कहाँ से लाऊं हुनर उसको मनाने का, कोई जवाब नहीं था उसके रूठ जाने का। मोहब्बत में सजा तो मुझको ही मिली थी, क्योंकि मैंने चाहा था उसको अपनी जान से भी ज्यादा।
0: क्या बात है, आप साथ में अपना तारुफ भी दें।
1: मैम जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं ग्राम्बा पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से सारू नूर अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। मैम,
0: ओहो सारू नूर अंसारी जी, कैसे हैं आप?
1: माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हूँ, और काफी महीने नहीं सालों के बाद आज मंगलवार को जो हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम आता है इसमें कॉल लगी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम भी अभी कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा ठंडा लग रहा है, मगर गर्मी भी अपने जोरों शोरों पर पड़ रही है।
0: अच्छा, अभी भी बारिश बरेली में हो रही है?
1: नहीं अभी नहीं हो रही, फिलहाल मौसम थोड़ा सा ठंडा है, मगर दोपहर में बहुत गर्म रहता है
0: जी।
1: और सुबह के टाइम

0: सर हल्की हल्की ठंड भी लगती है, मगर जैसे ही मौसम खुलता है फिर अपना गर्मी अपना रंग दिखाने लगती है मैडम जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ये बताएं, आज आपने हमें कॉल करी है तो कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: कहना चाहूंगा कि उनकी गली से गुजरे मंजर अजीब था, कि उनकी गली से गुजरे मंजर अजीब था, दर था वो भी मेरे दिल के करीब था, जैसे मैं ढूंढता था अपने हाथों की लकीरों पर, पहले किसी की किस्मत किसी और का नसीब निकला।
1: क्या बात है, मतलब शायरी बड़ी प्यारी प्यारी है आपके पास। अब गीत बताएं कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: मैम जी फिल्म का नाम है बरसात की रात, और गाने के बोल है कि वादा करके सजन नहीं आया, ये गाना सुनवा देना और दो चार दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो।
1: बिल्कुल जल्दी जल्दी ले लीजिए।
0: मैम जी ये है विश्वकर्मा जी है, दशरथ सेन है, भगवान सिंह परमार है, गौतम राय बोले जी है, लोकेंद्र वर्मा है, बसीम अकरम है, शबनम अब्बासी है, दिलीप पहुजा जी है, श्रीपाल गोयल जी है, प्रेम प्रकाश प्रेम सिंह सिसोदिया है, राजेंद्र अंगवार जी है, आप है, और सारून अंसारी के साथ सुनना चाहूंगा। और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि गुलशन बाकी रहे तो गुल जरूर खिलेंगे, कि गुलशन बाकी रहे तो गुल जरूर खिलेंगे, और इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही, इस प्रोग्राम में आपसे फिर कभी मिलेंगे।
1: बिल्कुल जरूर मुलाकात होगी आपसे फिर इस कार्यक्रम में। लीजिए कहते हैं ना, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

0: ऑन हॉलीडे।
1: श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और आइए चलते हम अपने अगले कॉलर के साथ। कौन जुड़ा है और कहां से जुड़े हैं? हेलो
2: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार। कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, ठंडी ठंडी जगह से, मस्त मस्त
1: शिमला से
2: जगह से बात कर रहा हूँ।
1: जी राकेश जी, कैसे हैं आप?
2: जी बहुत बढ़िया है। और मैं हमारे शिमला में जो है अभी बारिश हुई थी और अभी अभी जो है मौसम बिल्कुल साफ हुआ था।
1: क्या बात है, चलिए अच्छा है मौसम साफ रहे, ज्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए अभी जून के महीने में।
2: जी जी जी जी, ज्यादा बारिश मतलब 6 बजे से 8:30 बजे तक बारिश हुई है और उसके बाद जो है बिल्कुल मौसम साफ हो गया।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल सर्दी नहीं है इसका मतलब शिमला में?
2: नहीं नहीं, सर्दी तो नहीं है लेकिन ठीक है,
1: ठीक है बस।
2: लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा तो नहीं है। और आपकी कभी जब 48 जब तापमान होता है तो सुन के बड़ा ये लगता है कि आप लोग कैसे गर्मी सहन करेंगे। हमारे तो इतनी गर्मी हमें कभी देखने को नहीं मिली, जैसे कि राजस्थान हो गया, केरल हो गया या

0: जी
1: प्रदेश
0: देखिए,
1: ऐसी जगह
0: हम
1: पे जब गर्मी सुनता तो हम
0: नहीं
1: सोचते कि अगर हम उस जगह पे होते आपके क्षेत्र में तो फिर हम हमारा क्या होता
0: तो
1: है।
0: नहीं, निश्चित तौर पे अगर आप इस क्षेत्र में होते तो हम उस क्षेत्र में होते।
1: हाँ
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए ये बताएं, तो आज आपने कॉल की है तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा, और गाने के बोले है वो हमसे खफा है मगर बात करने को जी चाहता है।
0: क्या बात है, तो भाई लीजिए, प्यारा सा गीत पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट तक, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।
1: जी जी जी जी धन्यवाद
0: जी
1: आपका।
0: जी
1: ओके।

0: हाँ मैं तेरे को बाद में फोन कर।
1: तो भाई आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम के इस अंतिम कॉलर को भी लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार बहन जी।
1: नमस्कार जी, हमारे कौन से श्रोता बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
2: अंजुली और संजुली बहन से आज बहुत दिनों बाद बात हो रही है, बहुत अच्छा रहा।
1: बिल्कुल, लेकिन यह है कार्यक्रम की आखिरी कॉल लगी हुई है, तो इसलिए आप जल्दी से बताएं और साथ ही साथ कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये बता दें
2: बहन जी। और क्या, वो बताना ही पड़ेगी क्योंकि समय कम है।
1: जी जी जी,
2: फिल्म का नाम रहेगा हम दोनों
1: जी,
2: और गाने के बोल रहेंगे अब ही ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं।
1: क्या बात है, तो भाई लीजिए भाई कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है और आपकी रेडियो स्टेट तक पहुंचता है, एंजॉय कीजिए इसको
2: जी।

तो मैं श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अपने मेल के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हमारा ईमेल एड्रेस है pkld@gmail.com पर, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद जरूरी हैं जिससे कि कार्यक्रम में और भी ज्यादा सुधार किए जा सके। तो भाई, कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ दीजिए इजाजत अपनी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली को नमस्कार।

कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अपने मेल के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हमारा ईमेल एड्रेस है pkld@gmail.com पर, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद जरूरी हैं जिससे कि कार्यक्रम में और भी ज्यादा सुधार किए जा सके। तो भाई कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ दीजिए इजाजत अपनी रेडियो हमजोली, जी हाँ संजोली को नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोरखपुर की प्रस्तुति है।
1: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक परिचर्चा। परिचर्चा का विषय है चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन।
2: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, भारत जैसा कहा जाता है कि प्रतिभाओं का देश है, यहाँ ढेरों प्रतिभाएं हैं चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज विशेष रूप से हम भारतीय खेल और खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि भारत में खेलों की बड़ी ही अद्भुत प्रतिभाएं रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम परिणामों से उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जैसी विशाल जनसंख्या है हमारी, उस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं निकल के आ पाता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है और ये हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रयासों से साबित भी किया है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेष मेहमानों को। एक तो हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और साथ में हमारे हैं नीरज गुप्ता जी, जो प्रदेश स्तरीय फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी और नीरज जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूँ।
3: धन्यवाद।
2: संजय जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है।
3: अपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा तो वहाँ हमारी जो भी क्षमताएं हैं पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
2: चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी आपको क्या लगता है जो

0: खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
1: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूं। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है, इसमें इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
0: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है?
2: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं तो हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले वो, यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए। हमारी डाइट इस तरह से संतुलित होनी चाहिए, उसमें घी है, बादाम है, दूध है, सूखे मेवे हैं और जो भी सीजन के फल अवेलेबल होते हैं ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब जाके कहीं हमारी रिकवरी इतनी अच्छी हो पाएगी कि हम अपने मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग के बाद का जो बीच का समय होता है उसमें रेस्ट करने के बाद हम अपने इवनिंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं, अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है और प्रॉपर जो किट होती है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाले मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं, तो जैसे एक व्यक्ति नहीं कई लोग मिलकर भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
0: जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
1: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट होता है, तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, मेंटेन किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है, तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है, डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पर भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पर असर करता है, आगे बढ़ने के उस पर असर आता है उससे भी।
0: चलिए, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चलिए जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं अगर कि अपने खेल के अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है, या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं, तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूं, तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में 1st, 2nd और 3rd, मतलब 4 प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन, और उसके बाद इन लोगों को

0: रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं। तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट सेकेंड और दो थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए जिनका मेडल आ गया वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्रावधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम यह है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें। और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है और रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफार्म ये मिल जाता है कि वो सीधे इंडिया कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो एक तो फेडरेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है, और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहां एक अच्छा पैसा मिलता है उनको, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपने टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए चूंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं, नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है, प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूं कि अगर मैं ही हूं तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं वहां पे ऐसा देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है, अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है जहां से उसके रुचि के हिसाब से उसके शौक उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिसपे जाकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
0: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था, परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे और हम अपने जिस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था, जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था, तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद जिनको कहा जाता है गांव की भाषा में

0: उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे, देख के बड़ा अच्छा लगता था उनकी शरीर देख के, तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती, हम भी मेहनत करते। तो ये तो बात है छठवीं सातवीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं आठवीं नौवीं आया तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग, लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे, अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी, खाली थी, वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे उसको तैयार करके करते थे। तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी, अच्छी हो रही थी, और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे, दूध घी की सारी व्यवस्था थी। तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर, उनकी दुकान थी वो, तो उन्होंने देखा था हमको, हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए। फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए, तो वो लेके हमको गोरखपुर आए। तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ, और एक साल तो मैं बिल्कुल गाँव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन एक साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए, उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए, और जो स्टेट कैंप लगा, स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ, तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ। तो जो सबसे बड़ी चीज है, बेसिक जो है, कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो, जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए, भाई जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहां पे कम से कम इस तरह के दो चार लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं चल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक पहल करनी होगी कि इस तरह के लोग चिन्हित किए जाए जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत हो, जिनको कुश्ती का ज्ञान हो, जिनको वॉलीबॉल का ज्ञान हो, जिनके अंदर एथलेटिक्स का नॉलेज हो, तो उनसे सुबह शाम एक वो करके और ग्राउंड पे बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाए जिससे बच्चे तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में वो मतलब करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल वीर बहादुर सिंह गोरखपुर, और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं और इस स्थिति में है प्रदेश में कि स्पोर्ट्स कॉलेज, जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज वीर बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है, उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवीं तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवी के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के लिए। तो एक से और पांचवी तक का जो जीमा है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट के ही हिस्से नहीं है, उसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए कि एक से पांचवी तक का जो बच्चा है उसके तैयार करने के लिए हमें खुद समय निकालना होगा, हमें खुद एक पहल करनी होगी। और उसके बाद से हम जब पहल करेंगे तो निश्चित ही, अगर हम 10 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो नहीं 10 तो 2 बच्चे तो जरूर सेलेक्ट होंगे उस आवासीय छात्रावास से, उनको जरूर लाभ मिलेगा, उनका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये एक तरह से हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स में कुछ नया अगर करना है तो हमें अपने आसपास के बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं।
1: संजय जी, आपने जैसा कहा कि पांचवी तक हमें प्रयास करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां की खिलाड़ी जाकर अपनी प्रतिभा संवार सकते हैं और उन्हें एक रास्ता मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सूचना की कमी एक बड़ा कारण है, जो आप चीजें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, विशेष करके छोटे शहरों और गाँव में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं हैं और वो इस द्वंद्व में हैं, इस असमंजस

0: में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले। तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
1: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि फार्म मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बकायदा मतलब इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फार्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है। वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये फार्म, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फार्म फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा। यहाँ से आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, वो शुल्क दे के आप उस फार्म को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज़ स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100% ये स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फार्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीज़ें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहां से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है, आपको वो सारी जानकारियां वहां से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहां तक जाना होगा।
0: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय और जो स्थानीय केंद्र हैं उसके संपर्क में रहें तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है?
2: इसके मुख्य कारण ये है कि खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने कहा अभी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है, ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
0: ये चुनौती बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक जो एक नया प्रकार है ग्रैपलिंग रेसलिंग, उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
1: ग्रैपलिंग रेसलिंग, जैसे नाम दिया गया है इसको ग्रैपलिंग रेसलिंग, रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज की किसी भी देश में जो भी ग्रैपलिंग की फेडरेशन होगी उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ये ग्रैपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, उसके बाद ग्रैपलिंग एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रैपलिंग रेसलिंग में, ग्रैपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रैपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई हैं और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई हैं, तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं।

0: जाते हैं इसको, तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रेपलिंग रेसलिंग है, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रेपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर है तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा, आप अगर रेसलिंग से ग्रेपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफॉर्म, है आप रेसलिंग में ही लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी, बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा संजय जी कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में जिसको हम फॉलो करते हैं। और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल का लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है, आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए, आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं उस खेल को आगे तक अपने मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है। टीम में सिलेक्शन होगा फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता है अपने रास्ते से कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता है। खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें

0: जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी। बहुत सारी काम की बातें निकल कर आईं और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन राग पीलू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन राग था पीलू। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्र संगीत के अंतर्गत पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन राग था पीलू। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के

0: India and across the world. It said, with more than 1 crore registered users and over 1 crore 40 lakh downloads, Waves OTT is now focused on its next phase of growth. Russia launched a large-scale overnight attack targeting multiple Ukrainian cities in which at least 21 people, including 2 children, were killed and over hundreds others were injured. This marks one of Moscow's largest assaults in the recent months. President Volodymyr Zelensky said civilian infrastructure and energy facilities had been targeted across the country. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 4.6 मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
4: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
5: Namaskar, thank you.
4: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
5: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि

0: के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का यह नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारे से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गाँव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है। तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: You know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट इज बिहाइंड इट। सो इन दिस ड्रीम, यू नो, टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, then ensuring market access, the challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market.

0: Today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South. That this whole thing, that entire India being one market, so yes. that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, mm-hmm. you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. Right. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net mm-hmm. for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know,
1: yes.
0: that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so yes. that, you know, it focuses on low productivity districts.
1: Yes.
0: So focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta
1: yes.
0: in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal, vagara, vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming.
1: Right.
0: So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture.
1: Hmm.
0: And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें.
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है. तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा. उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा. तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है. जो कम है वही चीज डाली जाए क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था. तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
2: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया. उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए. दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का. हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही. तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका. नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी. उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा. तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई. सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता पंप होता है या नहरों से जाता है वो सिंचाई के काम में आता है. लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी. और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी. तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है. जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है. चौथा था बीज, बेहतर सीड. अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से होए. तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे. उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी

0: भैया अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं। ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए, और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से। वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को। उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी MSP का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपये क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो, द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो। सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रैटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to, you know, take care of the expenditures. Then after the produce is, you know, harvested, he needs a market and a good price that will, I mean, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that we revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, I mean, with the e-NAM, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, you know, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes. And-

0: build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
0: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of, you know, cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
0: Because invariably when you hear stories of, you know, farmer in distress because, you know, the production, there is like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, yes. What happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government trust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में. इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं. प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है.
2: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. ये सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय. जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो. और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है. दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं. जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया. तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है. इसकी ग्रोथ बहुत तेज है. डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं. 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट. आप समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है. किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है. और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं. हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं. अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं. एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में. कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है. जरा सोचिए, एक साल में का, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़. और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही.
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे.
2: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता. अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं. दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है. आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया. हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी किसी परिभाषा में आते नहीं थे. आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है. और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है. यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है. इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार.

0: बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है। इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा। कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है। लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर। तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है। और जितने भी प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं।
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक, और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है, और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4,00,000 से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है। सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
0: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा। और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं। और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट, प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक, यू नो, दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to go in for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this, and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा

0: प्रस्तुत किया गया।
1: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर एंड फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज। द पार्टिसिपेंट्स वर शेखर आयर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंड एसपी सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। द मॉडरेटर वर सोनू सूद। This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
0: मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:45 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:50 पर विविध कार्यक्रमों के साथ पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया।

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का